Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। Assalamualaikum, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ कतर ग्रीन बीट्स का आज का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। आई एम वेरी सर्टेन कि आप सब बिल्कुल खुशनुमा होंगे और ये जो आपका एंटायर वीक है ये भी खुशनुमा गुजर रहा होगा। फिलहाल आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधा हमारी थाली या यूं कहें हमारी खाने की प्लेट से जुड़ा है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सस्टेनेबल फैशन की, कि कैसे हमारे कपड़े हमारी जमीन पर असर डालते हैं, मगर आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमें जिंदा रखती है, हमारा खाना। एक जमाना था कि जब लोग सोचते थे कि कतर जैसे रेगिस्तानी मुल्क में जहाँ रेत और गर्मी का राज है वहाँ खेती बाड़ी या फार्मिंग कैसे हो सकती है। People used to think कि हम सिर्फ डेजर्ट है। लेकिन आज मंजर बदल चुका है। हमने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और इनोवेशन का साथ हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं। और आज देखा जाए तो एक से बढ़कर एक

और उसकी ताकत, ये दोनों होता है। आज हम एग्रोटेक की बात कर रहे हैं। यस, एग्रोटेक यानी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का एक खूबसूरत मिलन। हमने सिर्फ खेती नहीं की, हमने साइंस को मिट्टी के साथ जोड़ा है। आज कतर इंपोर्ट डिपेंडेंट होने से बदलकर एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन हब बनने की राह पर है। जब आप आजकल सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो क्या आपने वो छोटे स्टिकर्स देखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कतर? वो सिर्फ एक लेबल नहीं है, वो हमारी मेहनत और हमारी जमीन की जीत है। इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी बाइट वी टेक सपोर्ट्स आवर सॉइल रादर देन डिप्लीटिंग इट। चलिए, अब वक्त है द ग्रीन वायर का, जहां हम बात करते हैं ताजा खबरों की। क्या आपको पता है कि कतर अब अरब दुनिया में फूड सिक्योरिटी के मामले में नंबर वन पोजीशन पर रैंक करता है? एग्जैक्टली, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा नाम सबसे ऊपर है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये नतीजा है उस इन्वेस्टमेंट का जो हमारी हुकूमत ने ग्रीन हाउसेस और मॉडर्न फार्मिंग में किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने हाल ही में अपने महसील प्रोग्राम को और बड़ा कर दिया है। महसील का मकसद क्या है? कि हमारे जो लोकल फार्मर्स, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। आज सुबह जो सब्जी खेत में कटी है, वो कुछ ही घंटों में आपके घर के पास वाले सुपरमार्केट में होती है। नो लॉन्ग फ्लाइट्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। और हाँ, सूख वाकिफ में होने वाला जो लोकल डेट्स फेस्टिवल होता है ना, इसे भी हमें मिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खजूर हमारा सस्टेनेबल हेरिटेज क्रॉप है। इसे कम पानी चाहिए होता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन का खजाना है। और हम सिर्फ लोकल नहीं खा रहे, हम जो खा रहे हैं वो स्मार्टली चूज कर रहे हैं। हम बस पेट नहीं भर रहे, हम फ्यूचर भी संवार रहे हैं। चलिए जनाब, अब वक्त है हमारे सबसे खास सेगमेंट का, एंड दैट इज प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पहुंचकर आपकी आंखें यकीन नहीं करेंगी कि आप कतर में हैं। हम बात कर रहे हैं एग्रीको कतर की, जो अलखोर के दिल में बसा है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन है। इमेजिन कीजिए, बाहर 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तेज धूप है और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। लेकिन जैसे ही आप एग्रीको के गेट्स के अंदर कदम रखते हैं, मंजर पूरी तरह बदल जाता है। इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ फ्यूचरिस्टिक लैब। ठंडी हवा है और हर तरफ हरियाली है, मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू है। लेकिन मजे की बात ये है कि वहाँ मिट्टी का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। एग्रीको कोई आम खेत नहीं है, ये कतर के फ्यूचर की एक चमकती हुई तस्वीर है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अमिता, अगर मिट्टी नहीं है तो पौधे उगते कैसे हैं? यही तो एग्रोटेक का कमाल है। एग्रीको ने हाइड्रोफोनिक्स और एक्वाफोनिक्स को अपना हथियार बनाया है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हाइड्रोफोनिक्स का मतलब है सॉइल लेस फार्मिंग। यहाँ प्लांट्स मिट्टी में नहीं, बल्कि न्यूट्रिएंट रिच पानी में बड़े होते हैं। उनकी जड़ों को वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स सीधा पानी से मिलते हैं जो उन्हें चाहिए। और एक्वाफोनिक्स की बात करें तो ये बड़ी ही दिलचस्प चीज है। इसमें मछलियाँ यानी कि फिश और पौधों का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए खाद बनता है और पौधे उस पानी को साफ करते हैं जो वापस मछलियों के टैंक में जाता है। इट्स अ परफेक्ट साइकिल ऑफ लाइफ। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम 90% कम पानी इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हमारे देश में जहाँ पानी का एक एक कतरा नायाब है, प्रेशियस है, वहाँ 90% की बचत किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारी गर्मी। जून और जुलाई में जब इंसान को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब एग्रीको के ग्रीन हाउसेस में टमाटर, खीरे और यहाँ तक कि नाजुक स्ट्रॉबेरीज भी झूम रही होती हैं। उन्होंने ऐसे स्पेशलाइज्ड कूलिंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखते हैं। ये देख कर फक्र होता है, प्राइड फील होता है कि हमने मौसम के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम को अपने लिए, अपनी चीजों के लिए फेवरेबल बना दिया है। एग्रीको ने साबित कर दिया है कि अगर इनोवेशन हो तो हम साल के 365 दिन ऑर्गेनिक और फ्रेश सब्जियां खा सकते हैं। अब हमें यूरोप या दूसरे मुल्कों से स्ट्रॉबेरीज के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारे अपने अलखोर की मिट्टी में कम पानी से उन्हें उगाया जा सकता है।

0: इस पूरे मिशन के पीछे सिर्फ एक फार्म नहीं बल्कि एक मजबूत सोच है। यहाँ तक कि हजरत फूड की बात करें जो कतर की इन्वेस्टमेंट आम है, वो ये इंश्योर करती है कि हमारी सप्लाई चेन कभी कमजोर ना पड़े। उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि कतर को फूड सिक्योर बनाना है। जब हम एग्रीको जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कतर नेशनल विजन 2030 के उस सपने को सच कर रहे हैं जहां हम अपनी जरूरतों के लिए खुद काफी हैं। इट्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी। ये प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि रेगिस्तान कोई रुकावट नहीं है बल्कि ये एक खुला कैनवस है जहां हम टेक्नोलॉजी की कलम से हरियाली रंग रहे हैं। तो जनाब, अगली बार जब आप सुपरमार्केट्स में एग्रीको या लोकल लेबल्स देखें तो उन टमाटरों को सिर्फ सब्जी मत समझिए, वो निशानी है हमारी मेहनत की, हमारे साइंस की और हमारे डिटर्मिनेशन की। एग्रीको ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि डेजर्ट से डिनर टेबल तक का सफर हरा भरा हो सकता है। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बड़े ही आसान तरीके जिससे आप अपने घर में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एक मिनी फार्म भी बना सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ और कतर ग्रीन बीट्स में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। भला आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसी कौन सी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे हम अपना खुद का अपने घर में मिनी फार्म बना सकते हैं। वेल, मुझे लगता है कि बदलाव हमेशा किचन से शुरू होता है, तो चलो आप कुछ ट्राई करते हैं। शॉप द लोकल स्टिकर्स, ठीक है? अगली बार जब आप शॉपिंग पर जाएं तो महसील या प्रोडक्ट ऑफ कतर लेबल ढूंढिए। जब आप लोकल खरीदते हैं तो आप फूड माइल्स कम करते हैं, वो फ्यूल, वो पोल्यूशन जो खाने को दूसरे देश से लाने में लगता है आप उसे बचा लेते हैं। और सच तो ये है कि लोकल सब्जियां ज्यादा जायकेदार होती हैं और आपकी हेल्थ के लिए परफेक्ट होती है। अब बात करते हैं अपने छोटे से फार्म की, तो कैसे बना सकते हैं स्पेशली बालकनी हर्ब्स। बड़े आसान होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, इनफैक्ट मैंने खुद आजमाए हुए हैं। वेल, हमारे कतर के जो फ्लैट्स हैं ज्यादातर जहाँ पर लोग रहते हैं तो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते, तो मैं कहूँगी अपने विंडोज या बालकनी पर आप पुदीना, धनिया और बेसिल उगा सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सेल्फ वाटरिंग पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गर्मी में पौधे ना सूखें। शाम की चाय में अगर आप सोचें अपने हाथ से तोड़ी हुई आपने मिंट की कुछ लीव्स डाल ली तो कितना मजा आएगा। मैं खुद कहती हूँ मैंने अपने घर में धनिया, पुदीना और बेसिल यानी कि तुलसी कई बार उगाई है और ये सिलसिला हमारे घर में चलते चले आ रहा है। अच्छा, अब ये दूसरी चीज जो बड़े काम की होती है, दैट इज कंपोस्ट योर स्क्रैप्स। जो सब्जियों के छिलके हम फेंक देते हैं ना, वो कचरा नहीं है, तो क्या करना है उनको, बोकाशी कंपोस्टिंग। इसके बारे में कभी आपने सुना है? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। ये एक स्मेल फ्री तरीका है किचन वेस्ट को फर्टिलाइजर बनाने का। अपने इंडोर प्लांट्स को ये कुदरती खाद दें तो फिर देखें कि वो कैसे उगते हैं एंड कितना उसमें जायका आता है। फिर एक और टिप है, दैट इज रिड्यूस प्लास्टिक एंड स्मार्ट स्टोरेज, यानी कि प्लास्टिक से हमको दोस्ती खत्म करनी होगी। कतर में हम बहुत सारी बॉटल्ड वाटर जो होती है, वो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं। तो क्या करना है हमको कि अगली बार जब हम शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने कपड़े का बैग, अपना रीयूजेबल बैग खुद लेकर जाएं और उसको ले जाना ना भूलें। इनफैक्ट आप चाहें तो अपनी कार के बैक सीट में, यूं कहें अपनी कार की डिक्की में ये सारे जो बैग्स हैं रख सकते हैं ताकि जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपको किसी तरह की टेंशन नहीं कि अरे अब मुझे बैग लाना था घर से एंड ऑल, समझ गया? हाँ जी, इस बात का आपको जरूर जरूर ख्याल रखना है। और सब्जियों को प्लास्टिक बैग्स में रखने के बजाय कॉटन प्रोड्यूस बैग्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे सब्जियां फ्रिज में ज्यादा दिन तक ताजा रहेंगी और कचरा भी कम होगा। तो समझ गए कि कैसे अपने घर में मिनी फार्म बनाना है और कैसे इम्पॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखते हुए हमारे लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करना है कि नहीं? तो जनाब, छोटी छोटी बातें हम जब ये करते हैं ना तो इससे हमारा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होता है। जाहिर सी बात है कि जब हम कतर ग्रीन बीट्स की बात करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएटिव जो कि कतर नेशनल विजन 2030 के जरिए लिए जाए।

0: बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मेट्रो लाइंस तक सीमित नहीं है. इसका बहुत जरूरी मकसद है, इसका बहुत जरूरी पिलर है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट. फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुकानों में सामान होना चाहिए. इसका असली मतलब है कि हम क्या आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, कि हम अपनी सारी चीजों को खुद पैदा कर सकते हैं. जब हम लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं ना, तो हम इस सरजमीन की खिदमत करते हैं जिनसे हमें इतना कुछ मिल रहा है, या यूं कहें तो इस जमीन ने जितना हमें कुछ दिया है. हम सब इस मिट्टी के गार्जियंस हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2030 तक एक ऐसा कतर बनाए जहां नेचर और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर फलेंगे और फूलेंगे. अगली जनरेशन जब हमसे पूछेगी कि आपने हमारे प्लैनेट के लिए क्या किया, तो हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए ये हरा भरा कतर होना चाहिए, है कि नहीं. फिलहाल आज का एपिसोड हम यही खत्म करने जा रहे हैं, और मैं कहूंगी कि आपका हर एक छोटा फैसला, हर एक लोकल टमाटर जो आप खरीदते हैं, वो हमारी जमीन को हरा भरा बनाने में मदद करता है. मैं आपसे ये कहूंगी कि हर हफ्ते कतर ग्रीन बीट्स के हम स्पेशल टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये कतर ग्रीन बीट्स की कुछ और भी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इसमें होनी चाहिए, जिसके जरिए हमारा शो और बेहतर हो, तो आप जरूर शामिल कर सकते हैं अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस. आप हमें मैसेज करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, एंड डेफिनेटली हमारा हर एक एपिसोड आपके नाम होगा और बेहतर होते जाएगा. और अगर कतर ग्रीन बीट्स शो सुनने के बाद अगर आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे कतर के एनवायरनमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी अपनी चीजें, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे जरूर शेयर करें. फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और मैं कहूंगी कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें, कुछ नई कहानियों के साथ. तो तब तक के लिए क्या करना है, अपनी अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, प्लस हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाएं, ताकि कतर से जुड़ी हर एक नई बात, हर एक पॉपुलर और अपडेटेड बात आप तक आसानी से पहुंच सके. मैं लवी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी. जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
1: Number 1 hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। वक्त को नहीं मगर बढ़ापे को सुस्त करने के बहुत सारे राज हैं, उन पर हम बात करेंगे। उम्र का ज्यादा होना एक कुदरती हकीकत है, मगर क्या हम और आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदत हमारी स्किन को उसकी उम्र से 10 साल बड़ा दिखा सकती है। जी हाँ, यही कहा जाता है कि प्री मैच्योर एजिंग यानी कबल अज वक्त बढ़ापा। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जो स्किन है क्यों खराब हो जाती है, कौन सी गुज़ाएँ हैं जो हमें यंग रखती हैं, और कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि हमारी झुर्रियों को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाती चली जाती हैं। स्किन हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज्व है और तकरीबन 20 मरबा फिट है। ये ना सिर्फ मौसम से हमें बचाती है बल्कि हमारे जो अंदरूनी निज़ाम है उसको भी बेहतर रखती है। और अगर हमारी स्किन जो है वो सुस्त बेरंग या फिर उस पर रिंकल्स आ जाएं तो समझ लें कि हमारे जिस्म के जो अंदरूनी जो फाल हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, कोई ना कोई मसला जो है वो ज़रूर होता है। इसके लिए कि हमारी जो स्किन है वो बीमार नहीं है मगर बाज़ों का थकी हुई महसूस होती है, तो सिर्फ हम पानी पीकर यानी 10 से 12 ग्लास अगर आप पानी पी लें, सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठ जाइए तो उससे विटामिन डी हमें मिलेगी। रात को स्किन क्लींसिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो कहानी है, ये जो बातें हैं, हज़ारों ख़वातीन और मर्द हज़रात जानते भी हैं और हकीकत भी यही है। वक्त तो बुढ़ापा लाता है मगर कुछ हमारी आदत जो हैं उन्हें ज़्यादा तेज़ी से उस तरफ सफ़र पर गामजन कर देती हैं। तो ऐसी आदत जैसे कि जो सूरज की तेज़ छुआएँ हैं वो यूवी रेज जो हैं वो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल यानी उससे क्या होता है कि हमारी स्किन सख्त हो जाती है और कुछ डल महसूस होती है। और नींद की कमी जो है उससे हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, सूजन हो जाती है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के नज़र आते हैं। पानी कम पीना तो उससे चमक हमारे स्किन की ख़त्म होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस जो हार्मोन है वो हमारी जो जिल्द है उसकी लचक को खो देता है यानी कार्टिसोल। तो इसके लिए हमें करना ही है कि एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो अपनी गिज़ा में शामिल करने हैं, स्किन जो है उसे क्लीन रखना है, सन ब्लॉक रोज़ाना इस्तेमाल करना है, अपनी नींद 7 से 8 घंटे आप पूरी कीजिए, और जो हेल्दी फैट्स हैं लाइक जो एलमंड्स हैं, वॉलनट है या ऑलिव ऑयल है उसे अपनी गिज़ा में शामिल कीजिए। इसी तरह से बेरीज जो हैं, फिश है, उसमें ओमेगा 3 होती है जो कि हमारी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है। हरी जो सब्जियां हैं, अंडे हैं, एवोकाडो है, इसी तरह कैरेट्स हैं, उसमें विटामिन ए और वो हमारी आंखों के लिए बेहतरीन है। और इसके अलावा लेमन वाटर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और आपकी जो स्किन है वो खूबसूरत हो जाती है। इसी तरह जिल्द का ख्याल रखना मुश्किल नहीं है, बस मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। तो उसके लिए फिर आप स्किन जो है वो क्लीन कीजिए और यह है कि सन ब्लॉक SPF 30 या इससे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए।

0: शख्सियत का पहला तारुफ है उसका ख्याल रखिए। सामिन हम बुढ़ापा रोक नहीं सकते लेकिन उसे सुस्त जरूर कर सकते हैं। उम्र बढ़ती रहे मगर चेहरे पर जिंदगी बाकी रहे, यही सेहतमंद जिंदगी की पहचान है। अपनी स्किन के साथ मोहब्बत कीजिए, ये वो लिबास है जो आपने पूरी जिंदगी पहनना है। सेहतमंद जिंदगी आपकी सेहत और आपकी ताकत है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Number one hits music station.
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: देखिए भाई साहब, टेक की दुनिया और ये है एकदम टक टकाटक। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर F107 पे, एंड वेलकम टू टेक इनोवेशन, द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी सेकंड। मैं कब तक कितना पीछे भागूं, ये जान लेता हूं तो वो छूट जाता है, वो जान लेता हूं तो कुछ और छूट जाता है। बट मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जो आपके काम आएंगी, वो चीजें जो एक्चुअली में इस हफ्ते, अगले हफ्ते या फिर महीने भर तक आप यूज कर सकते हैं और उसमें चेंजेस आते भी रहेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज टेक इनोवेशन में मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं जो AI से जुड़े हुए हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, अपने चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड दे नीड समथिंग फ्रॉम द AI वर्ल्ड। तो आई विल ट्राई टू गिव देम समथिंग। तो आज AI से जुड़ी हुई कुछ एप्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा। फिर आएंगे गैजेट्स जो बड़े प्यारे हैं, बाय द वे बड़े क्यूट गैजेट्स हैं आज मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो खबरें जो बड़ी जरूरी हैं इन टेक न्यूज़। तो शुरू करेंगे सबसे पहले AI टूल से इन एप्स दिस वीक।
1: ट्रेंडिंग एप्स,
0: तो नंबर वन ऑन द लिस्ट, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रैंडमाइज करके बता रहा हूं, तो नंबर वन ऑन द लिस्ट इज consensus.app। ध्यान से सुनिएगा, consensus consensus.app या फिर ऐप लिख दीजिएगा, वैसे consensus.app लिखिएगा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ये क्या करता है, ये AI बड़ा कमाल का है, ये रिसर्च बेस्ड आंसर्स देता है। मान लीजिए आपने कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसका आपको सब्जेक्ट मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपके पास एटलीस्ट एक हेडर है, आपको पता है टॉपिक क्या है, उसको ब्रॉडर वे में एक रिसर्च की तरह आप जानना चाहते हैं, उसकी नॉलेज के बारे में एक एक चीज, मतलब उसकी नॉलेज के बारे में क्या, उसकी नॉलेज जानना चाहते हैं, तो एक एक डिटेल आपको मिलेगी, वट एवर द सब्जेक्ट इज, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, एक पूरे रिसर्च बेस्ड आंसर आपको ये AI देता है। नॉट ओनली दैट, इट कंपाइल्स इट फॉर यू ताकि आपको एक कंपाइलेशन मिल सके, आप उसको अपने हिसाब से देख सकें, पढ़ सकें। आप इसकी लैंग्वेज को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है। एंड इट नॉट ओनली गिव्स यू अ रिसर्च बेस्ड आंसर बट इट ऑल्सो गिव्स यू क्लैरिटी, मतलब वो सेंटेंसेस जो फॉर्मल नहीं होते, समझ रहे हैं आप, एक आसान अंग्रेजी या आसान भाषा में जो भी आप इसको लैंग्वेज देंगे, इट इज जस्ट अमेजिंग एंड आई वॉज ब्लोन अवे। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ के आया हूँ तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे के काम आ जाए, ये कोई टीनेजर हो जो प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिस वन इज कॉल्ड

0: मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कहानियां तैयार करता हूँ आपको सुनाने के लिए नैरेटिव फॉर्म में, कोई केस स्टडी में करता हूँ, कोई केस मुझे मिला, मैं उसको जब नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए जाता हूँ तो इसकी मदद लेता हूँ। ये मुझे नोट्स बना के देता है, मुझे पूरा स्ट्रक्चर देता है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फ्लैश कार्ड्स भी देता है। अगर मुझे उस कहानी में से कुछ सवाल निकालने पूछने के लिए, आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो आप सोचिए, जब ये कहानी के लिए इतना कर सकता है, तो जो आपके एक्चुअली में चीजें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई आपने नोट्स तैयार किए हैं, उनको ये किस कदर प्रेजेंटेशन देगा, कितनी बेहतरीन देगा। सो ट्राई दिस वन आउट, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही कमाल का है। KNOWT.com, not.com, ये क्या करता है, इट बेसिकली टर्न्स योर नोट्स इनटू स्टडी गाइड्स प्रॉपर, और साथ में फ्लैश कार्ड्स भी, क्या आपको अपने हिसाब से अगर सवाल जवाब पूछने हैं या एक क्वेश्चनेयर टाइप का तैयार करना है, तो ये बहुत बहुत काम की चीज है। प्लीज प्लीज ये उन तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्लैश कार्ड्स आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ लर्निंग, एंड ये सबको पता होना चाहिए जो भी अभी स्कूल में है, कॉलेज में। सो वैसे तो बच्चे बहुत ज्यादा तेज है, मैं कौन होता हूँ उन्हें बताने वाला, बट स्टिल इफ समबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट, ये उनके लिए था जनरली स्पीकिंग। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली जो AI टूल है उसका नाम है, अगले AI टूल का scispace.com, मैं स्पेल आउट कर देता हूं, SCISPACE, बेसिकली साइस्पेस लिखना है, वो साईफाई लिखते हैं ना वैसे ही साई लिखना है, SCI और space.com। ये बहुत कमाल का है। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट AIs, क्योंकि ये जो काम करता है वो बाकी AI उतना अच्छा नहीं कर पाते। देर आर AIs इन द मार्केट जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट दिस वन इज रियली ग्रेट। तो ये करता है साइस्पेस, ये अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मान लीजिए बहुत जत्था पड़ा है आपके पास प्रोजेक्ट का, उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके एक सिंपलर लेमैन लैंग्वेज में, एक आम इंसान की भाषा में आपके सामने रख देगा, बोलेगा हेलो जी। तो अगर कुछ नहीं समझ में आए, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है किसी चीज में, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स या टीनेजर्स, मगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं, कोई बहुत ही भारी भरकम कोई सब्जेक्ट मिल गया आपको, एंड यू वांट टू गेट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये आपके बहुत बहुत काम आएगा। आई हैव यूज्ड इट एंड आई फाउंड इट अमेजिंग। तो ट्राई दिस आउट, scispace.com, बहुत बहुत काम आएगा। एंड इसको क्लब कर लीजिएगा इन तीनों AI टूल्स को NodeGPT के साथ। NodeGPT आपके प्रोजेक्ट में मदद करेगा। मान लीजिए आजकल मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके YouTube से भी निकालते हैं प्रोजेक्ट्स, कई चीजें होती हैं जो उन्हें YouTube से मिल जाती हैं, उन प्रोजेक्ट्स का उन्हें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली जो कैप्शंस होते हैं वो हर वीडियो पे नहीं आते हैं, तो उसके ट्रांसक्रिप्ट एक साथ मिल जाती है। वीडियो आपने NodeGPT पे डाला और उसको पूरा समराइज किया, उसको ट्रांसक्रिप्ट किया, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक इट। सो तीनों के तीनों AI यू कैन क्लब इट विद NodeGPT, एंड आपका टूल तैयार है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के। I hope this is helpful. कोई भी मदद चाहिए उससे जुड़ी हुई तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर है, या फिर आप मुझे ढूंढ लीजिएगा दोहा वाला कबीर के नाम से, एंड पूछ लीजिएगा वापस, कोई मसला नहीं। ओके, अब बढ़ते हैं जरा कमाल के गैजेट्स की तरफ, आ जाओ जी।
1: Gadgets.
0: तो गैजेट नंबर वन, भाई ये गैजेट मुझे कोई गिफ्ट दे दी या मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, मेरे जितने भी गेमिंग भाई बहन है उनके लिए भाई बढ़िया करके, इस गैजेट का नाम है CRKD। हाँ, ये एक्चुअली में ऐसे ही है, CRKD एटम कंट्रोलर्स, ATOM, सो CRKD एटम कंट्रोलर्स। ये कंट्रोलर्स बहुत छोटे कीचेन जुड़ी हुई इनसे भाई, इतने छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि आपके हाथ इसको होल्ड ना कर सके दोनों हाथों से, मतलब इतने भी छोटे नहीं, लाइक अ गुड साइज ऑफ कंट्रोलर्स। एंड ये आपके मोबाइल से ब्लूटूथ, वाईफाई, USB तीनों से कनेक्ट हो जाते हैं। सो इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर प्लेइंग ऑन मोबाइल फोन्स, ये भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं, बहुत बहुत अच्छे कलर्स हैं, एंड बड़ी फैंसी गिफ्ट है फॉर अ गेमर। तो अगर आपके घर में कोई गेमर है उसको भाई ये दे दीजिए, आप छुट्टी है, मतलब आप इतना इंप्रेस कर देंगे सामने वाले को, बोलो और भाई यही तो चाहिए था और उसे पता भी नहीं है चाहिए था, ये ऐसा गिफ्ट है। इट कैन बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर गेमर्स, चेक दिस वन आउट, और काफी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये। मैं नाम दोहरा देता हूँ, CRKD एटम कंट्रोलर्स, स्पेस देखिए, ATOM कंट्रोलर्स। ट्राई दिस वन आउट, अगेन बजट में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और अगर आपको कोई दोस्त है, कोई खास है जो इंडिया जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है एंड कमिंग बैक, तो उसके हाथों मंगवा लीजिएगा, और भी ज्यादा सस्ता मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगला जो गैजेट है, दिस वन इज स्पेशली फॉर दोस्त जो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनके लिए है। और अगर आप

फैंसी गैजेट्स में है मेरी तरह, पसंद है आपको वो गैजेट जो बजट में आते हैं. इट इज कॉल्ड ब्राइट डाउन, ब्राइट डाउन E26 बल्ब. बल्ब है जी. अब वो बल्ब क्यों बता रहा है भाई, कंटेंट की कमी हो गई क्या? नहीं, ये अलग किस्म का बल्ब है भाई. इसका नाम है ब्राइट डाउन E26. ये जो बल्ब है ये रिचार्जेबल है, ठीक है. ये जो है आपके साथ, इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इसके साथ आपको टाइमर मिलता है, इसके साथ 3 कलर टेम्परेचर्स हैं और प्लस 9 RGB कलर्स हैं. 4 का पैक अलग से आता है भाई. और क्या, मैं अगर इसको बेचने वाला होता ना, मैं अभी भाई साहब बाहर ठेला लगा लेता, 1 घंटे के अंदर सारे बल्ब बेच देता, मैं इतना बड़ा फैन हूँ इसका. तो इसकी पिच मैंने यही तैयार करी है, आपको बता रहा हूँ, ऐसा बल्ब आपने देखा नहीं होगा. मैं इसका पैक लेने की सोच रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जब इंडिया जाऊंगा तो मैं तो उसका पैक लेके आ रहा हूँ. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ब्राइट डाउन E26 रिचार्जेबल लाइट बल्ब, देखिएगा बहुत अच्छा है, लिटरली काम आ सकता है आपके. और अगर घर में आपको ऐसी कोई गैजेट लगाना है जो थोड़ा सा स्मार्ट होम गैजेट लगे, तो दिस वन इज फॉर यू. और ये भी बहुत अच्छे बजट में, सो ट्राई दिस वन आउट. ये भी अमेजोन में अवेलेबल है एंड बाकी जगहों पे इजीली मिल जाएगा. इवन इट इज अवेलेबल इन कतर, इन सम क्या कहते हैं उसे, गैजेट की जो दुकानें होती है वहां पे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन. अगला है जी वो प्रोडक्ट जो बड़ा काम का है, जो मैंने अभी तक नहीं लिया है. लोग बोलते कैसे जिंदा हो तुम बिना पावर बैंक के. चलिए मैं तो इतना बाहर निकलता नहीं हूँ, पर आप निकलते होंगे. हो सकता है कि आपकी जॉब मार्केटिंग की हो, सेल्स की हो, एंड यू नीड पावर बैंक, यू नीड टू चार्ज योर फोन एवरी नाउ एंड देन, और आपके पास पावर बैंक होगा. मगर मेरी तरफ से भी ये पावर बैंक के बारे में सुनिए. इसका नाम है एंकर मैग गो पावर बैंक, ANKER. इसकी खास बात, सबसे पहली खास बात, 10,000 mAh बैटरी है, ठीक है. ये पोर्टेबल चार्जर के साथ आता है. इसके ऊपर डिस्प्ले भी है जो डिस्प्ले करता है कितनी बैटरी बची, कितनी बैटरी कंज्यूम हो रही है. एंड इसी के साथ ये फोल्डेबल भी है, और इसके साथ ये USB-C केबल भी आती है. एक मसला है इसके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ iPhones के लिए है. ये बस मद्देनजर रखिएगा, बाकी बहुत बढ़िया चीज है. इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली हैंडी एंड एक्सट्रीमली लाइट टू यूज. एंकर मैग गो पावर बैंक ट्राई कीजिएगा. ये गैजेट कतर में अवेलेबल है, आई हैव सीन इट समवेयर. बाकी अमेजोन पे, इफ यू नो समबडी यू कैन ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर, तो ये आप मंगा लीजिएगा. और इसकी खास बात ये कि 10,000 जो एमएएच बैटरी, वो जल्दी चार्ज भी जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती एंड ज्यादा भारी भरकम नहीं है. ऐसा नहीं लगता कि जेब में आपने ईंट रख रखी है, वो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी. सो ये थे गैजेट दिस वीक. नाउ मूविंग ऑन खबरों की तरफ, जो बड़ी कमाल की है. Okay, so, खबर नंबर 1 जो आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है. गूगल ने भी फैसला किया है कि वो कुछ नया करने वाले. मैं कब से सुन रहा हूँ ये, लेकिन गूगल ने किया है. गूगल का अगर आपने इनफ्रेम यूज किया है तो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. गूगल ने रिसेंटली रफली $75 million का इन्वेस्टमेंट किया है, पार्टनरशिप करी है एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ जिसका नाम है A24. अगर आप हॉरर थ्रिलर देखते हैं तो A24 बहुत बड़ा स्टूडियो है. और उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप करी है एक डीप माइंड रिसर्च के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ताकि मिलकर स्टूडियो A24 और गूगल एक डील पे आए, एक मुकाम पे पहुंचे जहां पे AI मूवीज बनाई जा सकें. तो इससे होगा एक डील जो है दोनों के बीच में मूवीज की रहेगी. लेकिन डील का मतलब ये नहीं है कि गूगल को A24 के कॉन्टेंट लाइब्रेरी या डेटा का हिस्सा मिलेगा, नहीं वो नहीं मिलेगा. मगर A24 can literally help Google to build an infrastructure या एक किस्म का ecosystem जहां से AI movies बन सकें. That's a huge news actually. अगली खबर है Apple की. Apple की तरफ से एक और बात सामने आई है. मुझे तो भाई डर लगता है जब भी Apple का product आता है, साफ सीधी बात बोलूं. इन्होंने प्लान किया है कि ये स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करें बहुत जल्दी. एप्पल इस पे काम कर रहा था काफी टाइम से, और वो डायरेक्ट कंपटीशन चाहते हैं मेटा रेबैन से, जो कि मुझे लगता है दे आर द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ. अगर आप लिटरली सोच रहे हैं कोई ग्लासेस लेने के, स्मार्ट ग्लासेस, तो मेटा रेबैन का कोई मुकाबला है ही नहीं. हालांकि गूगल और सैमसंग ग्लासेस भी आ चुके हैं, पर अभी रिलीज डेट नहीं आई है. ऑलरेडी उनके जो पेटेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं. मगर ओरिजिनली आइडिया बनाने का जो प्लान है गूगल का, उन्होंने कह दिया है बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं. आई नो बहुत ज्यादा रेट होने वाला है इसका, भाई ने कोई समझाओ यार. अभी जो है वो क्या, वो लॉन्च किया था इन्होंने अपना VR हेडसेट. प्लीज एप्पल बिहेव. And last but not the least, खबर है सीधा GTA 6 की फॉर द गेमर्स. गेम

0: and entertainment.
1: GTA 6 वालों ने 25 जून को कह दिया है कि कह दिया था जब आप सुन रहे होंगे तो 25 जून क्रॉस हो चुकी होगी शायद या नहीं हुई होगी but 25 जून pre-orders are on. लोग कह रहे हैं 150 GB का है कोई कह रहा 300 GB का है पता लग जाएगा बाद में लेकिन कवर आर्ट GTA 6 का आ चुका है उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं मेन दो प्रोटैगनिस्ट नजर आ रहे हैं एक फीमेल नजर आ रही हैं जो कि कवर आर्ट में कुछ है आई थिंक सम मिस्टीरियस कैरेक्टर टू प्ले विद और टू नॉट टू प्ले विद डोंट नो एक एलिगेटर नजर आ रहा है एंड सिटी द वाइस सिटी इज देयर सो I cannot wait any further. Please, Rockstar वालों और मत सरकाना. November 19th is the date. GTA 6 की लॉन्च होने की. And on that note, social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar. And इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा tech innovation से. This is Doha वाला कबीर signing off. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं. Masala.
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज की कि उस तरह से अगर हम ये अपना लें तो कमर दर्द से बचने में कामयाब हो सकते हैं। ज्यादा देर तक बैठने या कम जिस्मानी सरगर्मी के बायस हमारे जो मसल्स हैं बहुत सख्त हो सकते हैं, जिससे कमर का दर्द पैदा होता है। अब ये कि रोज़ाना स्ट्रेचिंग जो है वो बेहद ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है, उससे हमारे मसल्स की जो लचक है वो बढ़ती है, या अगर हम ये कहेंगे स्ट्रेचिंग जो है वो मसल्स की लचक को ज़्यादा करती है, जिस्म की हरकत बेहतर बनाती है, मसल्स के खिंचाव को कम करती है और कमर पर दबाव कम करती है। स्ट्रेचिंग जो है हमारी कमर पर जो दबाव होता है उसे कम करती चली जाती है। बहुत ही आसान सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि सुबह उठते वक्त पूरे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता से आप स्ट्रेच कीजिए। गर्दन और कंधों की हल्की एक्सरसाइज कीजिए। हर घंटे के बाद चंद मिनट खड़े होकर आप थोड़ी देर के लिए चलिए। टांगों और कमर के मसल्स को आराम से स्ट्रेच कीजिए। रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक कमर के मसल्स को मजबूत बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। अगर एक्सरसाइज के दौरान शदीद दर्द महसूस हो तो आप फौरन रुक जाइए, डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा जरूर कीजिए। बाकायदा स्ट्रेचिंग और जिस्मानी सरगर्मी सेहतमंद कमर के लिए नहायत ज़रूरी है, और इसमें यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे एक्टिव होना है। चंद मिनट की रोज़ाना की एक्सरसाइज आपको तवील अरसे तक कमर दर्द से महफूज रख सकती है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है फ्यूचर जॉब्स को लेकर। क्या हम 2030 के लिए रेडी हैं? देखिए, आज का जमाना ना बहुत तेजी से बदल रहा है। हर दिन नए टूल्स, नए एप्स, नए तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही, काम करने का तरीका भी बदल रहा है। और शायद इसीलिए सवाल उठता है कि क्या हम 2030 की जॉब्स जो है उसके लिए खुद को तैयार कर पा रहे हैं, क्या हम उस तरह से तैयार हैं? देखिए, पहले के जमाने में लोग एक ही स्किल सीखते थे और पूरी जिंदगी उस पर काम करते थे, कमा लेते थे और जिंदगी बिता लेते थे। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब एक इंसान को मल्टीपल स्किल्स चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, एक जर्नलिस्ट को सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए बल्कि उसको वीडियो को एडिट करना, सोशल मीडिया हैंडल करना, AI टूल्स का इस्तेमाल करना और शायद कंटेंट भी खुद ही क्रिएट करना आना चाहिए। 2030 तक कई ट्रेडिशनल जॉब्स या तो खत्म हो जाएंगी या फिर उनका नेचर शायद चेंज हो जाएगा। जैसे कैशियर की जॉब सेल्फ चेकआउट मशीन की वजह से खत्म होती ही जा रही है, आप देख ही रहे। दूसरी तरफ नए करियर्स भी पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने ही खत्म हो रहे हैं और कुछ नया नहीं आ रहा, नए भी आ रहे हैं। जैसे आज आप जानते ही हैं कि आज के जमाने में AI स्पेशलिस्ट हैं, डेटा एनालिसिस्ट हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, वहीं डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं और भी कई तरह की नई किस्म की जॉब्स जो है वो आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ कतर की, दोस्तों कतर जैसे मुल्क में जहाँ विजन 2030 का फोकस है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर, ये चेंज और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ यूथ को प्रिपेयर किया जा रहा है फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए, जहाँ इनोवेशन और डिजिटल स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट होंगी। अब सवाल ये है कि यूथ क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात, लर्निंग कभी स्टॉप ना करें। आज जो स्किल्स आप सीख रहे हैं मुमकिन है 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाएं, इसीलिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये वो स्किल्स हैं जो मशीन्स रिप्लेस नहीं कर सकती। आप AI को यूज कर सकते हो, लेकिन क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी इंसान की स्ट्रेंथ जो है ये खत्म नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि फ्यूचर जॉब्स सिर्फ ऑफिस तक महदूद नहीं होंगी। रिमोट वर्क है, फ्रीलांसिंग है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने से रहकर बैठकर काम कर सकते हैं। मतलब दोहा में बैठकर लंदन या फिर न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स के लिए काम करना एक नॉर्मल सी बात बन जाएगी, जो कि है भी। इस टॉपिक का जो TV एंगल हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप एक स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं जो अभी स्कूल में है और पूछा जा रहा है कि वो 2030 में क्या बनना चाहता है। फिर एक एक्सपर्ट से बात कीजिए जो बताए कि वो जॉब कौन सी होंगी जो उसे अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं कह सकती हूँ कि ये समझना आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुद को, अपने बच्चों को फ्यूचर जॉब्स के हिसाब से ही तैयार किया जाए। ये एक तरह की बच्चों की प्रिपरेशन है जो आज से शुरू हो जाती है और इसकी शुरुआत होती है अडाप्टेशन से। जो लोग अडाप्ट करेंगे वो कामयाब होंगे, जो लोग रुक जाएंगे, बहस करेंगे, वो शायद पीछे रह जाएंगे। तो एक सवाल आपके लिए, अगर 2030 कल हो तो क्या आज आप तैयार हैं? वैसे इसी सवाल पे

0: मैं आपसे इजाजत लूंगी. कल मुझे बताइएगा कि आपने तैयारी शुरू कर दी है कि नहीं. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Anytime, anywhere. कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: वेलकम बैक टू इको स्विच साथियों विद सफा, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो प्लेनेट को बड़ा चेंज दे सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, यानी पेड़ लगाने की मुहिम। भाई अब पेड़ लगाना सिर्फ एक सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये एक्चुअली नेचर का इन्वेस्टमेंट प्लान है। जरा सोचिए, आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, अम्मा अब्बा को देखा होगा, अम्मा अब्बा बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए। बिल्कुल वैसे ही ट्री प्लांटेशन एनवायरमेंट में ऑक्सीजन, शेड, कूलिंग और बायोडाइवर्सिटी का इन्वेस्टमेंट है। देखें, एक मेच्योर दरख्त अपनी जिंदगी में लगभग 20 से 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एब्जॉर्ब करता है और 100 साल तक जीता है। यानी एक दरख्त अपने लाइफ टाइम में एक छोटी कार के इमिशन को काफी हद तक ऑफसेट कर सकता है। अच्छा, अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल लेना तो भाई, एक पेड़, एक शेड, एक लाइफ एक्सपीरियंस। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, दोहा की गर्मी में आप एक रोड पर वॉक कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और एक छोटा सा दरख्त आपको शेड देता है। बस उस एक दरख्त की वजह से सराउंडिंग टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम महसूस हो सकता है। ये छोटी सी कूलिंग इफेक्ट किसी एसी से कम नहीं होती, लेकिन फ्री होती है और सस्टेनेबल होती है। एक रिसर्च के मुताबिक साथियों, अर्बन एरियाज में सिर्फ 20% ट्री कवर इंक्रीज करने से हीट रिलेटेड एनर्जी कंजम्पशन 30% तक कम हो सकती है, क्योंकि लोग कम एसी यूज करते हैं ना भाई। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको सरप्राइज कर देंगे वो बता देती हूँ। देखिए, एक मेच्योर दरख्त जो है वो एक दिन में इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि 2 से 4 लोग आराम से सांस ले सकते हैं। एक एकड़ फॉरेस्ट हर साल लगभग 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक सिंगल लार्ज ट्री अपनी लाइफ टाइम में 15,000 लीटर तक पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल साइकिल को बैलेंस करते हैं। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें ना, तो दुनिया में हर साल लगभग 10 बिलियन ट्रीज लगाए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने ही या उससे भी ज्यादा कट भी हो रहे हैं। इसलिए प्लांटेशन ड्राइव्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। साथियों, ट्री प्लांटेशन सिर्फ एनवायरनमेंट को ग्रीन नहीं बनाती, बल्कि क्वालिटी ऑफ एयर भी इम्प्रूव करती है, नॉइज पोल्यूशन भी रिड्यूस करती है और सॉइल इरोजन रोकती है। जब ट्रीज लगाए जाते हैं तो रूट्स जो होती है ना ट्रीज की, वो सॉइल को होल्ड करती हैं, जिससे फ्लड रिस्क भी कम होता है। एक और सिंपल एंगल ये है कि ट्रीज नेचुरल एयर फिल्टर्स हैं, वो हार्मफुल पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब अगर आप एक ट्री लगाते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने एरिया को एयर प्योरिफायर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी जीरो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर। जरा सोचिए, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं और हर स्टूडेंट एक प्लांट लगाता है। अगर उनमें से सिर्फ 70% प्लांट सर्वाइव कर जाए ना, या 60% भी कर जाए, तो 60 न्यू ट्रीज ग्रो हो रही होती हैं। 5 साल बाद वही जगह एक मिनी ग्रीन जोन बन सकती है, या एक कॉलोनी में अगर हर घर एक दरख्त लगाए तो पूरी सोसाइटी का टेम्परेचर नोटिसेबली ड्रॉप हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक फैन रूम में लगाते हैं, लेकिन यहाँ नेचर खुद कूलिंग सिस्टम बन जाता है। साथियों, अब इको स्विच का कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं। पहला, हमेशा लोकल क्लाइमेट के मुताबिक ट्रीज चूज करें, जैसे कतर में हीट रेजिस्टेंट।

0: स्पीशीज ज्यादा सर्वाइव करती हैं। दूसरा, प्लांटिंग के बाद सिर्फ लगाना काफी नहीं होता, पहले 6 months जो फर्स्ट 6 months क्रिटिकल होते हैं। रेगुलरली वाटरिंग करें और प्रोटेक्शन जरूरी होती है। तीसरा, प्लास्टिक गार्ड्स यूज करें ताकि छोटे प्लांट्स, एनिमल्स या एक्सीडेंटल डैमेज से सेफ रहें। चौथा, हर प्लांटेशन ड्राइव के बाद ट्री ओनरशिप टैगिंग करें ताकि लोग इमोशनल कनेक्शन फील करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कूल्स और ऑफिसेज में अडॉप्ट अ ट्री कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें जहां हर ग्रुप एक ट्री का केयर टेकर हो। साथियों, ट्री प्लांटेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब होता है जब ये एक इवेंट नहीं बल्कि हैबिट बन जाए। अगर हर इंसान अपनी लाइफ में 5 से 7 ट्रीज भी लगाए ना और उनको ग्रो होने तक सपोर्ट करे तो ग्लोबल स्केल पर बिलियंस ऑफ ट्रीज का इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बदलता बल्कि माइंडसेट भी चेंज करता है, फ्रॉम कंजम्पशन टू कॉन्ट्रीब्यूशन। आखिर में इको स्विच का मैसेज ये है साथियों कि ट्री प्लांटेशन सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होता, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। आज का लगाया हुआ एक दरख्त एक स्कूल, एक स्ट्रीट और एक सिटी को शेड, ऑक्सीजन और लाइफ दे सकता है। तो जब भी मौका मिले एक ट्री जरूर लगाएं, क्योंकि पौधे लगाना असल में अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहां हर सीड एक स्टोरी है और हर ट्री एक फ्यूचर। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: Mixing in the house.

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूव करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूँ नाजिया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन।
2: इंस्पायरिंग वुमेन उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
1: एक ऐसा शो जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं इंस्पायरिंग वुमेन की स्टोरीज। वेल, देखा जाए तो ये शो उन आवाजों का है जिन्होंने मुश्किल रास्तों को चुना और अपनी मेहनत और जज्बे से दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनी। जी हां, आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट बहुत ही खास है। ये एक पैशनेट एजुकेटर है और बहुत ही प्यारे दो बच्चों की मदर भी है। जी हां, आपका नाम है समरीन और समरीन ना सिर्फ तालीम के मैदान में अपनी एक खास मकाम बना रही है बल्कि वो हर रोज अपने स्टूडेंट्स को मौका दे रही हैं कि वो अपने लिए और समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करें। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, उनके चैलेंजेस सुनेंगे और उनकी कामयाबी सुनेंगे। सो हमारे साथ मौजूद है समरीन हामिद जफर। तो समरीन, आपको पहले मैं वेलकम कहना चाहूंगी एफएम 107 पे। कैसी हैं आप?
3: थैंक यू सो मच नाजिया फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। ओके समरीन, शुरुआत करेंगे आपकी इब्तदाई और आपकी ज़ाती ज़िंदगी को जानने के हवाले से। तो वो कौन से लम्हे थे जिन्होंने आपको इंक्लाइन किया टुवर्ड्स टीचिंग?
3: अगर मैं आपको बताना चाहूँ अपने बचपन के किस्से, तो मैं कभी भी पढ़ने में अच्छी नहीं थी।
1: अच्छा।
3: और स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हुई हूँ, मैंने कभी भी होमवर्क नहीं किया उस सब्जेक्ट का।
1: अच्छा।
3: लेकिन जब मैं कॉलेज लेवल पे आई और बहुत सारे मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया टीचिंग के टूअर्स, स्पेशली जो मेरी प्रिंसिपल थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वुमेंस कॉलेज की, शी वाज सो काइंड, बहुत मोटिवेटिंग थी ऐसे बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ाई में और मोस्टली आई वाज बिजी इन प्लेइंग और डिबेट्स एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे इस तरह से मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि ये प्रोफेशन लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकता है, तो व्हाई डोंट आई ज्वाइन दिस प्रोफेशन। तो दैट वाज द फर्स्ट टेक ऑन मी जब मैंने सोचा कि मैं भी टीचिंग फील्ड में जा सकती हूँ और मैं भी उन बच्चों को मोटिवेट कर सकती हूँ कुछ करने के लिए लाइफ में जैसे इन्होंने मुझे किया है। तो शी वाज द माय फर्स्ट पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड मी टू बिकम अ टीचर।
1: वेरी वेल सर। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि टीचर का रोल जो था वो आपकी लाइफ में काफ़ी अहम रहा और हम जानते हैं कि आप मदर भी हैं, तो अपना काम और ख़ास करके अपने घर की जिम्मेदारी ने बैलेंस करने में क्या किसी तरह की कोई परेशानी है? हाउ डू यू डू दिस? करती कैसे हैं आप?
3: मेरा काम, मेरे बच्चे और मेरे शौहर, ये सब बैलेंसिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा शरीक हयात मिला है जिसकी वजह से आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशंस। जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो वो हेल्प कर देते हैं घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए या घर के कामों के लिए, या फिर जब वो बिज़ी होते हैं तो मैं बैलेंस कर लेती हूँ। और तो इस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है तो अभी तक की, एंड ही इज़ माई सेकेंड मोटिवेटर। आई मस्ट टेल यू कि मैं एक ऐसी बैकग्राउंड

0: का आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और किस तरह से वो एक गुड बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी ओरेटर हैं, बहुत अच्छे से आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई?
1: वैसे तो मैं कॉलेज में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी एंड आई ऑलवेज लाइक पब्लिक स्पीकिंग एंड एज अ टीचर आई वॉज एवरी डे आई एम पब्लिक स्पीकिंग फॉर मी इन फ्रंट ऑफ द किड्स आई एम जस्ट स्पीकिंग सो देर वॉज नो फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पर मुझे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो मुझे चाहिए था. देन वन फाइन डे आई गॉट अ फ्लायर फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड. उसने मुझे इनवाइट किया कि तुम एक मीटिंग में आओ, यहाँ पर हम लोग सारे लेडीज़ मिलके बोलते हैं और पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा एक दूसरे को इनकरेज करते हैं. मैं गई, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी कि कैसे नॉट ओनली द वर्किंग वुमेन, देर वर लॉट ऑफ हाउस वाइफ जो इतना अच्छा बोल रही थी और स्टेज पे इतना ज़बरदस्त बोल रही थी, तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी. And since then, I am a very good debater. मेरी public speaking skills बहुत polish हुई हैं, मेरे अंदर बहुत confidence built up हुआ है, इसमें मैंने काफ़ी awards भी जीते हैं, so I'm really loving the life what I am living right now.
0: Very well said. अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि communication is a key, और ये soft skill आज के time में हर बच्चे के लिए बहुत mandatory हो गया है, तो आप अपनी good experience के basis पर जो आप सीख रही हैं as a debater, आपको क्या लगता है किस तरह से आप वो inculcate कर पा रही हैं students में भी?
1: That's very important. क्योंकि मैंने खुद में डिफरेंस देखा है पहले की टीचिंग में और अब की टीचिंग में, मुझे अपने बहुत फ़र्क नज़र आता है. जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट जो मैं हमें डिबेट में सिखाया गया या फिलर्स वर्ड्स हमें सिखाए गए या कैसे वर्ड्स को आपको अपने बोलना है, कैसे आपको पूरे फॉर्म करना है स्पीचेस को, और जब बच्चों का मैंने स्टार्ट किया एक एक्टिविटी पीरियड में, मैं क्या करवाती हूँ बच्चों के एंड ऑफ द डे कि मैं उनको टॉपिक्स देती हूँ ऑन स्पॉट टॉपिक्स एंड रैंडमली आई विल कॉल देम एंड यू नो दे विल स्पीक ऑन दैट टॉपिक्स. तो इससे एवरीडे की प्रैक्टिस से बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स बहुत डेवलप हो रही हैं और मैं उनको बताती हूँ कि आपने यहाँ इम्प्रूव करना है, आपने ऐसे करना है, तो मुझे लग रहा है कि मैं आई कैन नाउ बेटर नोटिस द फ्लॉज इन अदर स्पीकिंग सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई स्टूडेंट्स इन दैट वे. सो इन एवरी डे प्रैक्टिस आई एम डूइंग इवन ड्यूरिंग द क्लास. अर्लियर आई यूज टू टीच एंड दे यूज टू लिसन, नाउ दे यूज टू स्पीक एंड आई एम लिसनिंग. सो दिस इज द वे हाउ आई टर्न फ्लिप माई क्लासेस.
0: वेरी वेल सर. अच्छा, कोई ऐसी यादगार डिबेट, मतलब जीत या हार, वो आप बताना चाहेंगे जिसे आपने पर्टिकुलरली कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा?
1: अगर जीत की बात करें तो मैंने जब ज्वाइन किया था पब्लिक स्पीकिंग का, तो ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट था और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे फर्स्ट प्लेस मिलेगा उसके अंदर. आई वाज सो सरप्राइज एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एट द बैक एंड क्लैपिंग फॉर अदर्स. सडनली दे हैव कॉल्ड माय नेम दैट यू आर ऑन द फर्स्ट प्लेस. आई वाज सो सरप्राइज. तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने सालों के बाद, कॉलेज के बाद इतने सालों के बाद, मैं खुद ट्रॉफी ले रही हूँ और रिसीव कर रही हूँ, वो चीज़ एक अलग ही तरह की फीलिंग थी. और उधर ही अगर आप बात करती हैं लूजिंग की, तो वेरी नेक्स्ट व्हेन आई गो टू द एरिया लेवल, मैं वहाँ पे मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मैं जीतूंगी, मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था, पर मैं एक सेकेंड से टाइम डिस्क्वालीफाई होके लॉस कर गई. तो वहाँ मैंने एक लेसन लर्न किया कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बट यू नीड टू स्पीक विद इन दैट टाइम लिमिट. सो ये लेसन अभी मैं कभी भी जब भी कॉन्टेस्ट में जाती हूँ तो मैं कभी भी नहीं भूलती, और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
0: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के उस पार भी.

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमेन और आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन मौजूद है।

0: में। अच्छा, किसी स्टूडेंट की कोई कहानी आप शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको पर्टिकुलरली इंस्पायर किया या सरप्राइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड एक्सपीरियंस? इतना टीचिंग का है, कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा रहा होगा जो
1: डेफिनेटली बहुत सारे हम इतने, मैं 13 साल से पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारे हर साल जो बैच जाता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम ही सिखा रहे, बच्चे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं।
0: हाँ।
1: तो 2002 की बात है, एक बच्चा था मेरी क्लास में, वो हमेशा ही चुप रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था।
0: अच्छा।
1: तो मैं हमेशा, मुझे आदत पड़ गई थी इस चीज़ की कि मैं बच्चों को बुलवाऊँ क्लास के अंदर, वो कुछ बोले टॉपिक से रिलेटेड, कि मैं बोल देती थी ये टॉपिक है तुमने बोलना है। तो वो बच्चा हमेशा रिलक्टेंट रहता था कि मैं नहीं आई विल नॉट डू, मैं राइटिंग कर लूँगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं।
0: अच्छा।
1: हर दिन मेरा ये काम था कि मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हें बोलना है, और वो मना करता था। एट द एंड ऑफ द ईयर वो बच्चा आया, बोला आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, और उसने 7 मिनट की पूरी स्पीच मेरे ऊपर बोली, द हाउ एज अ पर्सन ही लाइक्स मी एंड वॉट ऑल ही लर्न फ्रॉम मी। और इतना अच्छा बोला उसने, इतना फॉर्म में बोला, आई वॉज सो सरप्राइज कि ये बच्चा इतने दिन से अपने इस टैलेंट को अंदर रखे हुए था। और उसके बाद से आज तक टाइम हो गया, उसके पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, ही इज अ वेरी गुड डिबेटर ऑल्सो राइट नाउ, ही इज गोइंग फॉर कतर डिबेट्स एंड एवरीथिंग। सो पेरेंट्स आर रियली, यू नो, they are sending me messages for all this, so this is the what I am
0: wanting, the real congratulations I am receiving. बिल्कुल, ये तो सही बात है। अच्छा, जैसे debating की हम बात कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं critical thinking को भी और आपके expressions को भी मौका देता है कि आप उसको पूरी तरह से जो है ना pen down करें। तो बच्चे जो घबराते हैं, जो उन्हें घबराहट होती है, they have that talent, उनमें है वो talent, और आप भी as a teacher ये समझते हैं इनमें talent और potential है, but despite of that उन्हें एक fear होता है stage पर जाकर, you know, पब्लिक को फेस करने का। तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स या टिप्स जो है आप एज अ टीचर ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड एक्सपीरियंस देना चाहेंगी पेरेंट्स को भी एंड स्टूडेंट्स को भी, जिससे वो अपनी इस घबराहट को दूर कर सके?
1: सबसे पहले तो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या स्किल्स है। अगर उसके अंदर जस्ट अ स्टेज फियर है तो उसके लिए हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्लासेस के अंदर देते हैं बच्चों को बोलने के लिए। जब वो एक 32-35 की स्टूडेंट के सामने बोल पाएंगे, देन वी हैव क्लास असेंबलीज, वहाँ पर बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं।

0: अलॉन्ग विद दैट वी हैव डिबेट क्लब्स जिसके अंदर हम बच्चों को डिबेट की ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशली उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके अंदर हमें पता है कि पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट है बट फियर है. तो एक स्कूल लेवल पे भी डिबेट करते हैं हम लोग, फिर वो बच्चे इंटर स्कूल जाते हैं या कतर डिबेट तक वो बच्चे प्रमोट हो जाते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सेवेंथ एट्थ में भी बहुत अच्छा नहीं बोलते थे पर इलेवेंथ में आके दे आर वेरी गुड डिबेटर्स एंड दे आर विनिंग ऑल्सो. सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग लाइक फ्रॉम अवर साइड, हाउ टू इनकरेज ऑल दीज फ्यूचर पब्लिक स्पीकर्स.
1: Very well said. अच्छा हम कम्युनिकेशन स्किल्स तो एनहांस हो ही रही है, ऑफ कोर्स जब आप अच्छा बोल रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स भी एट द सेम टाइम हो रही है. लेकिन रीडिंग कहते हैं ना कि राइटिंग और स्पीकिंग इन दोनों के लिए बहुत ही एसेंशियल है कि आप एक अच्छे रीडर हों. तो इस हैबिट को किस तरह से इनकल्केट किया जा सकता है स्टूडेंट्स में?
0: उसके लिए भी हमारे जैसे स्कूलों के अंदर आप कहें तो हम लोग रीडिंग के अवार्ड देते हैं बच्चों को जिसने मैक्सिमम बुक्स रीड करी हैं तो बच्चे इनकरेज होते हैं. या बच्चों को ये बोला जाता है कि आपको बुक्स के ऊपर समरी लिख के लानी तो, और या क्लासेस के अंदर भी हम लोग उनको ये बोलते हैं कि इस वीक में आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उसकी समरी आप सुनाइए क्लासेस की. तो रीडिंग को भी बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर रीडिंग नहीं बच्चे करेंगे तो वो लिख नहीं सकते. और अगर वो लिख नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली वो बोलेंगे भी नहीं. सो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड. तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनका स्क्रीन टाइम से टाइम शिफ्ट होके रीडिंग पे आए और फिर वो क्रिएटिव राइटिंग में आए, उसके बाद वो स्पीकर बने. सो दिस इज ऑल स्टेप बाय स्टेप हाउ दे आर डूइंग इट.
1: अच्छा समरीन, ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्लासरूम में एक्चुअली जो पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स हैं और एम्पैथी, इन दोनों में गुड बैलेंस कैसे बना पाते हैं? एंड डू यू फाइंड इट मोर चैलेंजिंग?
0: या समटाइम्स व्हेन देयर इज अ डिबेट इन द क्लास, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ टाइम आई डू द स्पीकिंग एक्टिविटी इन द क्लास. सो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, उनको टॉपिक्स दे देती हूँ और उनको डिबेट करना होता है. एंड देयर इज अ ग्राउंड रूल दैट यू हैव टू अटैक ऑन द आर्ग्यूमेंट नॉट ऑन द पर्सन.
1: Okay.
0: So they have to prove their point, but they have to understand the other point is also right from that point of view. तो ऐसा नहीं है कि वो उसको बोल सकते नहीं यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग है ना, मे बी वो जो अदर ग्रुप बोल रहा है वो अपने पॉइंट से करेक्ट बोल रहा है. तो हमेशा बच्चों को मैं ये सिखाती हूँ कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है.

0: ना कि दूसरे का, ये बताना कि तुम गलत हो. तो इस चीज से जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो इससे फिर उनके अंदर थोड़ी एम्पैथी आती है, वो दूसरे बच्चों पे उस तरह से अटैक नहीं करते और वर्बली अटैक नहीं करते जिससे दूसरा डिमोटिवेट हो.
1: सही. और मुझे लगता है कि अगर आप किसी के ओपिनियन के साथ डिफर करते हैं, इट्स वेरी गुड, इसमें कुछ बुराई नहीं. और आपकी अपनी ओपिनियन है, इज़ नीड टू रिस्पेक्ट. बिल्कुल. अच्छा, आप मदर हैं एंड वी नो दैट कि आपका जो बच्चा है ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वी नो हिम. और उसके अलावा भी ही वॉज डायग्नोज विद ADHD, राइट? तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया व्हाइल यू आर वर्किंग वुमेन? तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा.
0: एक्चुअली दैट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज, नॉट फॉर मी, फॉर होल फैमिली. वेन ही वॉज यंग तो हमें इतना पता नहीं था कि बच्चा जो चीज़ें कर रहा है वो नॉर्मल है कि नहीं है. पर मैं दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करती थी और मैं क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करती थी, तो मुझे लगता था कि मेरा 3 साल का बच्चा उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं. तो हमने फिर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा, हमने उसको डॉक्टर्स को दिखाया, कई सारे डॉक्टर्स को, और उसको माइल्ड ADHD है. तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि या तो आप दवाएं दे सकते हैं या तो फिर आप उसकी थेरेपीज़ कर सकते हैं. थेरेपीज़ के लिए थोड़ा तो डॉक्टर्स ने किया, फिर उन्होंने हमें टेक्निक्स बताई. अलॉन्ग विद दैट मैंने किताबें पढ़ी जिसके अंदर टेक्निक्स लिखी हुई थी. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ADHD से रिलेटेड. मैंने उसकी डिटेल्स में गई कि इसके रीज़न, रूट कॉज क्या है और हाउ कैन वी क्योर इट, बिकॉज दिस इज क्योरेबल. फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन करा और मेरा फुल फोकस मेरे बेटे के ऊपर हो गया. मैंने वो चीज़ें बंद कर दी जो, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बताई थी, फ्राइड फूड नहीं देना है आपने, आपने मीठा कुछ नहीं देना है बच्चों को, किसी भी तरह के जूसेस नहीं देते, मार्केट का कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड नहीं देना है, वो सारी चीज़ें, या जितना भी आप जंक फूड आ रहा है वो कुछ भी नहीं देना है, सारा होम मेड फूड देना है. तो वो सारी चीज़ें से उसका बहुत कंट्रोल हुआ, क्योंकि खाना
1: डाइट मैटर करती है
0: बहुत ज़्यादा.
1: अच्छा.
0: और प्लस स्क्रीन टाइम आपको बच्चे का कंट्रोल करना है, क्योंकि स्क्रीन पे इतने फ्लैशेस आ रहे हैं, इतने कलर्स आ रहे हैं कि वो बच्चे का माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता है. तो वो बच्चे का एट टेंडर एज वो चीज़ें बच्चे जब कैच करते हैं तो वो वही चीज़ें करने लगते हैं. तो ये एक थोड़ा मसला आ जाता है. तो मैंने उसका स्क्रीन टाइम भी कैंसिल किया. उसके टूवर्ड्स मैंने उसको रीडिंग की तरफ थोड़ा इंकरेज किया. तो अभी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रीडिंग में है. इज अ पब्लिक स्पीकर ऑल्सो, इज वेरी मच इनटू यू नो रोबोटिक्स एंड ऑल, दैट्स वाज हिज एम, इज टू बिकम ए रोबोटिक इंटीरियर. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश करी, हर तरह से. उसने भी बहुत कोऑपरेट किया, हमने उसे समझाया कि तुम्हें ये मसला है और हमें ऐसे ही कंट्रोल करना है. तो उसने भी कभी जिद नहीं करी कि नहीं मुझे मीठा खाना है. अगर कभी कुछ अच्छा होता था तो हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट दे देते थे. तो इन सब चीज़ों से और बहुत सारे गेम्स थे जो हमने लिए उसके लिए, उसको इंगेज किया, स्पेशली ड्राइंग, स्विमिंग ऐसी एक एक्टिविटी है जो माइंड को सूदन करती है. या ड्राइंग अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, बहुत देर तक कलरिंग कर पा रहा है, तो उसका पेशेंस लेवल बढ़ रहा है. तो ये सब एक्टिविटीज़ करानी चाहिए बच्चों को, ना कि मतलब किसी भी ऐसे उसमें भेजें जिसमें वॉयलेंस सीखे बच्चा. तो इस तरह की हमें एक्टिविटीज बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए.
1: एंड दैट्स टू परसिस्टेंट कैन आउटपेस सिंगल टैलेंट एवरी सिंगल टाइम, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के उस पार भी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
4: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमेन और आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन मौजूद है।
6: इंस्पायरिंग वुमेन उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
5: और ये अच्छी बात आप बता रही थी, और आपने कहा कि कुछ थेरेपीज भी हैं
7: जी,
5: तो जो हाँ जो मेरे ख्याल से जो हमारी ऑडियंस सुन रही है, जो इस वक्त लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, तो कुछ आप थेरेपीज यहाँ पर कुछ मेंशन करना चाहेंगी क्या एग्जैक्टली आपने किया? डाइट कंट्रोल तो हम समझे कि आपने एक्सप्लोर कर दी उसकी डाइट,
7: तो बच्चे के माइंड कंट्रोल थेरेपीज होती है, जैसे पजल गेम्स होते हैं तो हम उनको मिक्सअप करके दे देते हैं, तो बच्चा कितना फोकस कर पा रहा है, कितने देर में हम टाइमर लगाते हैं, कितनी देर में वो पजल को सॉल्व कर रहा है, जैसे जैसे फिर उसके बाद उसकी चीज को हम इम्प्रूव करते रहते हैं कि उसका लेवल बढ़ रहा है, फोकस का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे रुकते नहीं है एक जगह पे, थोड़ी देर वो रखेंगे दो चीजें, फिर उनसे तीसरा लग नहीं रहा तो छोड़ देते हैं उसको या वो फेंक देंगे उठाकर। तो ये जैसे आपके ब्लॉक्स आ गए, तो ब्लॉक्स हमें कैसे फॉर्म करना है, इसी चीजों की वजह से मैंने लेगोज इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि लेगोज इतने छोटे होते हैं और उससे किसी भी टाइप का आप शेप बनाना, तो ये सब चीजों में जब बच्चे का फोकस लेवल बढ़ेगा, उसका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, तो उसका ADHD अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये एक कुछ इस टाइप की चीजों में बच्चों को, और उसके साथ आप ये नहीं कर सकते कि आपने दे दिया हाँ बेटा करो बैठ के, आपने खुद भी लगना मैं भी कलरिंग कर रही हूँ, मैं भी ब्लॉग्स बना रही हूँ, मैं भी लेगोज बना रही हूँ साथ में, तो जब हम इन्वॉल्व होंगे साथ में तो हम

0: उस बच्चे के चैलेंजेस को समझेंगे और फिर बच्चा ज्यादा इंप्रूव करता है बनिस्बत.
1: मुझे यहाँ पे एक लाइन याद आ रही है जो कहते हैं ना क्वालिटी टाइम दीजिए, नहीं इट्स नॉट अबाउट गिविंग क्वालिटी टाइम, इट्स अबाउट गिविंग क्वांटिटी टाइम. अच्छा खासा वक्त दीजिए आप,
0: दीजिए लेकिन आप खुद दीजिए,
1: हाँ खुद इन्वॉल्व हो आप, मतलब टाइम ज्यादा से ज्यादा. बिल्कुल. अच्छा वो सिबलिंग्स के रोल को आप कैसे डिफाइन करेंगे इस सिचुएशन सिनेरियो में?
0: यू आर टॉकिंग अबाउट माय डॉटर?
1: यस.
0: मेरी बेटी बहुत समझदार है माशाल्लाह. वो
1: बचपन भाई के साथ कैसा?
0: हाँ उसका इंटरेक्शन वो समझती है इस मसले को.
1: अच्छा.
0: बहुत अच्छे से, क्योंकि वो मतलब वो ऐसा बच्चा है जिसने इस चीज को देखा है कि भाई ये सब चीजों के थ्रू जा रहा है, या भाई स्कूल जाता है तो बच्चे कैसे बुली कर रहे हैं उसको, या बच्चे परेशान अगर उसको कर रहे हैं तो वो कैसे भाई को सपोर्ट करती है. तो वो शी बिहेव्स लाइक अ एल्डर सिस्टर, उसको समझाती है तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, या उसके लिए हेल्प करती है जब उसको इमोशनल आउटबर्स्ट होता है तो उसको बहुत ज्यादा केयर करती है. तो इस मामले में वो छोटी है फिर भी वो बहुत मतलब समझदारी से बिहेव करती है.
1: दैट मींस कि एक पेरेंट्स का उसके साथ एक कन्वर्सेशन सेशन रहा.
0: हमने उसे बताया, हमने उसे समझाया कि भाई के साथ ऐसा मसला है और हमें सबको मिलके भाई के साथ कोऑपरेट करना है. तो वो माशाल्लाह करती है, पर वो भी बच्चा है, कभी कभी तो वो भी हो जाता है.
1: नहीं चलिए खैर, फिर भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से अपने भाई के साथ होना.
0: जी जी.
1: कोप अप करें चीजों को. अच्छा आप अपने बच्चों को और चलिए बच्चों के अलावा स्टूडेंट्स को किस तरह से रेजिलिएंट होना सिखाते हैं?
0: क्लासेस के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना है, दूसरे की बिहेवियर को सबसे पहले आपको टॉलरेट करना है. जो डिफरेंसेस हैं हमारे क्लासेस के अंदर, जो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, जो कल्चर डिफरेंसेस हैं, तो जब बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो जाते हैं कि वो कैसे कोऑपरेट करके एक दूसरे, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत ईजी नहीं होता है. पर जब हम एज अ टीचर क्लास में हम कोई बायस नेचर नहीं करते, हम सबके साथ इक्वली बिहेव करते हैं और वही चीज़ क्लासेस के अंदर प्रमोट करते हैं, तब बच्चों के अंदर रिजल्ट बिहेव मोर
1: और वैसे भी इंक्लूसिविटी को जो है प्रमोट करते हैं.
0: ये चाहिए. वेरी वेल सेड.
1: अच्छा बहुत अच्छा लगा समरीन आपसे बात की हमने, और वक्त हमें बिल्कुल पता नहीं चला कहाँ निकला, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एज एन एजुकेटर एंड ऑफ कोर्स एज अ डिबेटर, और किस तरह की लेगेसी आप छोड़ना चाहती हैं?
0: एज ए एजुकेटर डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त किस्सा शेयर करना चाहूँगी कि मैं जिस स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पर एक बच्ची आई टीचर रिक्रूट होके, उसने आके मुझे कहा कि मैम आपने मुझे फिफ्थ ग्रेड में पढ़ाया है, नाउ ही इज़ अ टीचर इन माई स्कूल. आई फील सो हैप्पी टू सी हर कि वो मेरा ही सब्जेक्ट आके पढ़ा रही है, तो वो मुझे एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा. दूसरा किस्सा मैं आपको बताऊंगी कि मैं पुलिस स्टेशन गई.
1: अच्छा.
0: तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी बच्ची थी, उसने मुझे रिकॉग्नाइज करा, बोला मैम यू टॉट मी इन एट्थ ग्रेड. तो आई फील लाइक दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड इन दीज मेनी इयर्स. तो यही मुझे चाहिए. मैं एज ए एजुकेटर मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है डिफरेंट फील्ड्स में जाएँ, सक्सेसफुल हों और हमेशा मुझे याद रखें इन गुड वर्ड्स. दिस इज व्हाट आई वांट. एंड एज अ डिबेटर डेफिनेटली आई वांट टू गो टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल. डेफिनेटली वन डे आई वांट टू गो, दैट्स माय टारगेट. लेट्स सी.
1: इंशाल्लाह सारी दुआएं हमारे आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच स्पीकिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग सच अमेजिंग इनसाइट.
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी.
1: थैंक यू वंस अगेन. दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से डीसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: नहीं बल, और बिल्कुल हमें यही हमें सुनना भी था जी। इसमें जो ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा हाइपोथायरिडिज्म हाइपर ज़्यादा हो जाता है, या खुदा नखास्ता कोई नोड्यूल हो सकता है, या कैंसर भी खुदा नखास्ता, तो इसमें ज़्यादा कॉमन कौन सी जो है वो टाइप होती है?
1: ज़्यादा कॉमन जो है वो अंडर एक्टिव हाइपोथायरिडिज्म, या जिसको हाशिमोटोस कहते हैं, यानी कि वो जो मुदाफ़ियती निज़ाम है आपका, उसके अंदर ख़ास किस्म की कुछ प्रोटीन्स बनती हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि थायरॉयड के कुछ पार्ट्स को, जो थायरॉयड हार्मोन बनाती हैं, उस पर अटैक करके उनको बेकार कर देती हैं। इन तो थायरॉयड आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देता है या कम हो जाता है बिल्कुल उसका फंक्शन, यानी कि इतना नहीं होता कि आप नॉर्मली फंक्शन कर सकें, पेशेंट जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर सकें। तो हाशिमोटो सबसे कॉमन है, और उसके साथ अगेन मैं इस फोरम से ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से आप समझें कि ले लोग हैं जो यूट्यूब के ज़रिए लोगों को कहते हैं कि हम आपका हाशिमोटोस ठीक कर देंगे, आप ये खुराक खा लें तो ठीक हो जाएगा, आप ये मेडिसिंस खा लेंगे यानी कि सप्लीमेंट्स खा लेंगे तो ठीक हो जाता, ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं हो सकता। अलबत्ता ये कि इसमें बेहतरी हो सकती है, यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ग्लूटेन फ्री डाइट ली तो उससे हमारा हाशिमोटोस बेहतर हो गया। जी, अगर इन्फ्लेमेशन होती है, ग्लूटेन से इन्फ्लेमेशन होती है गट में सबके, और वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है तो यानी कि वो सोजिश जो आपकी गट की कम होती है तो सोजिश जो फिर थायराइड की भी कम हो जाती है, क्योंकि हाशिमोटोस खुद एक सोजिश का निज़ाम है। इनिशियली बिल्कुल सोजिश हो जाती है, यानी कि थायराइड सूज जाता है, सूज के फिर वो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके जो बीमार सेल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपकी आंतों की सोजिश कम होती है तो आप जनरली अच्छा फील करते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से सप्लीमेंट्स हैं जो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मेंशन करूं कि जो सॉल्ट है वो यहाँ पर आयोडाइज्ड है, तो एक्स्ट्रा आयोडाइन लेने की आमतौर पर ज़रूरत नहीं है अनलेस के ऐसा लगे उनको कि हमारे सॉल्ट में आयोडीन नहीं है। तो अगर ख़वातीन अगर हमल प्लान कर रही हैं तो उनको लेनी चाहिए, यानी कि जो प्रीनेटल विटामिन होते हैं उनमें सब में होता है। सेलेनियम है, एक दवाई है सेलेनियम, सेलेनियम भी एक मिनरल है जो सॉइल में होती है, तो वो 100 to 200 माइक्रोग्राम्स अगर लें लोग तो उससे अक्सर ये कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ख़ासतौर पर हम उन ख़वातीन के बारे में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनके लिए लाजमी है कि उनकी एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाए, यानी कि जो खुद अगेंस्ट उनकी बॉडी के प्रोटीन्स बन रही होती हैं उनके साथ थोड़ा सा हाई रिस्क है प्रेगनेंसी लॉस का, यानी कि हमल ज़ाया हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हों। तो अगर ये प्लान करके अगर वो प्रेगनेंसी करें तो फिर इसका चांस अच्छा है, ज़्यादा है कि एक तो ये कि उनका थायरॉयड का जो लेवल है वो मुनासिब हो, क्योंकि बेबी जो है वो खुद थायरॉयड हार्मोन नहीं बनाता पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 11 से 12 हफ्ते बेबी नहीं बना सकता तो माँ के ऊपर उसका डिपेंड करता है, तो माँ के को एक्स्ट्रा भी लेना है, बेबी के लिए भी एक्स्ट्रा लेना है। तो अक्सर ये होता है कि जब हमल ठहरता है तो ख्वातीन को 25 to 50% एक्स्ट्रा लेना होता है थायरोक्सिन, तो वो खुद से ना करें, जैसे ही उनको पता चले कि हमल ठहर गया तो वो डॉक्टर से रुजू करें और अपना TSH का टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो है डोज में जो चेंज आए तो उसको वो कर लें।
0: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है जैसे हाइपोथायरायडिज्म तो उसी को टेस्ट कराना है या सभी, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो सबको टेस्ट जो कराना?
1: मेरा ख्याल है कि प्रेगनेंसी में सबका ये होना चाहिए, क्योंकि जिसको जिनकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं भी है या जिनको पहले ये नहीं भी हुआ, तो आप जानती होंगी फौजिया कि एक ये काइमेरिज्म का एक मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो बेबी के सेल्स होते हैं वो मदर के डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं, तो वो खुद एक समझें कि एक मुदाफ़ती निज़ाम का एक कैस्केड ट्रिगर हो जाता है उनसे, तो थायराइड में भी हो जाता है, तो थायराइड में खुद इन्फ्लेमेशन हो के चाहे उनको नहीं भी है फैमिली में हिस्ट्री तो हो सकता है। और कई बार ऐसे होता है कि एक कोई प्रॉब्लम है जो नोड्यूल है पहले से थायराइड का, वो ओवर एक्टिव हो गया या पता नहीं था पहले और प्रेगनेंसी में एक्टिवेट हो गया, तो मेरे हिसाब से तो सबको करवाना चाहिए।
0: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब जैसे हम हाइपोथायरायडिज्म की जैसे आपने कहा कि उसका जो लेवल है कम हो जाए या वो जो एक्टिविटी उसकी थोड़ी कम हो जाए, तो इसमें हाइपोथायरायडिज्म ही होता है या हाइपर भी हो सकता है?
1: हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। अब वो अंडरलाइंग जो उनका जेनेटिक मेकअप है उसके ऊपर है, तो उनकी अलामत की बात कर लेते हैं और फिर जो है जो हाइपोथायरायडिज्म है, यानी कि अगर आपकी यानी कि जो इंजन है वो सुस्त हो गया, सुस्त चलना शुरू हो गया, तो हर चीज़ ही सुस्त हो जाएगी, यानी कि नींद ज़्यादा आएगी।
0: जो केसेज हैं वो हाइपो के जी, हाइपो के सामने
1: एग्जैक्टली जी, नींद ज़्यादा आती है, बाल गिरते हैं, स्किन खुश्क हो जाती है, जो है महामारी हैवी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वो जो है उनको भूख ऑल्दो वो खा नहीं रहे होते लेकिन मुंह फूलना शुरू हो जाता है उनका, वजन ज्यादा अच्छा। होना शुरू हो जाता है, और अक्सर जिन लोगों को ये लगे कि उनकी और उनको अक्सर

0: अक्सर इनफर्टिलिटी भी होती है साथ क्योंकि जब अंडर थायराइड काम नहीं कर रहा होता तो जो आपके बड़े ग्लैंड्स होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं तो वहां से सिग्नल ज्यादा होते हैं तो प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाती है तो फिर उनके एक्सिल रिलीज नहीं होते सही से सो ये बहुत लाजमी है जो खवातीन प्लान कर रही हैं फैमिली उनके लिए बहुत लाजमी है कि वो अगर हाइपोथायराइड नोन है तो उनको उसको चेक करना चाहिए कंट्रोल अगर नहीं है और उनको ये कोई अलामत हो गई तो चेक करा लें
1: ठीक है इसमें डॉक्टर साहब कोई जैसे कॉजेज हम पूछें जैसे हम आम वैसे किसी भी डिजीज पर कोई भी बात करते हैं तो कॉजेज का भी जरूर होता है तो इसकी कोई कॉज और हो सकती है जैसे हाइपोथायरायडिज्म की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या वजूहत हो सकती
0: है जी वायरसेस भी होते हैं कई बार ऐसे कुछ वायरसेस आते हैं जैसे अक्सर जो वायरल थायरोडाइटिस जिसको कहते हैं यानी कि किसी वायरस की वजह से थायराइड में इतनी सोजिश हो गई है कि उसके अंदर जो है वो थायराइड हार्मोन बनना बंद हो गया तो उसमें बुखार आता है और एकदम जो है आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है पसीने आते हैं और एकदम बहुत सा थायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में यानी कि इंजन बहुत तेज चलता है आपका उसके बाद जो है वो अंडर एक्टिव हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें सोजिश हुई कि सेल्स की जो है ना वो कमी हो गई तो ये वायरल भी है ऑटोइम्यून जैसे हमने कहा आपको कि वो है और कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे जो है उनका बहुत छोटा थायराइड होता है यानी कि बना नहीं होता प्रॉपरली जो है वो
1: अंडर ग्रोथ
0: में तो वो उनका फिर ये होता है कि उनको चाहे कई बार ऐसे होता है कि आपको एंटीबॉडीज ना भी मिले ब्लड में आप हमेशा टेस्ट कराते हैं उनका कई बार नहीं भी मिलती 10% लोग हैं जिनमें एंटीबॉडीज नहीं भी मिलती तो उनके बगैर एंटीबॉडी नेगेटिव होकर भी उनका थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव हो सकता है और या फिर ये कि टिश्यू ही कम था बचपन से ही कम था
1: अच्छा अच्छा ठीक ऐसा भी हो सकता है कंजेंटल जैसे कम है वैसे तो जाहिर है माँ के उस पर होते हैं मगर बाज़ोकात जी भी कम भी हो सकता है इसमें आपने बता दिया कि जो अलामत हैं वो वही हैं कि वेट गेन हो जाता है कॉन्स्टिपेशन भी बस दफ़ा
0: जी एग्जैक्टली
1: जी तो फिर कब ये नॉर्मल भी बज दफ़ा ये जो हैं सिम्टम्स अलामतें आ सकती हैं तो कैसे जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाए कि हाँ ये जो हैं वो रेड फ्लैग्स जो नज़र आ रहे हैं या कुछ है जी
0: आपने अच्छा सवाल किया ये क्योंकि ये जो है ख़ास तौर पर जब लोग जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है तो बच्चे बहुत सोते हैं या मेनोपॉज होने लगता है तब ये लोग सुस्त फील करते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आपको लगे कि दिस इज़ नॉट मी मैं तो इस तरह नहीं सोती थी या मैं इस तरह मुझे इस तरह कॉन्स्टिपेशन नहीं होती थी या मेरे बाल ऐसे खुश्क नहीं थे तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर आप चेक करा लें एक ब्लड टेस्ट ही है तो वो आप करवा लें तो बहुत बेहतर है कोई रेड फ्लैग इसका उस तरह से नहीं है बहुत सा एक सिम्टम्स हैं जो बहुत के जनरल सिम्टम्स हैं तो उस तरह से कुछ नहीं है यानी कि आजकल पहले ऐसे होता था कि लोगों से मिस हो जाता था इसका डायग्नोसिस और वो इतना एडवांस होता था कि वो कोमा में चले जाते थे लोग
1: अच्छा।
0: तो मेरा ख्याल ये है कि जब से आपको लगे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है कि भाई मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है या मैं क्यों इस तरह सो रही हूँ या सो रहा हूँ आपको लगे कि ये दिस इज़ नॉट यू तो आप करवा लें उस वक्त
1: ठीक है और ये कि वेट अगर ज्यादा हो रहा है
0: वजन ज्यादा हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि मैं तो खा नहीं रही इतना तो फिर भी ज्यादा हो रहा है फिर भी आप करा सकते हैं या आपकी बहुत से लोगों का हेयर फॉल बहुत होता है हेयर फॉल होता है और स्किन बहुत ड्राई फील होती है वो छोटी छोटी बातें दो चार आपकी इकट्ठी हो जाएं तो आप करवाएं टेस्ट जरूर
1: ठीक है इसमें एज का हम पूछ सकते हैं कि किस एज में जो है हम ज़्यादा केयरफुल होना है आपने अच्छा बता दिया कि जैसे ही आप जो है मेनोपॉज़ल और बलूगत की जो उम्र है उसमें ख़वातीन में से है और जो मर्द हज़रात हैं उनकी
0: उनको भी उनका भी ये है कि उनको 30s में 40s में और कुछ को टीन्स में भी हो जाती है सो अगर उनको फैमिली में हिस्ट्री थी और कुछ ऐसे ट्रिगर्स आए टाइम पर जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस आया किसी टाइम पर 15-16 ईयर्स की एज पे तो उनको उस टाइम पे उनका भी प्यूबर्टी पे ट्रिगर हो सकता है और उनका भी 30s-40s में भी ट्रिगर हो जाता है
1: डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो स्ट्रेस है या कुछ इस मेंटल जो हेल्थ है उसकी भी अगर आपकी बैलेंस में नहीं है तो भी वो थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगी मैं
0: जी सो आप जो स्ट्रेस है वो आपका जो अगर इम्यून सिस्टम जो है उसको चेंज कर देता है स्ट्रेस वो और ये जो थायराइड है इसके लिए इम्यून सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे ही इम्यून सिस्टम अपसेट होता है तो थायराइड भी अपसेट हो जाता है सो उसका जैसे अगर आपको किसी किस्म का भी जिस्मानी स्ट्रेस हुआ या आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम सारा चेंज हो जाता है उसके चेंज होने से फिर जो थायराइड की ऑटोइम्यूनिटी है वो भी चेंज हो जाती है और वो ट्रिगर होके तो या हाइपो या हाइपो

0: पर जिस तरफ भी उसको जाना होता है वो चला जाता है डिपेंडिंग ऑन के नीचे जेनेटिक्स क्या है कि कई रेसेस जो हैं जैसे हमारे लिए तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन जैसे ईस्ट एशियंस हैं जो चाइनीज रेसेस हैं उनको हाइपरथायरॉइडिज्म ज़्यादा होता है यानी कि उनको ओवर एक्टिव ज़्यादा होता है बिकॉज उनकी जो अंडरलाइंग जीन्स हैं वो ऐसी हैं कि उनको ओवर एक्टिव हो जाता है तो फिर होता उनका भी स्ट्रेस से ही ट्रिगर है ट्रिगर्स उनके भी वही हैं और एंटीबॉडीज भी उनकी वही हैं लेकिन ये कि उनका उस तरफ चला जाता है हम लोगों का इस तरफ जाता है बिकॉज हम लोगों के जीन्स ऐसे हैं
1: ठीक ठीक इसमें अगर जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज की थोड़ी सी बात करना चाहेंगे अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है या एक्सेलरेट हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम जो हैं टिपिकल ज़्यादा होंगे
0: सो डिप्रेशन फील करते हैं लोग और जो थायराइड के तीन हार्मोन्स हैं जिनको हम मेजर करते हैं एक TSH होता है जो ब्रेन से आता है जो थायराइड का के लिए एक आप समझें कि सिग्नल का काम करता है तो TSH आता है और वो आके थायराइड को बताता है कि तुमने अब थायराइड हार्मोन बनाना है तो थायराइड के अंदर T4 बनता है और T3 बनता है अब जो T4 है वो तो मेनली थायराइड के अंदर ही बनता है लेकिन T3 जो है वो टिश्यूज में यानी कि लिवर वगैरह में बनता है उसके लिए अभी थोड़ी देर में बात भी करेंगे लेकिन T3 जो है वो ब्रेन पे काम करता है सो अगर कुछ बहुत रेयर किस्म के सिंड्रोम्स हैं जिनमें अगर बेबीज में बनता ही नहीं है थायराइड ही नहीं है थायराइड हार्मोन ही नहीं बन रहा है तो उनको फिर ये है कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन यानी कि ब्रेन के फंक्शन के लिए थॉट्स को कोहेरेंट करने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है सो इसलिए जिन लोगों का कम है वो थॉट प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे यानी कि उनका सारा कुव्वत फैसला उनकी कम आहिस्ता आहिस्ता होएगी और जिनका ज़्यादा है वो सो ही नहीं पाएंगे इतनी एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर कि वो सोने ही नहीं देगी उनको और वो जो है उनको गुस्सा आएगा चिड़चिड़े हो जाएंगे और ये वाले जो हैं ये सोना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ब्रेन बिल्कुल स्लो हो गया जिनका अंडर एक्टिव है वो सोना ही पसंद करेंगे और वो बात सही से कर नहीं पाएंगे सोच नहीं पाएंगे सही से इम्तिहान अगर बच्चा दे रहा है तो स्कूल में फॉल बिहाइंड कर जाएगा और जिनका ओवर एक्टिव है वो जैसे कि मैंने कहा कि वो उनको बस उनकी थॉट्स का कोई एंड ही नहीं है
1: ठीक जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि वैसे तो हाइपोथायरॉइडिज्म नहीं था मगर हो जाए
0: जी हो सकता है क्योंकि पोस्टपार्टम वैसे ही क्योंकि इम्यून सिस्टम सुप्रेस हुआ होता है प्रेगनेंसी में क्योंकि उसने बेबी को रखना होता है और जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है एकदम इम्यून सिस्टम ओवरशूट करता है
1: ठीक है
0: और उसके अंदर फिर ये होता है कि वो अब जो उसको लगता है कि ये थायराइड ही समझ रहा है कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं तो वो थायराइड पर ही अटैक कर देगा उसके अलावा जो बेबी के सेल्स प्रेगनेंसी में माँ के डिफरेंट ऑर्गन्स में आए होते हैं उनको भी फॉरेन सेल्स समझ के उन पर भी वो अटैक करेगा तो एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एज सच जो है वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से और जो एक समझें आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स कम हो जाते हैं उसका स्ट्रेस है तो उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है यकीनन और पहले 6 माह जो है उनमें ये इसका हाईएस्ट रिस्क होता है यानी कि बेबी के बॉर्न होने के फर्स्ट 6 मंथ्स में
1: ठीक है बिल्कुल जी डॉक्टर साहब इसमें आपने हमें एज भी बता दी कि सिम्टम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं होते हैं अलामतें कि वो हमें पता होना चाहिए और लिसनर्स आप हमें जो कॉल है वो कर सकते हैं 4434377 पर व्हाट्सएप पर आप कॉल ना कीजिए क्योंकि आप इस पर सिर्फ हमें जो SMS कर सकते हैं कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं
0: अच्छा फौजिया मैं एक बात करना चाहती
1: हूँ जी
0: जैसे जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस या PCOS या जिसको PMOS अब कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ये बच्चियों में मैंने देखा है कि हमारी कम्यूनिटी की बच्चियाँ जो हैं वो आमतौर पर पढ़ती रहती हैं फिज़िकली इतना एक्टिव नहीं होती और फिर ये वेट गेन कर लेती हैं फास्ट फूड लेती हैं अच्छा उसका भी है कि थायराइड और PCOS का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में ये एक दूसरे को पोटेंशिएट करते हैं तो अगर तो आपको किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि PMOS या PCOS है तो वो लिवर में जो चेंजेस होते हैं जहाँ पे लिवर में जाके T4 या T3 में चेंज होना होता है तो T3 जो है जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत एक्टिव हार्मोन है वो T4 से ज़्यादा एक्टिव है वो फौरी तौर पर 8 घंटे तक वो काम करता है बहुत तेज काम करता है अब वो क्या होता है कि आपके अगर ये हो गया हुआ है PCOS हो गया है तो लिवर में उसकी कन्वर्जन नहीं होती तो T3 कम हो जाता है तो बच्चियाँ और सुस्त हो जाती हैं और ज़्यादा कम वो जो है ना खेलने कूदने के लिए या एक्टिविटी में तो ये एक विशेष साइकिल में चला जाता है ये और फिर ये है कि उसके साथ थायराइड नोड्यूल्स के साथ भी उनका ताल्लुक है यानी कि नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं थायराइड में सो आई थिंक कि ये जो एक टाइम है जिसके बारे में हमें पता है कि प्यूबर्टी या अर्ली टीनेज ईयर्स में ये कॉमन है तो इसमें मेरा ख्याल है कि माँ बाप को एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए

0: और बच्चों को देखना चाहिए कि उनकी डाइट कैसी है या उनका एक्टिविटी कैसी है, क्योंकि अकल को उन्हीं बच्चियों ने जो है उनके बेबीज होंगे और अगर वो उस वक्त हेल्थी नहीं है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लिवर में फैट है और फिर थायराइड काम नहीं कर रहा जो कि परमानेंट भी हो सकता है, तो ये फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग।
1: बिल्कुल।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे, आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज With RJ Sarwar Mirza. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
7: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
8: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी।
9: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
10: आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उन पर, और डॉक्टर
1: का

0: अबिंदा डोगल जो कि सीनियर कंसल्टेंट है हमारे साथ हैं। अभी जैसे कि हाइपोथायरायडिज्म हाइपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन को हमें बता रही हैं कि किस किस तरह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें जो है इसको फिर डायग्नोज आपने कहा कि टेस्ट से जैसे कि, फिर भी कोई और डायग्नोसिस या कोई ख़ास जैसे आपने पीसीओ का जिक्र किया और इसमें और हमें बताना चाहेंगी?
1: बस इसके साथ ये भी है कि दूसरा इसका मसला ये है कि जैसे अगर थायराइड अंडर एक्टिव हो गया है तो जो है कुछ जो आपके हार्मोन्स जो ओवरीज को जाते हैं वो हार्मोन्स भी डिसरप्ट हो जाते हैं। तो फिर ना सिर्फ ये कि अगर थायराइड अंडर एक्टिव हुआ है और अगर ऑलरेडी पीसीओएस है या नहीं भी है तो फिर वो फिर भी माहवारी के मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि उसके थायराइड के अंडर एक्टिव होने की वजह से जो ब्रेन से सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल्स आते हैं वो ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगी। प्रोलैक्टिन आपको पता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, तो वो तो हमेशा उसका यही होता है कि वो ओवरीज को जो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन है कम हो जाती है। तो उससे फिर ये है कि ना सिर्फ ये कि आपका थायराइड हार्मोन कम है, आपकी ईस्ट्रोजन भी ड्रॉप कर जाएगी और आपका सारी जो मैकेनिज्म्स जो चल रहे थे एग प्रोडक्शन वगैरह इनफर्टिलिटी होने का साथ चांस है कि अगर किसी को भी मसला हो रहा है बावजूद ट्राइंग के इनफर्टिलिटी है तो उनको भी चेक कराना चाहिए कि उनका थायराइड कैसा काम कर रहा है, प्रोलैक्टिन कैसे है, वो कम है या ज़्यादा है। तो ये एक जो है वो भी साथ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि ये सारे भी शामिल हों अंदर उनके। और मेरा ख्याल है कि अगर वज़न ज़्यादा है तो फिर पीसीओएस के लिए भी हम लोगों को उसको देखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा छोटा है यानी कि अभी ग्रोइंग एज पर आया है और एकदम उसको एक ओवर एक्टिविटी हो गई है तो वो उनका एकदम से कद बढ़ेगा और फिर रुक जाता है, सो उनकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो जाती है।
0: अच्छा।
1: तो अगर बच्चा स्कूल में सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्लो है, उनको ज़रूर दिखाएं। और अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि एक दो लोगों को थायराइड का मसला है तो जैसे बच्चा 8 साल का हुआ है, ख़ासतौर पे अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसका थायराइड का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए और साथ एंटीबॉडीज़ का भी। और अगर उस वक्त थायराइड का टेस्ट ठीक आया है मगर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है तो फिर हर 2 साल के बाद उनका टेस्ट कराएं। और अगर लगता है आपको कि एंटीबॉडीज़ भी नेगेटिव है लेकिन फैमिली में एक दो लोगों को है फिर भी उनका हर 2-3 साल के बाद टेस्ट करवाना चाहिए।
0: वो स्क्रीनिंग ही होगी जैसे
1: जी, एक तरह स्क्रीनिंग होगी। जैसे देखें पैदाइश पे तो स्क्रीनिंग होती है, वो तो सब मुल्कों में होती है विच इज़ वेरी गुड। और लेकिन कोई टाइम ऐसे भी आते हैं बच्चे की लाइफ में जब नहीं पता चल रहा होता। और अक्सर मैंने ये देखा है कि अभी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स वालों के साथ कभी उनको उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए जाना पड़ता है, पेशेंट देखने के लिए जाना पड़ता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस लिए। तो अक्सर बच्चियाँ आई होती हैं, उनको पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी ये वज़न बढ़ रहा है, स्लो हो रही है, ये आगे गर्दन में कुछ नज़र आ रहा है। तो जब थायराइड अंडर एक्टिव होता है यानी कि काम नहीं कर रहा होता तो क्योंकि ब्रेन से सिग्नल ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं तो टिश्यू ज़्यादा होता है। तो आप ना अगर आपको टेस्ट कराने से पहले आप ये भी देख सकते हैं गर्दन में कोई स्वेलिंग आ गई है, नई स्वेलिंग आई है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई डेंजरस स्वेलिंग हो, वो थायराइड की ओवर एक्टिविटी की वजह से या अंडर एक्टिविटी की वजह से भी बड़ा हो सकता है, जिसको गॉइटर या गिलर कहते हैं। छोटे साइज़ का भी हो सकता है, बड़े साइज़ का भी।
0: बिल्कुल ठीक ठीक। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो सामने नज़र आए
1: जी,
0: और वैसे जैसे टेस्ट करवाए जाते हैं ब्लड टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसमें डॉक्टर साहब आपने हाशिमोटोस का जैसे जिक्र किया तो अपने लिसनर्स के थ्रू उन्हें भी बताना चाहिए क्या है जैसे अलामतें आपने कहा कि वो हों तो क्या क्या हो सकती हैं उसमें
1: हाशिमोटोस की अलामतें?
0: जी
1: हाशिमोटोस की अलामतें ये हैं कि क्योंकि ये एक
0: क्योंकि हम थायराइड की बात कर रहे हैं तो इसी में
1: राइट। तो हाशिमोटोस का स्पेशल इसका ये इसके बारे में बात ये कि क्योंकि ये ख़ास तौर पर ऑटोइम्यून है, इसके साथ 2 एंटीबॉडीज़ ख़ास तौर पर मुंसलिक है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। इनके नाम इसलिए ऐसे हैं कि ये थायराइड के हिस्सों के अगेंस्ट हैं, थायराइड के सेल के कुछ हिस्सों के अगेंस्ट। तो इनका ये है कि अब कोई 10% लोगों के अंदर ऐसा हो सकता है कि उनको type 1 diabetes भी आ सकती है किसी टाइम पर लाइफ में, उनको जो है pernicious anemia या B12 deficiency हो सकती है, या उनको gluten intolerance या जिसको celiac disease कहते हैं वो भी हो सकती है। तो हाशिमोटो कभी कभार जो है या cortisol भी कम हो सकती है जिसको Addison's disease कहते हैं वो भी हो सकती है। और बहुत से पेशेंट्स को अगर ये कुछ भी ना हो तो विटिलाइगो के पैचेस हो जाते हैं, यानी कि जिसको फुलबेरी कहते हैं उसके पैचेस हो सकते हैं। तो हाशिमोटोस एक आप समझें कि मुदाफ़ती निज़ाम की कुव्वत मदाफ़त जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे होती है। तो क्योंकि उसके साथ काफ़ी एसोसिएशंस हैं जो जो मैंने आपको बताई हैं, यानी कि डायबिटीज़ की, B12 डिफिशेंसी की,

0: खा रहा है और वो प्रेग्नेंट हो गया है, तो उनको फौरी तौर पर प्रोपाइल थायूरोसिल पे मूव करना है, और वो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो नहीं खा सकते, कार्बेमाजोल सेफ नहीं है इनिशियल प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में, उनको भी फौरी रब्ता करना चाहिए डॉक्टर के साथ। तो उसकी वो कुछ भी डोज हो सकती है, 5 मिलीग्राम से लेके 40 मिलीग्राम तक, रेगुलरली हम उसको मेजर करते रहते हैं, TSH को हम मेजर करते रहते हैं। अब तीसरी जो चीज़ है वो है नोड्यूल्स, वो भी बहुत कॉमन है यहाँ पे, और अक्सर लोगों को इस बात का शक रहता है कि ये नोड्यूल्स जो हैं ये कहीं कैंसर में तब्दील तो नहीं हो जाएंगे खुदा न खास्ता। तो अब वो नोड्यूल्स जो हैं उनकी 5 टाइप्स हैं, तो 1 से लेके 1 और 2 तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो बिनाइन हैं, उनको कुछ भी करना नहीं,
1: ठीक है।
0: और 3 जो है उसके अंदर 5% चांस है कि वो उसके अंदर कैंसर हो सकता है, 4 जो है उसके अंदर 15% है, और जो 5वां ग्रेड है उसके अंदर जो है 25% से 30% चांस है। तो ये अल्ट्रासाउंड पर पता चलता है कि क्या ग्रेड है उसका, 1 या 2 है या 3, 4, 5 है
1: जी।
0: अब उनके साइजेस पे डिपेंड करता है, अब एक साइज होता है जिसके ऊपर हम बायोप्सी कर सकते हैं, और बहुत इजीली ऐसा होता है कि 9.9 out of 10 times वो बेनाइन ही निकलता है,
1: ठीक है।
0: और उसकी जो है इलाज बहुत इजी है, अगर नोड्यूल बहुत बड़ा हो गया तो वो साइड निकल सकती है, अगर नोड्यूल में एबनॉर्मल सेल्स आए हैं तो फिर हम सारा थायरॉयड रिमूव कर लेते हैं। तो और अगर खुदा न खास्ता किसी को
1: उससे पहले जो बायोप्सी है वो करते हैं,
0: वो बायोप्सी करना जरूरी है, अगर खुदा न खास्ता किसी को थायरॉयड कैंसर है भी तो वो बहुत इजीली उसका इलाज हो सकता है, और उसके लिए जल्दी अगर रब्ता कर लें आप तो वो लोकली रहता है, थायराइड के अंदर ही रहता है, उसका भी बहुत इजीली इलाज हो सकता है। तो वो इतना कॉमन नहीं है मगर वो काफ़ी इजी है उसका इलाज एज़ कम्पेयर टू बाकी कैंसर के
1: जी। डॉक्टर साहब हमारे लिसनर हैं मोहम्मद यूसुफ खान, पूछ रहे हैं, इस्लाम कह रहे हैं आपको, और ये कि पूछ रहे हैं कि कोई नेचुरल रेमेडी हो कि हमारा जो थायराइड की डिजीज़ है वो रिवर्स हो जाए
0: जी। अब पता नहीं क्या है इनकी थायराइड की, हाइपर है या हाइपो है जी। हाँ, तो जो ओवर एक्टिव थायराइड है वो तो नहीं रिवर्स होगा अपने आप, वो उसका तो उसको सुप्रेस करना ही पड़ेगा। जो अंडर एक्टिव है कई बार ऐसा है उसके लिए, जैसे आप सप्लीमेंटल, जैसे मैंने कहा कि आप अगर आपकी खुराक के अंदर आयोडाइज सॉल्ट नहीं है तो आप आयोडाइज सॉल्ट लें, आपको अगर एंटीबॉडीज अदर सेलेनियम लें तो उससे कई बार ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज इतनी कम होती हैं, हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं कि वो उसका चांस, फिर ये कि ग्लूटेन फ्री डाइट कई बार लेते हैं लोग, उससे भी एंटीबॉडीज मॉडरेटली कम हो जाती हैं। तो हो सकता है इसके कॉम्बिनेशन से इतना फ़र्क पड़ ही जाए कि वो, लेकिन ये चांस इसका कम है काफ़ी। और अगर थायरोक्सिन लेनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें कोई तजब्जुब नहीं करना चाहिए, ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ की सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही जो ओवर एक्टिव थायरॉयड है वो किसी नेचुरल रेमेडी से ठीक होने वाला नहीं, अनलेस कि आप उसको निकाल दें
1: जी,
0: यही हो सकता है कि रिमूव कर दें, क्योंकि एक उसका इलाज ये भी है। तो जब इलाज हम बात करें तो मैं मेंशन करना भूल गई कि कई बार हम रेडियो एक्टिव आयोडीन भी ले लेते हैं ओवर एक्टिव
1: थायराइड,
0: और कई बार सर्जरी करके निकाल भी देते हैं। तो लेकिन ये है कि नेचुरल रेमेडीज जो हैं वो हैं, मगर वो कितना असर करेंगी या मुकम्मल तौर पर
1: नहीं कर सकते, सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब, इसमें जैसे कि ओवर एक्टिव है और आयोडीन जो वो आइसोटोप मतलब उससे ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें क्या बाद में हाइपो में चले जाते हैं पेशेंट्स?
0: अच्छा,
1: वो जरा जरूर बताइए।
0: वो इस तरह है कि आप एक आयोडीन का एक टाइप है जो देते हैं उनको, जो वो ड्रिंक में वो पी लेते हैं, और वो सारा, क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन एक ही जगह पर जाती है बॉडी में, वो थायराइड है
1: जी।
0: तो वो क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है तो वो जाके थायराइड में जो सारी जगह जो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं सेल, वो उनको टेक ओवर कर लेती है, और वो सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत से सेंटर्स में वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा काम करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रेडियो एक्टिविटी काफ़ी देर तक रहती है थायराइड के अंदर, वो काम करती रहती है। और फिर ये है कि आपको इवेंचुअली यही है कि थायरोक्सिन लेनी ही पड़ती है, तो एक गोली ख़त्म करके आपको दूसरी गोली रिप्लेस करनी ही पड़ती है, क्योंकि थायराइड अब आपका काम नहीं कर रहा मुकम्मल तौर पर, उसने काम ख़त्म कर दिया अपना।
1: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब कोई लाइफस्टाइल चेंजेस से या कोई स्पेशल फूड, जैसे वो तो आपने बता दिया कि जो ग्लूटेन फ्री है या कुछ इस तरह से कुछ हैं नेचुरल चीज़ें जो हैं उससे बिल्कुल रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, मुझे स्लो डाउन,
0: हाँ जी सपोर्ट कर सकते,
1: सपोर्ट कर,
0: जैसे
1: सकते
0: आप सी फूड वगैरह लेते हैं उसमें आयोडीन है तो वो आपका थायराइड जो है क्योंकि वो उससे बनाता है, आयोडीन चाहिए होती है उसको, तो वो उसको मुनासिब मकदार में मिलता रहेगा और सपोर्ट होता रहेगा वो। और कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जैसे बोसवेलिया वगैरह है, तो वो नोड्यूल्स के लिए लोग

0: कहते हैं कि आप वो ले लें, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं तो नोड्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो कम हो जाएंगे, तो लोग लेते हैं उनको, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ जो बन गई ना, नोड्यूल बन गया तो वो कैसे ख़त्म होगा
1: जी? ठीक है, उसकी सर्जरी जो है वही ज़रूरी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब हमारे लिसनर हैं, इनका नाम है ग़ुलाम अहमद, और ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करें तो हम थायराइड से बच सकते हैं, मतलब थायराइड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं?
0: जी, ख़ास तौर पर ये देखें, जैसे एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है आपका, हर किस्म का स्ट्रेस आपका कम हो जाता है, तो आप वो करें। और ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जो PCOS है उसको कम से कम रखें, अपना वज़न जो है वो मुनासिब पे रखें। हमारा बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हाइट और वेट का जो एक मेजर है वो 23 या उससे कम होना चाहिए, 25 नहीं है, हमारा 23 है। और जो लिवर की फैट है उसको कम से कम रखें, क्योंकि लिवर के अंदर थायराइड हार्मोन्स की कन्वर्जन होनी है।
1: ठीक है,
0: तो वो लाइफस्टाइल यही है कि आप अपना वजन जो है वो आप नॉर्मल रेंज में रखें, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कम से कम रखें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जो है वो नशास्ते वाली अशिया जो है वो कम हो,
1: जैसे रोटी है, चावल है, जैसे आम।
0: एग्जैक्टली,
1: जो अपराध है वो यही समझते हैं।
0: राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली।
1: और शुगर है,
0: शुगर है, जैसे लोग फिर ये समझते हैं कि फल हेल्दी है, हालांकि फल के अंदर भी बहुत नशास्ता है और वो फौरन इंसुलिन स्पाइक करता है, तो उनको भी मुनासिब मिकदार में ही खाना चाहिए।
1: ठीक है, और आजकल तो जैसे मैंगो हैं तो वो तो बहुत ही,
0: वो तो एक ही रोज का खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते।
1: जी डॉक्टर भाई, कॉल है, हम अपने लिसनर्स की तरफ चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
1: जी वालेकुम,
2: महमूद बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं आप? ठीक है
2: जी,
1: जी क्या पूछना चाहेंगे
2: डॉक्टर साहिबा को? भी मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: मुझे ये पूछना था कि ये जो मैं पूरा प्रोग्राम सुन नहीं सका किसी वजह से, तो ये जो अंडर एक्टिव थायराइड जो होता है इसकी कोई अलामत क्या है?
0: इसकी महमूद साहब, वालेकुम अस्सलाम, इसकी अलामत हैं ऐसे सुस्त पड़ जाता है जिस्म, आप जो काम पहले कर सकते हैं वो नहीं करते, आपके मसल्स में पेन होता है, आपको कब्ज़ हो सकती है, सर के बाल गिरते हैं और स्किन खुश्क हो जाती है, बिलावजह मुंह आपका ऐसे फूला फूला सा, गालें फूली फूली सी रहती हैं, आपको टिशू फूला फूला सा लगता है मुँह अपना, और जो है आपकी जो सोच है वो आपकी सुस्त हो जाती है, नींद बहुत आती है आपको, सुस्ती रहती है।
2: जी बिल्कुल सही कह रही है, मेरे साथ यही सिचुएशन चल रही है, बड़ा लेथार्जिक मैं हो जाता हूँ, और ख़ास तौर पे खाने के बाद, और नींद जो है वो अजीब सी सूरत हाल होती है, वीकनेस बड़ी बॉडी में होती है, तो ये उसकी वजह, अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से तो नहीं ऐसा?
0: आप चेक करा लीजिए, और आप अपना शुगर टेस्ट भी कराइए ज़रूर, क्योंकि खाने के बाद हो रहा है ना, तो वो भी ज़रूर कराएं आप।
1: ठीक,
2: अच्छा, मेरा शुगर जो है वो तो बिल्कुल ठीक है।
0: आपने करवाया टेस्ट?
2: जी जी, मैं HbA1c जो है मेरा 6 के करीब है, 6.2।
0: नहीं, वो भी प्री डायबिटीज है ना, 6.2।
2: जी
0: वो प्री डायबिटीज है, 6.2 जो है,
2: या प्री डायबिटीज, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था किसी को कंट्रोल रखो इसके नीचे, और वैसे भी मेरा मॉर्निंग में मैं जो होता है वो फास्टिंग वो तकरीबन 100 के करीब होता है, और रैंडम जो 126-128 इस तरह से।
0: हाँ नहीं, आपको प्री डायबिटीज है तो आप अपना खुराक को भी देखिए कि उसमें आप प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा कर लें, और जो आप अगर पोर्शन छोटा कर लें अपना, जो चावल का या रोटी का पोर्शन छोटा कर लें।
2: अच्छी बात, दैट्स वेरी गुड। तो इसके लिए जो है वो थायराइड का कोई चेकअप कोई है इसका सिलसिला?
0: जी आप अपना TSH करा लें, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है TSH की तरह से, और अगर TSH नॉर्मल हुआ फिर तो मजीद कुछ कराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर TSH अब नॉर्मल हुआ तो उसके बाद दो मजीद टेस्ट होंगे, फ्री T4 और फ्री T3।
2: अच्छा, TSH टेस्ट इसको?
0: जी TSH टेस्ट आप करवा लें। जी
1: तो अगर नॉर्मल इंशाल्लाह होगा, और अगर कुछ भी थोड़ा सा उसमें बैलेंस में ना हुआ तो फिर दोबारा और कराने पड़ेंगे,
0: फिर वो मजीद दो कराने।
1: ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।
2: चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, खुदा
0: हाफिज़।
1: खुदा हाफिज़ जी। डॉक्टर भाई, हमारे लिसनर हैं खादिर अब्दुल हादी, सलाम कह रहे हैं आपको।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और पूछ रहे हैं कि क्या जो थायराइड है वो किडनी डैमेज को, मतलब किडनी डैमेज कर सकता है या ओबेसिटी को इंक्रीज कर सकता है?
0: थायराइड जो है ना वो किडनी को तो डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, मगर यकीनन बहुत ज़्यादा ओबेसिटी नहीं करता, लेकिन अगर आप वज़न कम करने की कोशिश करें, वज़न कम नहीं होगा, और मे बी 4 या 5 किलो आपका ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका वज़न नहीं करेगा वो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका वज़न अगर 50 किलो ज़्यादा

0: हो गया है, 30 किलो ज्यादा हो गया, वो थायराइड की वजह से नहीं है. थायराइड की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो स्लो हुआ है ना, तो वो आपकी वर्जिश कम हो गई या आपका जो है हर चीज जो बर्न होनी थी वो बर्न नहीं हो रही उस स्पीड के साथ, वो उसको करेगा. लेकिन इटसेल्फ 4 या 5 kg हार्डली उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन किडनी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं.
1: सही, बिल्कुल. और इसी तरह से और भी जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली उसके साथ नहीं होते, मगर एक स्लो डाउन है,
0: जैसे हार्ट स्लो डाउन कर जाता है. हार्ट स्लो डाउन हार्ट को डायरेक्टली होता है, हार्ट के अराउंड फ्लूइड भी आ जाता है, हार्ट स्लो डाउन भी कर जाता है, जैसे आंते स्लो डाउन कर जाती हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें प्रिवेंशन पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको इस तरह से?
0: जी, प्रिवेंशन में मेनली यही है कि आप आने से तो इसको रोकने के लिए यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, सेहतमंद रखें. और जो अगर आपको लगता है कि आपकी कुव्वत मुदाफियत कम है, वायरसेस से बचने के लिए यही है कि आप अपने सी विटामिन को, डी विटामिन को आप ऑप्टिमम रखें. विटामिन डी का भी बहुत रोल है इसकी थायराइड डिजीज के अंदर. तो विटामिन डी, जैसे आयोडीन ठीक हो, विटामिन डी ठीक हो, सेलेनियम ठीक हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसको एक बैलेंस में रखेंगी, तो काफ़ी चांस है कि प्रिवेंट हो जाएगा.
1: और ये कि अपनी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो रेगुलरली ले रही हैं, और टेस्ट भी है, जैसे जैसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. यानी सर, आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहें तो आप जुमे के दिन सुबह 8 बजे प्रोग्राम पेश किया जाता है, तो आप सुन सकते हैं. जी डॉक्टर साहब, कोई क्या आप हमें कहना चाहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी?
0: मैं अपनी कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे लाइफस्टाइल्स जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, और हमें हमारा सारा बॉडी जो है घर की तरह है, तो घर के एक कमरे में शोर हो रहा हो तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है. तो हमारा थायराइड अगर आपको छोटा भी लगता है तो, लेकिन ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. और हमें अगर हम अमूमी तौर पर अपनी बॉडी को अगर हम सेहतमंद रखेंगे तो हमारे सब ऑर्गन सेहतमंद रहेंगे. और ये मैंने इधर यहाँ पर आके अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा मिल के देखा है कि अनहेल्थी लाइफस्टाइल होने की वजह से बहुत से लोगों के थायराइड जो हैं वो ख़राब हुए हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक विशेष साइकिल में चले जाते हैं लोग.
1: ठीक है, और इस तरह से लाइफस्टाइल जो है वो
0: ज़रूरी है. और दूसरा ये है कि अगर आप थायरोक्सिन खाते हैं, आपको डॉक्टर दी, वो प्लीज़ लाजमी आपने छोड़ दी, नहीं डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं छोड़े आप.
1: कुछ वो अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर लेते हैं,
0: कम ज़्यादा कर लेते हैं. जी
1: ऐसा बिल्कुल नहीं,
0: ऐसा नहीं करना चाहिए. जी
1: ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने
0: बड़ी
1: डिटेल में बताया, और
0: बहुत शुक्रिया मुझे.
1: अच्छा, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ साथ रहे, और आपने बहुत उनके जो है क्वेश्चंस के आंसर जो हैं किए. और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर ताबिंदा डोगल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सी ए फौजे शफीक, और हमारे साथ रहे असल भंडारा. उन्हें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: News at 9 a.m. News at 9 a.m. from Urdu Radio FM 107.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samaeen, aap sun rahe hain اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجئے آج کا پہلا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بیلاروس کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے بیلاروس کے وزیر اعظم کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. مجلس شورا کے اسپیکر نے کل ایران کے دارالحکومت تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سپریم لیڈر کے جنازے کی آخری رسومات میں شرکت کی ہے. قطر نے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل کے 62 اجلاس کے ایک ہنگامی مباحثے میں شرکت کی ہے, جس کا مقصد سوڈان کے شہر الابیض اور اس کے گرد و نواح میں انسانی حقوق کی صورتحال اور جاری تنازع پر غور کرنا تھا. قطری ریڈ کریسنٹ نے وینزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلوں سے متاثرہ افراد کی فوری امداد

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: Absolute cinema.
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
7: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
6: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
7: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
6: हर मंडे सुबह 10 से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
7: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी
8: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
9: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत।

0: झटपट से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम, आज हम प्यारे नबी नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी सुन्नत के बारे में गुफ्तगु करेंगे जो अखलाक के साथ भी इसका ताल्लुक है, इबादत के साथ भी, आजिज़ी भी है इसमें और बेहतरीन ख़ानदानी जिंदगी का राज भी इसमें छुपा हुआ है। ये ऐसी सुन्नत है जिसे आज बहुत से लोग सिर्फ एक मामूली आदत समझते हैं, हालांकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा थी। आज का मौजू है घर के कामों में खुद हिस्सा लेना और अहले खाना की मदद करना। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो हम एक अजीम रहनुमा नजर आते हैं। आप एक नबी, एक काजी, एक सिपहसालार, एक मुअल्लिम और एक कायद थे। हजारों सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेते थे, लेकिन इन तमाम अजीम जिम्मेदारियों के बावजूद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाते तो वहां आपका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे? उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह होते थे, अपने कपड़ों की सफाई करते, अपनी बकरी का दूध दोहते और अपने काम खुद करते थे। एक दूसरी रिवायत में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान फी मेहनति अहलिही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के कामों में हाथ बटाते थे। सामिन किराम, कभी कभी एक छोटी सी मदद बड़े तोहफे से ज्यादा कीमती होती है। मसलन खाने के बाद बर्तन उठा देना, घर की सफाई में हाथ बटाना, सामान मुरतब करना, बच्चों का ख्याल रखना, ये सिर्फ घरेलू काम नहीं, ये मोहब्बत का इजहार है, ये हुस्न अखलाक है। और अगर नीयत सुन्नत पर अमल की हो तो इबादत भी बन जाती है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे

0: यानी दोहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। कतरी फुटबॉल सिस्टम में गोलकीपर अबू नादा एक इमर्जिंग और प्रॉमिसिंग टैलेंट के तौर पर देखे जाते हैं और उन्होंने ये साबित किया 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। क्या मैच खेला उन्होंने, कितने गोल्स बचाए, आज भी उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जहां पे अबू नादा इमर्ज लार्जर देन लाइफ पिक्चर अगेंस्ट द स्विस प्लेयर। और अगर कतर ने स्विट्जरलैंड को एक एक गोल पर ड्रॉ करने पे मजबूर किया तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर मैं रीजन रहा है तो वो है अबू नादा की गोलकीपिंग। उनका प्लेइंग स्टाइल काम और कंपोज्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि काफी अग्रेसिव है उनके पेनल्टी बॉक्स एरिया में। जिस तरह से उन्होंने पंचेस या शॉट्स को रोकने में जिस तरह से उनके जो रिफ्लेक्स एक्शन हमें देखने को मिला, इससे साफ साफ साबित होता है कि ये आज के दौर में कतरी नेशनल टीम में ही इज द बेस्ट गोलकीपर, नंबर वन गोलकीपर। देखिए, मैशाल बर्शम को नहीं खिलाया कोच लुप्तगी ने और इन्हें उतारा किया, विच मीन्स ही हैज सम काइंड ऑफ टैलेंट, सम काइंड ऑफ यू नो आई वुड से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके बदौलत अबू नादा कतर की नुमाइंदगी। शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी के साथ साथ उनकी रिफ्लेक्सेस और वन ऑन वन सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग उन्हें एक रिलायबल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। डोमेस्टिक लीग्स और ट्रेनिंग सेटअप्स में अबू नादा ने अपनी कंसिस्टेंसी से कोचेस और सिलेक्टर्स का ध्यान हासिल किया है। गोलकीपिंग सिर्फ फिजिकल स्किल नहीं है दोस्तों,

0: के मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी होती है और अबू नादा इस एस्पेक्ट में ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं। उनकी पोजीशनिंग और गेम अवेयरनेस वक्त के साथ बेहतर होती जा रही है, जो उनके डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को शो करती है। एंड द स्विट्जरलैंड गेम इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एग्जांपल। कतर के फुटबॉल इकोसिस्टम में नए गोलकीपर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिल रही है और अबू नादा इस सिस्टम का हिस्सा बनकर अपनी स्किल्स पॉलिश कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो फ्यूचर में वो कतरी फुटबॉल के इम्पोर्टेंट गोलकीपिंग ऑप्शंस में शुमार हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करने वाले हैं उन रोजमर्रा आदात की जो कमर दर्द के खतरे को कम कर सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि सेहतमंद वजन जो है वो बरकरार रखिए। ज्यादा वजन कमर के जॉइंट्स और मसल्स पर इजाफी दबाव डालता है। मतवाजन गिजा और एक्सरसाइज वजन को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। नींद के दौरान जिस्म खुद को बहाल करता है, यानी जो एग्जॉस्ट हो चुका होता है तो उससे वो रिलैक्स होता है, और इसके दरमियानी साइज का जो सख्ती, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सख्त गद्दा है जिस पर आप सो रहे हैं या आप जो पिल्लो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी दरमियाना होना चाहिए। उसकी कुदरती साख्त को भी बरकरार रखने में ये मदद देते हैं। बहुत सारी रिसर्च की गई और तहकीक से मालूम हुआ है कि स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन को मुतासिर कर सकती है, जिससे रीढ़ की हड्डी और जो हमारे मसल्स की सेहत मुतासिर होती है। पानी की मुनासिब मिकदार और कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर गिजा हमारी बोन्स और मसल्स को मजबूत रखने में मदद देती हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो हर 30 से 60 मिनट के बाद चंद कदम जरूर चलिए और जिस्म को आप एक्टिव रखिए। ज़हनी तनाव हमारे मसल्स में खिंचाव पैदा कर सकता है जो कमर दर्द का सबब बन सकता है। इसी तरह आराम की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए, डीप ब्रीदिंग वो कीजिए। इसके अलावा जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं ज़हनी दबाव कम करने में मदद देती हैं। लिसनर्स, कमर दर्द से बचाव के लिए किसी एक इलाज से ज्यादा अहम सेहतमंद आदत हैं बिल्कुल दुरुस्त पोस्चर, बाकायदा एक्सरसाइज, मुनासिब नींद और मतवाजन गिजा आपकी कमर को मजबूत और सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुतहरक रहिए और सेहतमंद जिंदगी अपनाइए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट।

0: हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस. फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर. मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी. ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता. फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी. अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ कतर ग्रीन बीट्स का आज का एक ब्रांड न्यू एपिसोड. I'm very certain कि आप सब बिल्कुल खुशनुमा होंगे और ये जो आपका एंटायर वीक है ये भी खुशनुमा गुजर रहा होगा. फिलहाल आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधा हमारी थाली या यूं कहें हमारी खाने की प्लेट से जुड़ा है. आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सस्टेनेबल फैशन की, कि कैसे हमारे कपड़े हमारी जमीन पर असर डालते हैं. मगर आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमें जिंदा रखती है, हमारा खाना. एक जमाना था कि जब लोग सोचते थे कि कतर जैसे रेगिस्तानी मुल्क में जहाँ रेत और गर्मी का राज है वहाँ खेती बाड़ी या फार्मिंग कैसे हो सकती है. पीपल यूज टू थिंक कि हम सिर्फ डेजर्ट है. लेकिन आज मंजर बदल चुका है. हमने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और इनोवेशन का साथ हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं. और आज देखा जाए तो एक से बढ़कर एक चीजें हम पैदा कर पा रहे हैं. आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, यानी वो खेती जो कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे पेट को भर सकती है.
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर. मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
1: कतर ग्रीन बीट. तो सोचिए, कतर में बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी में नमक ज्यादा है. पहले हम अपना 90% खाना बाहर से मंगवाते थे. इट वॉज अ ह्यूज डिपेंडेंसी. लेकिन फूड सिक्योरिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये किसी भी मुल्क की इज्जत और उसकी ताकत, ये दोनों होता है. आज हम एग्रोटेक की बात कर रहे हैं. यस, एग्रोटेक यानी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का एक खूबसूरत मिलन. हमने सिर्फ खेती नहीं की, हमने साइंस को मिट्टी के साथ जोड़ा है. आज कतर इम्पोर्ट डिपेंडेंट होने से बदलकर एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन हब बनने की राह पर है. जब आप आजकल सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो क्या आपने वो छोटे स्टिकर्स देखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कतर. वो सिर्फ एक लेबल नहीं है, वो हमारी मेहनत और हमारी जमीन की जीत है. इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी बाइट वी टेक सपोर्ट्स आवर सॉइल रादर देन डिप्लीटिंग इट. चलिए अब वक्त है द ग्रीन वायर का, जहां हम बात करते हैं ताजा खबरों की. क्या आपको पता है कि कतर अब अरब दुनिया में फूड सिक्योरिटी के मामले में नंबर वन पोजीशन पर रैंक करता है. एग्जैक्टली, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा नाम सबसे ऊपर है. ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये नतीजा है उस इन्वेस्टमेंट का जो हमारी हुकूमत ने ग्रीन हाउसेस और मॉडर्न फार्मिंग में किए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने हाल ही में अपने महसील प्रोग्राम को और बड़ा कर दिया है. महसील का मकसद क्या है, कि हमारे जो लोकल फार्मर्स, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले. आज सुबह जो सब्जी खेत में कटी है वो कुछ ही घंटों में आपके घर के पास वाले सुपरमार्केट में होती है. नो लॉन्ग फ्लाइट्स, नो प्रिजर्वेटिव्स. और हाँ, सुख वाकिफ में होने वाला जो लोकल डेट्स फेस्टिवल होता है ना, इसे भी हमें मिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खजूर हमारा सस्टेनेबल हेरिटेज क्रॉप है. इसे कम पानी चाहिए होता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन का खजाना है. और हम सिर्फ लोकल नहीं खा रहे, हम जो खा रहे हैं वो स्मार्टली चूज कर रहे हैं. हम बस पेट नहीं भर रहे, हम फ्यूचर भी संवार रहे हैं. चलिए जनाब, अब वक्त है हमारे सबसे खास सेगमेंट का, एंड दैट इज प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट. आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पहुंचकर आपकी आंखें यकीन नहीं करेंगी कि आप कतर में हैं. हम बात कर रहे हैं एग्रीको कतर की, जो अलखोर के दिल में बसा है. एक ग्रीन रेवोल्यूशन है. इमेजिन कीजिए

0: होगा। क्या मीता, अगर मिट्टी नहीं है तो पौधे उगते कैसे हैं? यही तो एग्रोटेक का कमाल है। एग्रीको ने हाइड्रोफोनिक्स और एक्वाफोनिक्स को अपना हथियार बनाया है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो हाइड्रोफोनिक्स का मतलब है सॉइल लेस फार्मिंग। यहाँ प्लांट्स मिट्टी में नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट रिच पानी में बड़े होते हैं। उनकी जड़ों को वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स सीधा पानी से मिलते हैं जो उन्हें चाहिए। और एक्वाफोनिक्स की बात करें तो ये बड़ी ही दिलचस्प चीज है। इसमें मछलियाँ यानी कि फिश और पौधों का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए खाद बनता है और पौधे उस पानी को साफ करते हैं जो वापस मछलियों के टैंक में जाता है। इट्स अ परफेक्ट साइकिल ऑफ लाइफ। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम 90% कम पानी इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हमारे देश में जहाँ पानी का एक एक कतरा नायाब है, प्रेशियस है, वहाँ 90% की बचत किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारी गर्मी। जून और जुलाई में जब इंसान को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब एग्रीको के ग्रीन हाउसेस में टमाटर, खीरे और यहाँ तक कि नाजुक स्ट्रॉबेरीज भी झूम रही होती है। उन्होंने ऐसे स्पेशलाइज्ड कूलिंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखते हैं। ये देखकर फक्र होता है, प्राइड फील होता है कि हमने मौसम के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम को अपने लिए, अपनी चीजों के लिए फेवरेबल बना दिया है। एग्रीको ने साबित कर दिया है कि अगर इनोवेशन हो तो हम साल के 365 दिन ऑर्गेनिक और फ्रेश सब्जियां खा सकते हैं। अब हमें यूरोप या दूसरे मुल्कों से स्ट्रॉबेरीज के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारे अपने अलखोर की मिट्टी में कम पानी से उन्हें उगाया जा सकता है। इस पूरे मिशन के पीछे सिर्फ एक फार्म नहीं बल्कि एक मजबूत सोच है। यहाँ तक कि हज़रत फूड की बात करें, जो कतर की इन्वेस्टमेंट आम है, वो ये इंश्योर करती है कि हमारी सप्लाई चेन कभी कमजोर ना पड़े। उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि कतर को फूड सिक्योर बनाना है। जब हम एग्रीको जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कतर नेशनल विजन 2030 के उस सपने को सच कर रहे हैं जहां हम अपनी जरूरतों के लिए खुद काफी हैं। इट्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी। ये प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि रेगिस्तान कोई रुकावट नहीं है बल्कि ये एक खुला कैनवस है जहां हम टेक्नोलॉजी की कलम से हरियाली रंग रहे हैं। तो जनाब, अगली बार जब आप सुपरमार्केट्स में एग्रीको या लोकल लेबल्स देखें तो उन टमाटरों को सिर्फ सब्जी मत समझिए। वो निशानी है हमारी मेहनत की, हमारे साइंस की और हमारे डिटर्मिनेशन की। एग्रीको ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि डेजर्ट से डिनर टेबल तक का सफर हरा भरा हो सकता है। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बड़े ही आसान तरीके जिससे आप अपने घर में छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एक मिनी फार्म भी बना सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ और कतर ग्रीन बीट्स में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। पहले आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसी कौन सी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे हम अपना खुद का अपने घर में मिनी फार्म बना सकते हैं। वेल, मुझे लगता है कि बदलाव हमेशा किचन से शुरू होता है, तो चलो आप कुछ ट्राई करते हैं। शॉप द लोकल स्टिकर्स, ठीक है? अगली बार जब आप शॉपिंग पर जाएं तो महसील या प्रोडक्ट ऑफ कतर लेबल ढूंढिए। जब आप लोकल खरीदते हैं तो आप फूड माइल्स कम करते हैं, वो फ्यूल, वो पोल्यूशन जो खाने को दूसरे देश से लाने में लगता है, आप उसे बचा लेते हैं। और सच तो ये है कि लोकल सब्जियां ज्यादा जायकेदार होती हैं और आपकी हेल्थ के लिए परफेक्ट होती है। अब बात करते हैं अपने छोटे से फार्म की, तो कैसे बना सकते हैं? स्पेशली बालकनी हर्ब्स बड़े आसान होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद आजमाए हुए हैं। वेल, हमारे कतर के जो फ्लैट्स हैं, ज्यादातर जहाँ पर लोग रहते हैं तो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते, तो मैं कहूँगी अपने विंडोज या बालकनी पर आप पुदीना, धनिया और बेसिल उगा सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सेल्फ वाटरिंग पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गर्मी में पौधे ना सूखे।

0: रखें। शाम की चाय में अगर आप सोचें अपने हाथ से तोड़ी हुई आपने मिंट की कुछ लीव्स डाल ली तो कितना मजा आएगा। मैं खुद कहती हूँ मैंने अपने घर में धनिया पुदीना और बेसिल यानी कि तुलसी कई बार उगाई है और ये सिलसिला हमारे घर में चलते चले आ रहा है। अच्छा अब ये दूसरी चीज जो बड़े काम की होती है दैट इज कंपोस्ट योर स्क्रैप्स। जो सब्जियों के छिलके हम फेंक देते हैं ना वो कचरा नहीं है तो क्या करना है उनको बोकाशी कंपोस्टिंग। इसके बारे में कभी आपने सुना है? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। ये एक स्मेल फ्री तरीका है किचन वेस्ट को फर्टिलाइजर बनाने का। अपने इंडोर प्लांट्स को ये कुदरती खाद दें तो फिर देखें कि वो कैसे उगते हैं एंड कितना उसमें जायका आता है। फिर एक और टिप है दैट इज रिड्यूस प्लास्टिक एंड स्मार्ट स्टोरेज यानी कि प्लास्टिक से हमको दोस्ती खत्म करनी होगी। कतर में हम बहुत सारी बॉटल्ड वाटर जो होती है वो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसे हम यूज करते हैं। तो क्या करना है आपको कि अगली बार जब हम शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने कपड़े का बैग अपना रीयूजेबल बैग खुद लेकर जाएं और उसको ले जाना ना भूलें। इनफैक्ट आप चाहें तो अपनी कार के बैक सीट में यूं कहें अपनी कार की डिक्की में ये सारे जो बैग्स हैं रख सकते हैं ताकि जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपको किसी तरह की टेंशन नहीं कि अरे अब मुझे बैग लाना था घर से एंड ऑल, समझ गया? हाँ जी, इस बात का आपको जरूर जरूर ख्याल रखना है। और सब्जियों को प्लास्टिक बैग्स में रखने के बजाय कॉटन प्रोड्यूस बैग्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे सब्जियां फ्रिज में ज्यादा दिन तक ताजा रहेंगी और कचरा भी कम होगा। तो समझ गए कि कैसे अपने घर में मिनी फार्म बनाना है और कैसे इम्पॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखते हुए हमारे लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करना है कि नहीं? तो जनाब छोटी छोटी बातें हम जब ये करते हैं ना तो इससे हमारा एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होता है। जाहिर सी बात है कि जब हम कतर ग्रीन बीच की बात करते हैं सो इट्स ऑल अबाउट द इनिशिएटिव जो कि कतर नेशनल विजन 2030 के जरिए लिए जा रहे हैं। जब हम ये विजन डॉक्यूमेंट्स में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मेट्रो लाइंस तक सीमित नहीं है, इसका बहुत जरूरी मकसद है, इसका बहुत जरूरी पिलर है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुकानों में सामान होना चाहिए, इसका असली मतलब है कि हम क्या आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, कि हम अपनी सारी चीजों को खुद पैदा कर सकते हैं। जब हम लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं ना तो हम इस सरजमीन की खिदमत करते हैं जिनसे हमें इतना कुछ मिल रहा है या यूं कहें तो इस जमीन ने जितना हमें कुछ दिया है। हम सब इस मिट्टी के गार्जियंस हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2030 तक एक ऐसा कतर बनाए जहां नेचर और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर फलेंगे और फूलेंगे। अगली जनरेशन जब हमसे पूछेगी कि आपने हमारे प्लैनेट के लिए क्या किया तो हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए ये हरा भरा कतर होना चाहिए, है कि नहीं? फिलहाल आज का एपिसोड हम यही खत्म करने जा रहे हैं और मैं कहूंगी कि आपका हर एक छोटा फैसला, हर एक लोकल टमाटर जो आप खरीदते हैं वो हमारी जमीन को हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आपसे ये कहूंगी कि हर हफ्ते कतर ग्रीन बीट्स के हम स्पेशल टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं और अगर आपको लगता है कि ये कतर ग्रीन बीट्स की कुछ और भी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इसमें होनी चाहिए जिसके जरिए हमारा शो और बेहतर हो तो आप जरूर शामिल कर सकते हैं अपने व्यूज अपने ओपिनियंस। आप हमें मैसेज करें 6622107 पर 6622107 पर अपने नाम के साथ एंड डेफिनेटली हमारा हर एक एपिसोड आपके नाम होगा और बेहतर होते जाएगा। और अगर कतर ग्रीन बीट्स शो सुनने के बाद अगर आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे कतर के एनवायरनमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो भी अपनी चीजें अपने एक्सपीरियंसेस हमसे जरूर शेयर करें। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही और मैं कहूंगी कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें कुछ नई कहानियों के साथ। तो तब तक के लिए क्या करना है, अपनी अमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं प्लस हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाएं ताकि कतर से जुड़ी हर एक नई बात हर एक पॉपुलर और अपडेटेड बात आप तक आसानी से पहुंच सके। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें कि आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
5: माहिरीन की राय पर।
4: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
5: हेल्थ गाइड,
4: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
5: इलाज और एहतियात तक।
4: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
5: दिल से देसी।
4: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
6: आप सुन रहे हैं FM 107।
7: दिल से देसी।
8: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम में इस्तकबाल है आपका। हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं नए जमाने के स्कैम्स के बारे में, फ्रॉडस्टर्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स और सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड के बारे में। 2026 में साइबर क्रिमिनल्स ने इंडिविजुअल आइडेंटिटी चोरी करने के बदले सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया है। इस फ्रॉड में एआई एजेंट्स रियल लोगों के थोड़े से डेटा, जैसे कि आधार या पैन या कुछ हिस्सा या छोटी मोटी डिटेल्स को फेक एआई जनरेटेड डेटा के साथ मिक्स करके एक बिल्कुल नई झूठी आइडेंटिटी खड़ी कर देते हैं। ये फेक आइडेंटिटीज इतनी परफेक्ट होती हैं कि बैंक के ऑटोमेटेड केवाईसी सिस्टम्स और क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम्स भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। इन सिंथेटिक प्रोफाइल्स के दम पर फ्रॉडस्टर्स बड़े बड़े पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और शॉपिंग लाइंस अप्रूव करवा लेते हैं। जब लोन डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस नाम का कोई इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका असर आम लोगों पर तब पड़ता है जब उनका रियल डेटा इस फेक मिक्स में यूज होता है और उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेगुलरली चेक करते रहें। ये ऑटोनोमस एआई एजेंट्स हर रोज हजारों फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, बैंकिंग पोर्टल्स पर ऑटोमेट अटैक्स रन करते हैं, जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड का शिकार होने से बचने के लिए आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड क्रेडेंशियल्स के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क या कहें होशियार रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखने के लिए सिबिल, एक्सपेरियन या इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरोस से हर महीने अपने क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी लोन इंक्वायरी या क्रेडिट अकाउंट दिखता है जो आपने कभी खोला ही नहीं, तो तुरंत उस बैंक और साइबर सेल को रिपोर्ट करें। अपने पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या QID, फोटोकॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की अनवेरिफाइड जगह पर ना दें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा मार्क्ड आधार या QID या ऐसी डिटेल्स जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मार्क्ड दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के आखिरी के 4 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही अगर आप दे देंगे तो आपके नाम से उसे मैच किया जा सकता है बजाय पूरे 16 या जितने भी नंबर हैं वो देने के, क्योंकि वो हो जाता है खतरनाक। उसके अलावा साइबर थ्रेट से अलर्ट रहने के लिए बैंक्स की तरफ से भेजे गए ट्रांजैक्शन अलर्ट्स और क्रेडिट अपडेट्स को भी इग्नोर ना करें। अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज का यूज करें, जो डार्क वेब पर आपके क्रेडेंशियल्स का मिसयूज स्कैन करती रहती है। ये है सबसे सेफ तरीका। दोस्तों ये था आज का FM 107 पे खास फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट,
6: आप सुन रहे हैं FM 107,
7: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है हेल्दी नेशन 2030। छोटी आदतें बड़ा इम्पैक्ट। देखिए हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल या डॉक्टर तक महदूद नहीं है। असल हेल्थ वो होती है जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में क्रिएट करते हैं और यही आइडिया है हेल्दी नेशन 2030 का कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी हैबिट से बड़ी तब्दीली ला सकता है। आजकल बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हैं। कॉन्शियस तो है पर फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। उसकी वजह है फास्ट फूड कल्चर, एक्सरसाइज कम करना, ना जाकर भी टेंशन और स्ट्रेस, ये सब कुछ कॉमन हो चुका है। लेकिन अगर हम 2030 तक एक हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें आज से छोटी छोटे चेंजेस जो हैं वो करने हैं। सबसे बड़ी आदत वॉकिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटी की। जरूरी नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन करें। सिंपली 30 मिनट्स वॉक भी आपकी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकती है। दोहा जैसे शहर में पार्क्स और वॉकिंग ट्रैक्स का इस्तेमाल करना एक अच्छा स्टेप हो सकता है। वहीं दूसरी आदत बैलेंस्ड डाइट की। जी हाँ, आजकल लोग जो हैं वो प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर होम कुक मील्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। वहीं तीसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ। ये टॉपिक मुझे लगता है पहले भी इतना डिस्कस हुआ है लेकिन फिर भी उतना ही कम डिस्कस हुआ है। स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना बड़ा जरूरी है। चाहे वो मेडिटेशन हो, फैमिली टाइम हो या फिर कोई भी हॉबी। हेल्दी नेशन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है बल्कि कम्युनिटी है। जब फैमिलीज हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करती हैं तो बच्चों पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक इंसान चूज करे जो अपनी लाइफ में एक छोटी हैबिट चेंज कर रहा है, जैसे रोजाना 20 मिनट्स वॉक, फिर 30 दिन बाद उसका रिजल्ट शेयर कर सकता है। आप डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि सिंपल टिप्स देकर आपको इस चीज को फॉलो करने में मदद करेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अवेयरनेस। लोग अक्सर जानते नहीं कि उनकी डेली हैबिट्स उनके हेल्थ पर कितना इफेक्ट करती हैं, इसलिए मीडिया का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2030 तक एक हेल्दी नेशन बनाना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी से नहीं होगा। ये तब होगा जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तो बस आज से आपका एक स्टेप क्या हो सकता है मुझे बताइए। क्या एक वॉक या एक हेल्दी मील या सिर्फ 10 मिनट अपने खुद के लिए निकालना। सोचिए और इस पर गौर कीजिए और शायद जितनी जल्दी हो सके तो अमल। फिलहाल इसी नोट पर, इसी सवाल पर, इसी सोच पर मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मेरा मतलब है अभी के लिए जा रही हूँ, वापस कल फिर आऊंगी। आपके मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: देखिए भाई साहब, टेक की दुनिया और ये है एकदम टकटकाटक। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर F107 पे, एंड वेलकम टू टेक इनोवेशन, द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी सेकंड। मैं कब तक कितना पीछे भागूं, ये जान लेता हूं तो वो छूट जाता है, वो जान लेता हूं तो कुछ और छूट जाता है। बट मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं आपको वो चीजें बताना चाहता हूं जो आपके काम आएंगी, वो चीजें जो एक्चुअली में इस हफ्ते, अगले हफ्ते या फिर महीने भर तक आप यूज कर सकते हैं और उसमें चेंजेस आते भी रहेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज टेक इनोवेशन में मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं जो AI से जुड़े हुए हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, अपने चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड दे नीड समथिंग फ्रॉम द AI वर्ल्ड। तो आई विल ट्राई टू गिव देम समथिंग। तो आज AI से जुड़ी हुई कुछ एप्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा। फिर आएंगे गैजेट्स जो बड़े प्यारे हैं, बाय द वे बड़े क्यूट गैजेट्स हैं आज मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो खबरें जो बड़ी जरूरी हैं इन टेक न्यूज़। तो शुरू करेंगे सबसे पहले AI टूल से इन एप्स दिस वीक।
1: ट्रेंडिंग एप्स,
0: तो नंबर वन ऑन द लिस्ट, ये कोई रैंकिंग नहीं है, रैंडमाइज करके बता रहा हूं, तो नंबर वन ऑन द लिस्ट इज consensus.app, ध्यान से सुनिएगा, consensus.app consensus.app या फिर ऐप लिख दीजिएगा, वैसे consensus.app लिखिएगा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ये क्या करता है, ये AI बड़ा कमाल का है, ये रिसर्च बेस्ड आंसर्स देता है। मान लीजिए आपने कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसका आपको सब्जेक्ट मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपके पास एटलीस्ट एक हेडर है, आपको पता है टॉपिक क्या है, उसको ब्रॉडर वे में एक रिसर्च की तरह आप जानना चाहते हैं, उसकी नॉलेज के बारे में एक एक चीज, मतलब उसकी नॉलेज के बारे में क्या, उसकी नॉलेज जानना चाहते हैं, तो एक एक डिटेल आपको मिलेगी, वट एवर द सब्जेक्ट इज, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, एक पूरे रिसर्च बेस्ड आंसर आपको ये AI देता है। नॉट ओनली दैट, इट कंपाइल्स इट फॉर यू ताकि आपको एक कंपाइलेशन मिल सके, आप उसको अपने हिसाब से देख सकें, पढ़ सकें। आप इसकी लैंग्वेज को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान लैंग्वेज है। एंड इट नॉट ओनली गिव्स यू अ रिसर्च बेस्ड आंसर बट इट ऑल्सो गिव्स यू क्लैरिटी, मतलब वो सेंटेंसेस जो फॉर्मल नहीं होते, समझ रहे हैं आप, एक आसान अंग्रेजी या आसान भाषा में जो भी आप इसको लैंग्वेज देंगे, इट इज जस्ट अमेजिंग एंड आई वॉज ब्लोन अवे। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ के आया हूँ तो मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे के काम आ जाए, ये कोई टीनेजर हो जो प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिस वन इज कॉल्ड consensus.app, consensus.app, तो ये किसी की मदद कर सके आप, किसी स्टूडेंट की, तो उसको ये बताइएगा, बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत काम आने वाली है। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगला जो AI है बहुत कमाल का, मेरा फेवरेट है, ये मेरे भी काम आता है, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स लेकिन ये मेरे भी काम आता है। इसका नाम है not.com, पर ये NOT वाला नॉट नहीं है, KNOT वाला नॉट नहीं है, इसकी सही स्पेलिंग है KNOWT, KNOWT.com। ये क्या करता है, जो नोट्स होंगे कॉलेज के, स्कूल के, उन नोट्स को ये स्टडी गाइड्स की तरह या फ्लैश कार्ड्स की तरह तैयार कर देता है, विच इज अमेजिंग। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कहानियां तैयार करता हूँ आपको सुनाने के लिए नैरेटिव फॉर्म में, कोई केस स्टडी में करता हूँ, कोई केस मुझे मिला, मैं उसको जब नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए जाता हूँ तो इसकी मदद लेता हूँ। ये मुझे नोट्स बना के देता है, मुझे पूरा

स्ट्रक्चर देता है, ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फ्लैश कार्ड्स भी देता है। अगर मुझे उस कहानी में से कुछ सवाल निकालने पूछने के लिए, आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो आप सोचिए, जब ये कहानी के लिए इतना कर सकता है, तो जो आपके एक्चुअली में चीजें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई आपने नोट्स तैयार किए हैं, उनको ये किस कदर प्रेजेंटेशन देगा, कितनी बेहतरीन देगा। सो ट्राई दिस वन आउट, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही कमाल का है। knowt.com, not.com, ये क्या करता है, इट बेसिकली टर्न्स योर नोट्स इनटू स्टडी गाइड्स प्रॉपर, और साथ में फ्लैश कार्ड्स भी, क्या आपको अपने हिसाब से अगर सवाल जवाब पूछने हैं या एक क्वेश्चनेयर टाइप का तैयार करना है, तो ये बहुत बहुत काम की चीज है। प्लीज प्लीज ये उन तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्लैश कार्ड्स आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ लर्निंग, एंड ये सबको पता होना चाहिए जो भी अभी स्कूल में या कॉलेज में। सो वैसे तो बच्चे बहुत ज्यादा तेज है, मैं कौन होता हूँ उन्हें बताने वाला, बट स्टिल इफ समबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट, ये उनके लिए था जनरली स्पीकिंग। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली जो AI टूल है उसका नाम है, अगले AI टूल का scispace.com, मैं स्पेल आउट कर देता हूं, SCISPACE, बेसिकली साइस्पेस लिखना है, वो साईफाई लिखते हैं ना वैसे ही साई लिखना है, SCI और space.com। ये बहुत कमाल का है। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट AIs, क्योंकि ये जो काम करता है वो बाकी AI उतना अच्छा नहीं कर पाते। देर आर AIs इन द मार्केट जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट दिस वन इज रियली ग्रेट। तो ये करता है साइस्पेस, ये अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मान लीजिए बहुत जत्था पड़ा है आपके पास प्रोजेक्ट का, उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके एक सिंपलर लेमैन लैंग्वेज में, एक आम इंसान की भाषा में आपके सामने रख देगा। बोलेगा हेलो जी, तो अगर कुछ नहीं समझ में आए, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है किसी चीज में, एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स या टीनेजर्स, मगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं, कोई बहुत ही भारी भरकम कोई सब्जेक्ट मिल गया आपको, एंड यू वांट टू गेट इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये आपके बहुत बहुत काम आएगा। आई हैव यूज्ड इट एंड आई फाउंड इट अमेजिंग। तो ट्राई दिस आउट, साइज स्पेस।

0: gadgets. Cool gadgets.
1: तो गैजेट नंबर वन, भाई ये गैजेट मुझे कोई गिफ्ट दे दी या मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, मेरे जितने भी गेमिंग भाई बहन है उनके लिए भाई बढ़िया करके, इस गैजेट का नाम है CRKD. हाँ ये एक्चुअली में ऐसे ही है, CRKD एटम कंट्रोलर्स, ATOM. सो CRKD एटम कंट्रोलर्स. ये कंट्रोलर्स बहुत छोटे छोटे कीचें जुड़ी हुई इनसे भाई, इतने छोटे हैं लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि आपके हाथ इसको होल्ड ना कर सके दोनों हाथों से, मतलब इतने भी छोटे नहीं, लाइक अ गुड साइज ऑफ कंट्रोलर्स. एंड ये आपके मोबाइल से ब्लूटूथ, वाईफाई, यूएसबी तीनों से कनेक्ट हो जाते हैं. सो इफ यू आर डूइंग, इफ यू आर प्लेइंग ऑन मोबाइल फोन्स, ये भाई बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है. ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हैं, बहुत बहुत अच्छे कलर्स हैं एंड बड़ी फैंसी गिफ्ट है फॉर अ गेमर. तो अगर आपके घर में कोई गेमर है उसको भाई ये दे दीजिए आप, छुट्टी है, मतलब आप इतना इंप्रेस कर देंगे सामने वाले को, बोलो और भाई यही तो चाहिए था और उसे पता भी नहीं है चाहिए था, ये ऐसा गिफ्ट है. इट कैन बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर गेमर्स, चेक दिस वन आउट. और काफी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, मैं नाम दोहरा देता हूँ, CRKD एटम कंट्रोलर्स, स्पेस देखिए ATOM कंट्रोलर्स. ट्राई दिस वन आउट, अगेन बजट में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है. और अगर आपको कोई कोई दोस्त है, कोई खास है जो इंडिया जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है एंड कमिंग बैक, तो उसके हाथों मंगवा लीजिएगा, और भी ज्यादा सस्ता मिलेगा. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला जो गैजेट है, दिस वन इज स्पेशली फॉर दोस्त जो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं उनके लिए है. और अगर आप फैंसी गैजेट्स में हैं मेरी तरह, पसंद है आपको वो गैजेट जो बजट में आते हैं, इट इज़ कॉल्ड ब्राइट डाउन E26 बल्ब. बल्ब है जी, अब वो बल्ब क्यों बता रहा है भाई, कंटेंट की कमी हो गई क्या? नहीं, ये अलग किस्म का बल्ब है भाई, इसका नाम है ब्राइट डाउन E26. ये जो बल्ब है ये रिचार्जेबल है, ठीक है. ये जो है आपके साथ, इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इसके साथ आपको टाइमर मिलता है, इसके साथ तीन कलर टेम्परेचर्स हैं और प्लस 9 RGB कलर्स हैं. चार का पैक अलग से आता है भाई. और क्या, मैं अगर इसको बेचने वाला होता ना, मैं अभी भाई साहब बाहर ठेला लगा लेता, एक घंटे के अंदर सारे बल्ब बेच देता, मैं इतना बड़ा फैन हूँ इसका. तो इसकी पिच मैंने यही तैयार करी है, आपको बता रहा हूँ, ऐसा बल्ब आपने देखा नहीं होगा. मैं इसका पैक लेने की सोच रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जब इंडिया जाऊंगा तो मैं तो उसका पैक लेके आ रहा हूँ. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ब्राइट डाउन E26 रिचार्जेबल लाइट बल्ब, देखिएगा बहुत अच्छा है, लिटरली काम आ सकता है आपके. और अगर घर में आपको ऐसी कोई गैजेट लगाना है जो थोड़ा सा स्मार्ट होम गैजेट लगे, तो दिस वन इज फॉर यू. और ये भी बहुत अच्छे बजट में है, सो ट्राई दिस वन आउट. ये भी अमेजोन में अवेलेबल है एंड बाकी जगहों पे इजीली मिल जाएगा. इवन इट इज अवेलेबल इन कतर इन सम क्या कहते हैं उसे, गैजेट की जो दुकानें होती है वहां पे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन. अगला है जी वो प्रोडक्ट जो बड़ा काम का है, जो मैंने अभी तक नहीं लिया है. लोग बोलते कैसे जिंदा हो तुम बिना पावर बैंक के. चलिए मैं तो इतना बाहर निकलता नहीं हूँ, पर आप निकलते होंगे. हो सकता है कि आपकी जॉब मार्केटिंग की हो, सेल्स की हो, एंड यू नीड पावर बैंक, यू नीड टू चार्ज योर फोन एवरी नाउ एंड देन, और आपके पास पावर बैंक होगा. मगर मेरी तरफ से भी है पावर बैंक के बारे में, सुनिए. इसका नाम है एंकर मैग गो पावर बैंक, ANKER. इसकी खास बात, सबसे पहली खास बात, 10,000 mAh बैटरी है, ठीक है. ये पोर्टेबल चार्जर के साथ आता है, इसके ऊपर डिस्प्ले भी है जो डिस्प्ले करता है कितनी बैटरी बची, कितनी बैटरी कंज्यूम हो रही है. एंड इसी के साथ ये फोल्डेबल भी है, और इसके साथ ये USB-C केबल भी आती है. एक मसला है इसके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन्स के लिए है. सो ये बस मद्देनजर रखिएगा, बाकी बहुत बढ़िया चीज है. इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली हैंडी एंड एक्सट्रीमली लाइट टू यूज. एंकर मैग गो पावर बैंक ट्राई कीजिएगा. ये गैजेट कतर में अवेलेबल है, आई हैव सीन इट समवेयर. बाकी अमेजोन पे इफ यू नो समबडी यू कैन ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर, तो ये आप मंगा लीजिएगा. और इसकी खास बात ये कि 10,000 जो एमएएच बैटरी, वो जल्दी चार्ज भी जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती एंड ज्यादा भारी भरकम नहीं है. ऐसा नहीं लगता कि जेब में आपने ईंट रख रखी है, वो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी. सो ये थे गैजेट्स दिस वीक. नाउ मूविंग ऑन खबरों की तरफ, जो बड़ी कमाल की है. Okay, so, खबर नंबर वन जो आ रही है वो गूगल की तरफ से आ रही है. गूगल ने भी फैसला किया है कि वो कुछ नया करने वाले. मैं कब से सुन रहा हूँ ये, लेकिन गूगल ने किया है. गूगल का अगर आपने इनफ्रेम यूज किया है तो आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. गूगल ने रिसेंटली रफली $75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, पार्टनरशिप करी है एक

0: एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ जिसका नाम है A24। अगर आप हॉरर थ्रिलर्स देखते हैं तो A24 बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, और उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप करी है एक डीप माइंड रिसर्च के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ताकि मिलकर स्टूडियो A24 और गूगल एक डील पे आए, एक मुकाम पे पहुंचे जहां पे AI मूवीज बनाई जा सकें। तो इससे होगा एक ही डील जो है दोनों के बीच में मूवीज की रहेगी, लेकिन डील का मतलब ये नहीं है कि गूगल को A24 के कंटेंट लाइब्रेरी या डेटा का हिस्सा मिलेगा, नहीं वो नहीं मिलेगा, मगर A24 कैन लिटरली हेल्प गूगल टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर या एक किस्म का इकोसिस्टम जहां से AI मूवीज बन सकें। दैट्स अ ह्यूज न्यूज एक्चुअली में। अगली खबर है एप्पल की। एप्पल की तरफ से एक और बात सामने आई है, मुझे तो भाई डर लगता है जब भी एप्पल का प्रोडक्ट आता है, साफ सीधी बात बोलूं। इन्होंने प्लान किया है कि ये स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करें बहुत जल्दी। एप्पल इस पे काम कर रहा था काफी टाइम से, और वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन चाहते हैं मेटा रेबैन से, जो कि मुझे लगता है दे आर द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। अगर आप लिटरली सोच रहे हैं कोई ग्लासेस लेने के, स्मार्ट ग्लासेस, तो मेटा रेबैन का कोई मुकाबला है ही नहीं। हालांकि गूगल और सैमसंग ग्लासेस भी आ चुके हैं, पर अभी रिलीज डेट नहीं आई है। ऑलरेडी उनके जो पेटेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, मगर ओरिजिनली आइडिया बनाने का जो प्लान है गूगल का, उन्होंने कह दिया है बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। आई नो बहुत ज़्यादा रेट होने वाला है इसका, भाई ने कोई समझाओ यार। अभी जो है वो क्या वो लॉन्च किया था इन्होंने अपना VR हेडसेट। प्लीज़ एप्पल बिहेव। And last but not the least, खबर है सीधा GTA 6 की for the gamers.
1: Game and entertainment.
0: GTA 6 वालों ने 25 जून को कह दिया है कि कह दिया था, जब आप सुन रहे होंगे तो 25 जून क्रॉस हो चुकी होगी शायद, या नहीं हुई होगी, बट 25 जून प्री ऑर्डर्स आर ऑन। लोग कह रहे हैं 150 GB का है, कोई कह रहा है 300 GB का है, पता लग जाएगा बाद में। लेकिन कवर आर्ट GTA 6 का आ चुका है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। मेन दो प्रोटैगनिस्ट नजर आ रहे हैं, एक फीमेल नजर आ रही हैं जो कि कवर आर्ट में कुछ है, आई थिंक सम मिस्टीरियस कैरेक्टर टू प्ले विद और टू नॉट टू प्ले विद, डोंट नो। एक एलिगेटर नजर आ रहा है, एंड सिटी द वाइस सिटी इज देयर। सो आई कैन नॉट वेट एनी फर्दर। प्लीज रॉकस्टार वालों और मत सरकाना, November 19th इज द डेट GTA 6 की लॉन्च होने की। एंड ऑन दैट नोट, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, एंड इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा टेक इनोवेशन से। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मासलाम।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे गीबत से दूर रहने के बारे में। गीबत एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान के दिल को सख्त कर देती है। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद हमारे लिए भी नुकसान का सबब बनती है। जब हम किसी की गलतियों पर बात करते हैं तो हम अपनी खुद की इस्लाह से दूर हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी जबान की हिफाजत करें और सिर्फ वो बात करें जो फ़ायदेमंद हो। अक्सर महफिलों में गीबत एक कॉमन चीज़ बन जाती है, लेकिन हमें हिम्मत करनी चाहिए कि ऐसी बातों को खुद से अलग रखें। आज का अमल ये है कि अपनी बातों पर गौर करें और अगर कहीं गीबत हो रही हो तो टॉपिक चेंज करें या वहां से उठ जाएं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पर ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ, हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मूवमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुए और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं कहानी, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशन, इंसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। दोस्तों, आज हम एक नॉस्टैल्जिक सफर का रुख करेंगे कतर की मीडिया हिस्ट्री के एक डिफाइनिंग चैप्टर की तरफ और बात करेंगे कतर के सबसे पहले टेलीविजन स्टेशन कतर टेलीविजन या कतर टीवी की।

और इसके इफ्तिताह की। ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट से लेकर एक वाइब्रेंट मीडिया पावर हाउस तक का ये सफर सिर्फ कल्चर और इनोवेशन की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि टेलीविजन ने कतर को पूरी दुनिया से कैसे कनेक्ट किया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस अनोखे सफर में, जहां आज के एपिसोड में हम आपको पूरी मालूमात देने वाले हैं कतर टेलीविजन की शुरुआत से लेकर आज तक के सफर की। दोस्तों, कतर टीवी की पहली ब्रॉडकास्ट 15 अगस्त 1970 को हुई थी। वो दिन हमेशा कतरी और अरब व्यूअर्स की यादों में महफूज रहेगा, जब उन्होंने एक नए अरब टेलीविजन चैनल का आगाज देखा जो अपने व्यूअर्स तक कतर की एक कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रुथफुल तस्वीर पेश करता था। ये चैनल कतर के बच्चों की ख्वाहिशात, उनका माजी, हाल और मुस्तकबिल, उनकी एम्बिशंस, ट्रेडिशंस और अपने अबाव अजदाद की हेरिटेज को भी कन्वे करता था। उन दिनों अरब व्यूअर्स एक नए अरबिक स्क्रीन के साथ वक्त गुजारा करते थे, जो अरबिक और इंटरनेशनल चैनल्स की लिस्ट में शामिल होकर अपने व्यूअर्स तक कतर की एक इंटीग्रेटेड और ऑनेस्ट इमेज पहुंचाता था। ये तारीख हर कतरी सिटीजन और मीडिया पर्सन के लिए फख्र का लम्हा है। ये उन सब के दिलों में एक अजीज और कीमती यादगार भी है जो कतर में रहते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कतरी स्क्रीन का लॉन्च और इसकी पहली ब्रॉडकास्ट अरब व्यूअर्स के लिए देखी थी। अब ये सफर 5 दहाइयों से ज्यादा का है, जहां कतर टीवी ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, गिविंग, लॉयलिटी, ब्रिलियंस और सक्सेस के साथ। कतर टीवी का लॉन्च उस वक्त हुआ जब मीडिया की अहमियत बढ़ रही थी और ये एक अहम जरिया पैगाम और कंटेंट के तौर पर सामने आ रहा था। मीडिया का किरदार सोसाइटीज को प्रमोट करने में भी वाज़े हुआ, जहां आवाज, तस्वीर और लफ्ज के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले इवेंट्स और डेवलपमेंट्स को जोड़ा गया। दोस्तों, कतर टीवी ने अपनी हिस्ट्री के दौरान 3 मुख्तलिफ लोगोज यूज किए। पहला लोगो फाल्कन था, जो उस वक्त के कतर टीवी डिजाइनर ने डिजाइन किया था, और यही डिजाइनर इजिप्ट के फाउद मोहम्मद अहमद अल शिबिनी थे, जो रियासत कतर के कोट ऑफ आर्म्स के डिजाइनर भी थे। पहला लोगो टीवी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर साल 2000 के आखिर तक यूज होता रहा। इस डिजाइन की खास बात इसका कंपाउंड स्टाइल था, जिसमें एक फाल्कन शामिल था, जो अरब हेरिटेज का सबसे नुमाया एक्सप्रेशन है। लोगो के सेंटर में ट्रांसमिशन टावर था, जो आज भी मौजूद है, जबकि नीचे पुराने जमाने के विंटेज फिल्म रील्स बनाई गई थी, जो डिजिटल टेप्स आने से पहले टेलीविजन्स में यूज होती थी। सामईन, दूसरा लोगो अल्दाना पर्ल का था, जो कतरी विजुअल आर्टिस्ट मोहम्मद अली अब्दुल्ला ने डिजाइन किया था। ये लोगो 2001 के आगाज से लेकर 16 दिसंबर 2012 तक इस्तेमाल होता रहा। इस लोगो का डिजाइन अपनी क्रिएटिविटी की वजह से मशहूर था, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक यूनिक शक्ल बनाई गई थी। इसमें एक सर्कुलर आर्क्ड शेप शामिल थी, जो ट्रेडिशनल मोटिव से इंस्पायर थी, जो दरवाजों और खिड़कियों की डेकोरेशन में शामिल होती थी, और सेंटर में अल्दाना पर्ल था, जो मोती की सबसे बड़ी और कीमती किस्म है। सर्कुलर आर्क्ड शेप की ग्रिड और अल्दाना पर्ल के आसपास 9 ट्रायंगल्स शामिल किए गए थे, जो कतरी फ्लैग से इंस्पायर थे। इसी डिजाइन के अंदर अरेबिक लेटर काफ भी नजर आता था, जो कतर का पहला हर्फ है अरेबिक में। ये लेटर सर्कुलर आर्क, अल्दाना और 9 ट्रायंगल्स में से 2 के दरमियान बनने वाली खाली जगह से सामने आता था। पूरा डिजाइन कतर और गल्फ के अबाव अजदाद की वो पुरानी प्रोफेशन सिंबलाइज करता था, जो पर्ल डाइविंग की थी। ख्वातीनो हजरात, जहां तक तीसरा और मौजूदा कतर टीवी लोगो का ताल्लुक है, ये 16 दिसंबर 2012 को टीवी चैनल के नए लॉन्च के साथ अडॉप्ट किया गया। इसका सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश फैक्टर इसका बहुत ही

0: सर्वर मिर्जा के साथ। दोस्तों, उस दिन से यानी 55 साल पहले से कतर टीवी मुल्क के हर घर का एक दायमी मेहमान बन गया है। अपनी न्यूज बुलेटिन और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक और मेडिकल प्रोग्राम के जरिए इसने हर एज ग्रुप को इंगेज किया है। साथ ही अरब और फॉरेन सीरीज और फिल्म्स ने कतर टीवी को रीजन की स्क्रीन्स पर एक लीडिंग और डिस्टिंग्विश्ड चैनल के तौर पर पहचान दी है। सामईन, अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और इवेंट्स के जरिए कतर टीवी ने सिर्फ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं किया बल्कि लॉयल्टी और बिलोंगिंग्स के प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया है। साथ ही इसने अरब और इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ साथ कतरी सोसाइटी की सोशल और कल्चरल वैल्यूज को भी प्रिजर्व किया है। कतर टीवी ने एक और बहुत अहम किरदार अदा किया, ये मीडिया और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग स्टेशन बना। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड्स में आना था, उनके लिए कतर टीवी ने एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जो उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाती रही। इसके अलावा कतर टीवी एक एक्टिव मीडिया अरेना के तौर पर भी सामने आया, जहां नेशनल कैडर्स को एनकरेज किया गया। साथ ही यहां से ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क्स और मुख्तलिफ मीडिया प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए गए, जो आज भी कतर की कल्चरल और मीडिया लैंडस्केप में अपना एक अहम मकाम रखता है। तो खादिनो हजरात, 55 साल का ये सफर कतर टीवी के लिए सिर्फ एक चैनल की ग्रोथ नहीं बल्कि एक पूरी मीडिया इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है, जहां से टैलेंट, क्रिएटिविटी और नेशनल आइडेंटिटी दोनों को एक साथ बढ़ावा मिला है। कतर टीवी का आगाज 1970 में हुआ, जब कतर स्टेट टीवी ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया। इस वक्त ट्रांसमिशन ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी, जबकि पहला कलर ब्रॉडकास्ट 1974 में शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने कतर टीवी को नए दौर के ब्रॉडकास्टिंग के करीब ला दिया। अपने सफर के दौरान कतर टीवी ने कई डेवलपमेंट फेसेस गुजारे। पहला बड़ा डेवलपमेंट 2001 में आया, जब टेलीविजन लोगो का डिजाइन, प्रोग्राम पैटर्न, ब्रेक्स और एडवर्टाइजमेंट्स बदली गईं, ताकि ये सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट की पेस के साथ चल सके। इसी दौर में कतर टीवी ने रमजान के महीने में हर साल हिस्टोरिकल ड्रामास प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसमें एक मशहूर मिसाल सीरीज उमर की है। कतर टीवी उन पहले अरब चैनल्स में से था जिन्होंने फुल्ली मॉडर्न डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स अपने सिस्टम में शामिल किए। इसके अलावा एक नई बिल्डिंग भी तैयार हुई, जिसमें एक डेडिकेटेड स्टूडियो बनाया गया, जो खास तौर पर न्यूज बुलेटिन की ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता था। तो दोस्तों, ये तमाम अपडेट्स और मॉडर्नाइजेशन कतर टीवी को एक ऑर्डिनरी चैनल से निकालकर एक प्रोफेशनल और रीजनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बनने का सबब बनी। दोस्तों, कतर मीडिया कॉरपोरेशन के अंडर कतर टीवी ने अपनी पहचान को सिर्फ एक न्यूज और एंटरटेनमेंट चैनल तक महदूद नहीं रखा। इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां कल्चर, एजुकेशन, हेरिटेज और मॉडर्न जर्नलिज्म का परफेक्ट ब्लेंड नजर आता है। चैनल का फोकस हमेशा ये रहा कि व्यूअर्स तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाई जाए बल्कि उन्हें इंगेज, इंस्पायर और एजुकेट भी किया जाए। कंटीन्यूअस डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के जरिए कतर टीवी ने अपने कंटेंट और ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया। नई टेक्नोलॉजीज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन ने चैनल को एक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया इंस्टीट्यूशन बनाया, जो अरब और ग्लोबल ऑडियंसेस तक अपनी रीच बढ़ाता रहा। कतर टीवी का मिशन सिर्फ न्यूज और एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया इंस्टीट्यूशन के तौर पर अरब सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यूज को प्रमोट करता है। यूथ को मोटिवेट करता है और कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है। हर प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा के जरिए ये चैनल नेशनल प्राइड, लॉयल्टी और बिलोंगिंग की प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, इस तरह और इस सफर के साथ कतर टीवी न सिर्फ एक चैनल है बल्कि एक मीडिया लेगेसी भी है जो 55 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुका है और आज भी अपने व्यूअर्स के लिए एक ट्रस्टेड और इंस्पिरिंग सोर्स बना हुआ है। ये लेगेसी आने वाले दौर में भी कंटिन्यू रहेगी, नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करते हुए और अरब और इंटरनेशनल मीडिया के लैंडस्केप में अपनी अहमियत को बरकरार रखेगी। तो दोस्तों, आज जब हम कतर टेलीविजन के 55 साल से ज्यादा के सफर का जश्न मना रहे हैं, इसकी लेगेसी अब भी जिंदा है। इसने कतर के मेजर ब्रॉडकास्टर के लिए रास्ता तैयार किया और कुछ टॉप जर्नलिस्ट और प्रोड्यूसर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड का किरदार अदा किया। वो पहला ब्लैक एंड व्हाइट फ्लिकर से लेकर आज की सैटेलाइट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक, कतर टीवी अब भी नेशनल प्राइड का एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है। ये चैनल सिर्फ मीडिया का हिस्सा नहीं बल्कि कतर की कल्चर, हेरिटेज और इनोवेशन का एक रोशन निशान है जो हर जनरेशन के व्यूअर्स को इंस्पायर करता रहा है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहते हैं, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो को एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट से साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A4.

0: और अमिता संडे टू थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
2: FM 107 पर हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, आज हम बात करेंगे नींद और सेहत के ताल्लुक के बारे में। लिसनर्स, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि हमारे जिस्म और दिमाग की ज़रूरत है। अच्छी नींद इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों को बेहतर बनाती है। माहरीन सेहत के मुताबिक एक बालिग फर्द को रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, कमज़ोर याददाश्त, इसी तरह से जहनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि मुसलसल कम नींद दिल के अमराज, डायबिटीज और मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती है। आजकल मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से अफराद देर रात तक जागते रहते हैं और इस आदत से जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है या नींद का जो मायार है वो मुतासिर होता है। अच्छी नींद के लिए चंद आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होंगी। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल आप कम इस्तेमाल कीजिए, बल्कि 1/2 आवर या 1 घंटा पहले अगर बंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। रात में चाय या कॉफ़ी कम पिए, यानी सोने से कम से कम 3 घंटे पहले आप चाय या कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो आप उसे कम कर दीजिए। सोने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कीजिए और पुरसकून माहौल में सोइए। अगर बेखाबी मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और आज की जो हेल्थ टिप है कि सोने से पहले हल्की वॉक या दुआ और तिलावत ज़हनी सुकून में मदद देती है। याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की जमानत है। अल्लाह हाफिज़।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मावश खान। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी जिंदगियों को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज का जो ये सिलसिला है, ये जो शो है, इसमें जिस अंबिया के बारे में मैं लेकर आई हूँ उनका भी मैं तारुफ कराती हूँ, बल्कि आज एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही खास एपिसोड है, क्योंकि आज हम एक नबी का नहीं बल्कि दो की बात करेंगे। दो अंबिया कराम की आज हमें बात करनी है। इनका आपस का ताल्लुक भी बहुत मजबूत है और जब भी हमने इनका जिक्र सुना, हमने एक साथ सुना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज इन दोनों के बारे में एक ही एपिसोड में बात करें। तो आज हम बात करने वाले हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरकजीदा नबी थे। आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह आपका नस्ल बराहे रास्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जिन्हें अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया था। आपका लकब इसराइल भी था और आपकी नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। कुरान में भी बनी इसराइल का तज़किरा इसी नस्बत से किया गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बचपन ही से नरम दिल, सौले और फर्मा बरदार थे। आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। आपकी शख्सियत में इबादत गुजारी, हिल्म और सब्र की झलक नुमाया थी। अल्लाह ताला ने आपको कम उम्र में ही अपनी इबादत की तरफ माइल किया। आप अपनी तन्हाइयों में अल्लाह के जिक्र और दुआओं में मसरूफ रहते। तारीख के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने हजरत लिया और हजरत राहील नामी खवातीन से निकाह किया। अल्लाह ताला ने आपको कुल 12 बेटे अता फरमाए। उन्हीं 12 बेटों से बनी इसराइल की 12 शाखें वजूद में आईं। इनमें सबसे ज्यादा महबूब बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो हजरत राहील के बदन से पैदा हुए। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खास मोहब्बत थी। आपके बेटों के नाम तारीख में महफूज हैं। इनमें बड़े बेटे हैं रुबैल, शमून, हिलावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जाद, आशर, असाकर, जबुलून, बिन्यामिन और सबसे छोटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। ये सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खानदान की बुनियाद बने, लेकिन भाइयों में हजरत यूसुफ और बिन्यामिन को ज्यादा मकाम हासिल था। याकूब अलैहिस्सलाम ना सिर्फ खुद इबादत गुजार थे बल्कि अपनी औलाद को भी हमेशा अल्लाह की तौहीद और अदाअत की नसीहत करते। उनकी जबान पर अक्सर ये अल्फाज होते, मेरे बेटो अल्लाह ही को मबूद मानो, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। कुरान कहता है, क्या तुम हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके अबाउजदाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद एक अल्लाह की इबादत करेंगे और हम उसी के फरमा बरदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद में सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: वक्त के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मासूमियत और वालिद की मोहब्बत भाइयों के लिए नाकाबले बर्दाश्त होती गई। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ और उसका भाई बिन्यामिन हमारे वालिद को हमसे ज्यादा अजीज हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर हैं। बेशक हमारे वालिद खुली हुई गलती में है। उन्होंने मंसूबा बनाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ उन पे हो जाए। एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो, लेकिन दूसरे ने कहा, नहीं, उन्हें किसी कुएं में डाल देते हैं ताकि कोई काफला आए और उन्हें ले जाए। ये शैतानी मशवरा भाइयों को भा गया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का इरादा किया। भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आके कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे

हमारे साथ कल सैर के लिए भेज दीजिए, वो खेलेगा और मजे करेगा, हम उसके खैर ख्वाह हैं, आप फिक्र ना कीजिए। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने दिल में खतरा महसूस किया और फरमाया, मुझे अंदेशा है कि तुम यूसुफ को ले जाओगे और उसे भेड़िया खा जाएगा, जबकि कि तुम उसकी तरफ से काफिल होगे। भाइयों ने कसम खाई, ऐसा कभी नहीं होगा, हम मजबूत हैं और यूसुफ की हिफाजत करेंगे। आखिरकार हजरत याकूब अलैहि सलाम ने मजबूरी में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को भेजने की इजाजत दे दी, लेकिन वालिद के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। भाई हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को खेलने के बहाने जंगल की तरफ ले गए। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम को जबरदस्ती एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम खौफजदा थे, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखते हुए सबर किया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को वही के जरिए तसल्ली दी, हम तुझे खबर देंगे कि ये लोग ये काम कर रहे हैं और एक दिन तू उन्हें उनके इस अमल की खबर देगा जबकि वो तुझे पहचान नहीं पाएंगे। ये इल्हाम हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के दिल को सुकून देने के लिए था कि उनके लिए मुस्तकबिल में इज्जत व अजमत मुकद्दर है। यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डालने के बाद भाई शाम को रोते हुए घर वापस आए। उन्होंने वालिद से कहा, अब्बा जान हम दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ अलैहि सलाम को सामान के पास छोड़ दिया था, उसी दौरान भेड़िया आ गया और यूसुफ को खा गया। उन्होंने उनकी कमीज पर झूठा खून लगाकर दिखाया ताकि वालिद यकीन कर ले, लेकिन याकूब अलैहि सलाम फौरन समझ गए कि ये झूठ है। उन्होंने फरमाया, बल्कि तुम्हारे दिल ने ये काम तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, मगर सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद मांगी जाती है उस पर जो तुम बयान करते हो। यहां से याकूब अलैहि सलाम के सब्र किया याकूब अलैहि सलाम के सब्र का अजीम इम्तिहान शुरू हुआ। लिसनर्स, यहाँ हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107.
1: So listeners, welcome back. आप सुन रहे हैं द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स और आज हम बात कर रहे हैं हजरत याकूब अलैहि सलाम और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की. जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं में डाल दिए गए तो वो अंधेरे और तन्हाई में अल्लाह से दुआ करते रहे. कुछ ही दिनों बाद अल्लाह का वादा पूरा हुआ. एक काफला वहां से गुजरा. काफले वाले ने प्यास बुझाने के लिए पानी निकालने को डोल कुएं में डाला. जब डोल खींचा तो उसमें एक हसीन और जमील लड़का मौजूद था. वो हैरान रह गए और कहने लगे, क्या खुशखबरी है, ये तो एक लड़का है. लेकिन चूंकि वो गुलामों और कैदियों की खरीदो फरोख करने वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम को कीमती खजाना समझा और छुपाने की कोशिश की ताकि कोई और उन पे दावा ना करे. काफले ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को मिस्र ले जाकर बेचने का फैसला किया. मिस्र उस वक्त एक बड़ी तहजीब का मरकज था, जहां बाजार गुलामा में गुलाम और लौंडियां

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: तो लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स में आज हजरत याकूब अलैहि सलाम और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा। वक्त गुजरा, 7 साल खुशहाली के गुजरने के बाद वही कहत आया जिसकी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने पेशगोई की थी। इस कहत ने मिस्र के साथ साथ आस पास के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाई भी अल्लाह लेने के लिए मिस्र आए। वो यूसुफ अलैहि सलाम के सामने खड़े हुए लेकिन पहचान ना सके। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने उन्हें पहचान लिया, उन्होंने उनको गल्ला दिया और कहा अगली बार जब आओ तो अपने सबसे छोटे भाई को भी साथ लाना। ये भाई हजरत बिन यामिन थे जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के सगे भाई थे। भाई घर जाकर हजरत याकूब अलैहि सलाम को मनाने लगे कि बिन्यामिन को भी साथ जाने दें। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने बहुत सोच विचार के बाद शर्त रखी, अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि तुम उसे हर हाल में वापस लेकर आओगे। उन्होंने वादा किया और बिन्यामिन को साथ ले गए। जब भाई दोबारा मिस्र आए तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने उन्हें इज्जत से बिठाया, फिर खुफिया तौर पर एक तदबीर की। उन्होंने शाही पैमाना बिन्यामिन की खुराक के सामान में रख दिया। अब काफला चलने लगा तो ऐलान हुआ बादशाह का पैमाना गुम हो गया है, जिसके पास मिला उसे गुलाम बना लिया जाएगा। तलाशी ली गई और पैमाना बिन्यामिन के सामान से बरामद हुआ। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने बिन्यामिन को अपने पास रोक लिया। बाकी भाई हैरान रह गए और परेशान होकर वापस जाने लगे। जब भाई वापस पहुंचे और सारी हकीकत बयान की तो हजरत याकूब अलैहि सलाम बहुत गमगीन हो गए। उन्होंने फरमाया अच्छा अब सब्र ही बेहतर है, शायद अल्लाह इन सबको मेरे पास वापस ले आए। शदीद गम की वजह से हजरत याकूब अलैहि सलाम की आंखें सफेद हो गई थीं और वो नाबीना हो गए थे, मगर वो हमेशा अल्लाह पे भरोसा करते रहे। कहत की शिद्दत बढ़ गई। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने कहा जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। भाई मिस्र गए और यूसुफ अलैहि सलाम के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे ऐ अजीज मिस्र, हम और हमारे घर वाले सब मुसीबत में हैं, हमें गल्ला दे दो और सदका कर दो, अल्लाह सदका करने वालों को जजा देता है। ये मौका था जब यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने दिल का राज खोल दिया। उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे। भाई हैरान रह गए और बोले क्या आप ही यूसुफ हैं। यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर फजल किया, जो सबर करता है और तकबा इख्तियार करता है तो अल्लाह नेकुकारों

अजर जाया नहीं करता। भाइयों ने शर्मिंदा होकर कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत दी है और हम ही खताकार थे। यूसुफ अलैहि सलाम ने अजीम और शान जुमला कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को पहचान लिया और उनसे माफी मांगी तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी और फिर सबको मेरे पास ले आना। भाई कमीज लेकर रवाना हुए। उधर हजरत याकूब अलैहि सलाम जो बरसों से बेटे के गम में रोते रोते नाबीना हो गए थे, अचानक खुशबू सूंघकर कहने लगे, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, काश तुम लोग मुझे बूढ़ा बाप न समझो। जब भाई पहुंचे और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज चेहरे पर डाली तो फौरन बिनाई वापस आ गई। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटों से फरमाया, मैंने तुमसे कहा था कि अल्लाह के बारे में कभी नाउम्मीद ना होना। हजरत याकूब अलैहि सलाम और उनका सारा घराना मिस्र की तरफ रवाना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बेकरारी से वालिद और सब अहले खाना के मुंतजर थे। जब वो मिस्र पहुंचे तो एक अजीम और शान मुलाकात हुई। जब यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने वालदैन को अपने पास बिठाया और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ने चाहा तो अमन और सलामती के साथ। और जब उसने अपने वालदैन को तख्त पे बिठाया तो सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े। हजरत यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये है मेरे उस ख्वाब की ताबीर जो मैंने बरसों पहले देखी थी, मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया। ये वही ख्वाब था जो बचपन में हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सूरज और चांद उनके वालदैन थे और 11 सितारे उनके भाई थे। यूं अल्लाह ने बरसों बाद वो ख्वाब हकीकत बना दिया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने इस मौके पर नहायत आजी के साथ दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही मेरा कारसाज है दुनिया में और आखिरत में भी, मुझे इस्लाम पर मौत दे और मुझे नेक लोगों में शामिल कर। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने बाकी जिंदगी अपने बेटे यूसुफ अलैहि सलाम के साथ गुजारी। वो अल्लाह की इबादत और अपने बेटों की इस्लाम में लगे रहे। आखिरकार फलस्तीन वापस आकर वफात पाई और अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहि सलाम के पहलू में दफन हुए। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम मिस्र में ही मुकीम रहे और अल्लाह ने उन्हें इज्जत इख्तदार दिया। वो हमेशा अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करते रहे। बुढ़ापे में जब उनका वक्त करीब आया तो उन्होंने वसीयत की कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकलें तो उनका जस्त भी साथ लेकर जाएं। चनाचे बाद में हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में यह वसीयत पूरी की गई। लिसनर्स, तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है, लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलते हैं ये जानते हैं। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने बरसों जुदाई का सबर किया लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुए। नतीजा ये हुआ कि बेटे से मुलाकात हुई और बिनाई भी वापस आई। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने सुलेखा के फितने के वक्त अल्लाह की पनाह ली, यही पाकदामनी उनकी इज्जत और अजमत का सबब बनी। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाला गया, जब जेल में डाला गया, हर मौके पे उन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कुएं में डाला लेकिन आखिरकार उन्हें खुद झुकना पड़ा। हसद इंसान को गुनाह और जिल्लत में गिरा देता है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, हालांकि वो जब आसानी से इंतकाम ले सकते थे। ये आला इखलाक हमें भी सिखाता है कि दूसरों को माफ करना चाहिए। इंसान कुछ भी मंसूबा करे लेकिन अल्लाह की तकदीर और तदबीर ही खालिब आती है। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को खत्म करने का मंसूबा बनाया लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत और इक्तदार अता फरमाया। ये किस्सा कुरान का अहसनुल किसस कहलाता है क्योंकि इसमें सबर, तवक्कुल, पाकदामनी, माफी, हिकमत और अल्लाह की कुदरत के बेशुमार पहलू मौजूद हैं। ये कहानी ना सिर्फ ईमान को मजबूत करती है बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करती है। चलो, आज का शो आपने सुना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको

होगा। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पे @FM107 और 666-22107 हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लगा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं डेली लाइफ की छोटी हैबिट्स और उनके बड़े एनवायरमेंटल इफेक्ट के ऊपर। आज का टॉपिक है फास्ट फूड पैकेजिंग प्रॉब्लम के बारे में भाई, यानी के वो पैकेजिंग जो हम फास्ट फूड ऑर्डर करते वक्त यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉक्सेस हो गए, ये जो स्टायरोफोम होते हैं कंटेनर्स वो हो गए, पेपर कप्स हो गए, स्ट्रॉज और रैपर्स भी तो उसी में आते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं साथियों, लेकिन इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट

इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है भाई. देखिए फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट क्विक एंड इजी है, लेकिन पैकेजिंग का इशू लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम बन जाता है. साथियों जरा सोचिए, आपने एक बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है, ठीक है. देखिए मैं सिर्फ एक मील के साथ आपको मिलता है एक प्लास्टिक बॉक्स, एक पेपर रैपर, एक स्ट्रॉ, एक लेड और एक कप. मतलब 10 मिनट के खाने के लिए आप 10 मिनट में इतना वेस्ट जनरेट कर देते हैं जो एनवायरनमेंट में 200 साल तक से ज्यादा जिंदा रह सकता है. देखिए एक रिसर्च के मुताबिक ना दुनिया हर साल 300 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग का होता है भाई. फास्ट फूड पैकेजिंग इस वेस्ट का साइलेंट कंट्रीब्यूटर है साथियों. साथियों अब इसको जरा रियल लाइफ से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. जरा सोचिए, वीकेंड है, आप फैमिली के साथ मूवी देख रहे हैं और फास्ट फूड ऑर्डर भी कर लेते हैं. सब खाना खुशी खुशी खाते हैं, खाना तो फिनिश हो जाता है, उसके बाद टेबल पर एक छोटा सा प्लास्टिक का माउंटेन सा बन जाता है. यानी कि वो जो बर्गर बॉक्सेस थे, ड्रिंक्स एंड कप्स थे, फ्राइज की पैकेजिंग थी, केचप के जो सैशे थे वो भी, और हम सोचते हैं कि भाई इतने से वेस्ट से क्या ही होगा. लेकिन जरा सोचिए, अगर हर घर में हर हफ्ते ये रिपीट होता रहे तो एक सिटी का वेस्ट माउंटेन बन जाता है, लिटरली पहाड़ बन जाता है. सिर्फ एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर को डिग्रेड होने में आपको पता है कितने साल लगते हैं? 200 से 500 साल लगते हैं कम से कम. मतलब जो कंटेनर आज आप यूज कर रहे हैं वो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम तक जमीन में रह सकता है बहुत आराम से. अच्छा एक मजे की बात बताऊं, अब कुछ मजे के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करती हूं. और ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको शॉक भी कर देंगे और सोचने पर मजबूर भी कर देंगे. साथियों आपको पता है कि एक एवरेज से स्टेरोफॉर्म कंटेनर को बनाने में पेट्रोलियम यूज होता है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. दुनिया में हर मिनट लगभग आप कह लें कि 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स परचेज की जाती हैं बहुत आराम से, और उनमें से बहुत सी फूड पैकेजिंग से रिलेटेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं. आपको मैं याद दिलाती चलूं कि प्लास्टिक पैकेजिंग का सिर्फ 9% ही ग्लोबली रिसाइकल होता है, बाकी या तो फिर लैंडफिल में जाता है या हमारी इस एनवायरनमेंट में. और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ एवरेज सिर्फ 10 से 15 मिनट यूज होता है, लेकिन वो तकरीबन 200 साल तक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है. लेकिन फास्ट फूड पैकेजिंग सिर्फ वेस्ट नहीं क्रिएट करती बल्कि वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ और सॉइल को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है. जब प्लास्टिक समंदर में जाता है ना तो फिशेस, बर्ड्स ये इसे खाना समझकर कंज्यूम कर लेती हैं, जो उनकी डेथ का रीजन बन सकता है. सॉइल में प्लास्टिक मिक्स होने से लैंड फर्टिलिटी भी कम हो जाती है भाई, और कतर जैसे डेजर्ट के एनवायरमेंट में वेस्ट मैनेजमेंट और भी सेंसिटिव इशू बन जाता है क्योंकि नेचुरल डीकम्पोजिंग यहाँ स्लो होती है. अच्छा भाई अब आप पूछेंगे कि भाई इको स्विच का मतलब यहाँ क्या है, तो भाई इको स्विच का मतलब यहाँ ये है कि हम कन्वीनियंस को इलिमिनेट नहीं करते बल्कि उसे स्मार्टर बनाते हैं. देखिए भाई अगर हम फास्ट फूड पैकेजिंग के लिए स्मॉल चेंजेस करें तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेस्टोरेंट सिर्फ डाइन इन कस्टमर को रीयूज प्लेट्स ऑफर करता है तो उसका सिंगल यूज वेस्ट 50% से ज्यादा कम हो जाता है, और अगर कस्टमर्स अपनी रीयूजेबल कटलरी या बॉटल यूज करें तो प्लास्टिक डिपेंडेंसी ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है. देखिए भाई अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल इको स्विच टिप्स बता देती हूँ जो इंसान अगर फॉलो करे तो जिंदगी आसान हो जाती है भाई. पहला, जब भी पॉसिबल हो डाइन इन चूज करें इंस्टेड ऑफ टेक अवे, क्योंकि डाइन इन में रीयूजेबल डिशेस यूज होती हैं तो भाई वेस्ट कम होगा. दूसरा, अगर टेक अवे जरूरी हो तो रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करें कि भाई एक्स्ट्रा कटलरी और स्ट्रॉज वगैरह ना दें. तीसरा, अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल और कप्स कैरी करें स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स के लिए. चौथा, वेस्ट को सेपरेट करें, क्लीन पैकेजिंग को रिसाइकल बिन में डालें तो भाई उनका प्रोसेस भी इजी हो जाता है रिसाइकलिंग का. पांचवा, अवेयरनेस.

0: स्प्रेड करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं कि स्मॉल पैकेजिंग चेंजेस भी बिग एनवायरमेंटल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो भाई साथियों, यहाँ पर बिहेवियर शिफ्ट ये है कि लेस पैकेजिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इको स्विच सिर्फ वेस्ट कम करने का नाम नहीं है बल्कि माइंडसेट चेंज करने का नाम है। जब हम फास्ट फूड को कन्वीनियंस के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करते हैं ना, तब हम एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। हर बार जब आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ रीयूज करते हैं, आप एक छोटी सी विक्ट्री अचीव कर रहे होते हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है। तो साथियों, आखिर में सफा का इको स्विच मैसेज ये है कि फास्ट फूड का मजा तभी आता है जब उसका एनवायरमेंट प्राइस कम हो। एक छोटा सा डिसीजन जैसे स्ट्रॉ ना लेना या रीयूजेबल कप यूज करना एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। याद रखें, फास्ट फूड का नाम फास्ट फूड है लेकिन उसका वेस्ट स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगली बार जब आप बर्गर या फ्राइज ऑर्डर करें, एक इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। डू आई रियली नीड दिस एक्स्ट्रा पैकेजिंग और नॉट? तो भाई साथियों, ये था हमारा आज का इको स्विच सफा के साथ FM 107 पर, जहाँ हर छोटी चॉइस एक ग्रीन फ्यूचर बनाती है। मिलते हैं आपसे इको स्विच के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे गीबत से दूर रहने के बारे में। गीबत एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान के दिल को सख्त कर देती है। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद हमारे लिए भी नुकसान का सबब बनती है। जब हम किसी की गलतियों पर बात करते हैं तो हम अपनी खुद की इस्लाह से दूर हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी जबान की हिफाजत करें और सिर्फ वो बात करें जो फ़ायदेमंद हो। अक्सर महफिलों में गीबत एक कॉमन चीज़ बन जाती है, लेकिन हमें हिम्मत करनी चाहिए कि ऐसी बातों को खुद से अलग रखें। आज का अमल ये है कि अपनी बातों पर गौर करें और अगर कहीं गीबत हो रही हो तो टॉपिक चेंज करें या वहां से उठ जाएं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से

0: वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
1: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 पीएम लाइव ओनली ऑन एफएम 107। दिल से देसी।
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक को आपने उस वर्ड को आपने मैं कह सकती हूँ उस टर्म को आपने बहुत बार सुना है लेकिन शायद हमने इस टर्म पर संजीदगी से बात नहीं की है. आज हम बात करेंगे रिसाइकलिंग की यानी रिप्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल्स. देखिए आज के जमाने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम कचरा नहीं है बल्कि कचरे का सही इस्तेमाल है. रिसाइकिल का कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वेस्ट को एंड नहीं समझता बल्कि नई शुरुआत बनाता है. चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिसाइकिलिंग का मतलब क्या है. रिसाइकिलिंग का मतलब है वेस्ट चीजों को कलेक्ट करके सॉर्ट करके और प्रोसेस करके उनसे नए प्रोडक्ट्स बनाना. जैसे पेपर से नया पेपर, बॉटल से नई पैकेजिंग या फिर प्लास्टिक फाइबर. आप जानते ही हैं कि रीयूज्ड जो हमारी थिंग्स हैं उनका वापस से इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम कहीं ना कहीं अपने प्लैनेट को भी बचा रहे होते हैं. अगर पेपर का रीसाइकिल किया जाए पेपर को तो ट्री कटिंग्स जो हैं वो कम हो जाएंगी. प्लास्टिक बॉटल्स जो है रिसाइकिल होकर फाइबर या फिर नई बॉटल बन जाती हैं और उसका फायदा ये होता है कि जो लैंडफिल्स हैं जो आप देख ही रहे हैं कि इतने ज्यादा वेस्ट से भर रहे हैं वो कम हो जाएंगे. और आप ये भी जानते हैं कि लैंडफिल से मीथेन जैसी गैसेस निकलती हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को और ज्यादा गर्म करती हैं. इसीलिए रिसाइकलिंग से लैंडफिल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है. देखिए हम और आप बहुत सारी चीजें घर पे भी कर सकते हैं जैसे घर में वेस्ट को अलग कर लेना, पेपर्स अलग डस्टबिन में, प्लास्टिक अलग, ग्लास का वेस्ट अलग और मेटल का अलग. इस तरह से अगर हम करते हैं तो उससे हम कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू बी अ बेटर सिटीजन. फिर बात करेंगे रिसाइकलिंग की. गलत चीजें रिसाइकिल बिन में नहीं डालना, अवॉइड करना. पहले उन्हें क्लीन और सही आइटम ही रिसाइकिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए. वहीं पर रिसाइकलिंग कंटेंट वाली चीजें, ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो उन्हें ज्यादा से ज्यादा खरीदना ताकि मार्केट डिमांड उनकी और भी ज्यादा बढ़ जाए. तो कहीं ना कहीं आपको और हमको समझने की ये जरूरत है कि रिसाइकलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ महज एक कॉन्सेप्ट नहीं है. रिसाइकलिंग सिर्फ और सिर्फ बिन का नाम नहीं है, ये एक आदत है जो रिसोर्सेस बचाती है, पोल्यूशन कम करती है और फ्यूचर के लिए बेहतर प्लैनेट बनाती है. जब हम रिसाइकिल करते हैं हम अपनी छोटी से एक्शन से बड़ा एनवायरमेंटल चेंज को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं. इसीलिए रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है. आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, अरबी जबान की कहावत है, जो इंसान के एक आम रवैये की तस्वीर भी तर्रार व तशर्रत, यानी मांगने वाला और ऊपर से शर्तें भी लगा रहा है। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई मोहताज या साहिल आपसे मदद मांगे, जब उसे कुछ देते हैं तो उसे लेने में तरद्दुद करे या कहे ये कम है, ज्यादा चाहिए, मैं ये नहीं लूंगा, उसकी जगह वो दे दो, या शराइत तय करने लग जाए। गोया वो खुद तो मोहताज है मगर मुतालिबे उसके बड़े हैं। अरब इस रवैये को मजाकन और तंजन बयान करते हुए कहते हैं तर्रार व यश्तरित, यानी भिखारी और नखरे भी। हमारे यहाँ भी मशहूर मुहावरा है कि भिखारी के नखरे। गोया मांगने वाला शर्तें लगाए तो बहुत ताजुब की बात समझी जाती है। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपने हालत के मुताबिक गुफ्तगु, रवैया और तवक्कात रखनी चाहिए। जो मदद ले रहा हो उसमें शुक्रगुजारी होने चाहिए, न कि नखरे और मुतालिबे। इसीलिए अरब कहते हैं तर्रार व तशर्रत, भिखारी और ऊपर से शर्तें भी लगाता है।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

या किसी और मोड में। अगर आपको ये पैसा इंडिया के बाहर चाहिए हो तो आप बैंकिंग चैनल के जरिए इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में रिपेट्रिएशन के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप पैसा रिपेट्रिएट कर सकते हैं जो एनआरओ अकाउंट में है, लेकिन ये फ्रीली रिपेट्रिएबल नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। इस वजह से एनआरओ अकाउंट को नॉन रिपेट्रिएबल अकाउंट कहा जाता है, जबकि एनआरई अकाउंट को रिपेट्रिएबल अकाउंट कहा जाता है। होप क्लियर हुआ होगा।

कर सकते हैं किसी और एनआरई अकाउंट में, किसी बैंक अकाउंट में जो इंडिया के बाहर हो, मतलब आप पैसा फ्रीली रिपेट्रिएट कर सकते हैं अपने या किसी और के एनआरओ अकाउंट में, किसी और के सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंडिया में हो। ये सब चीजें एनआरई अकाउंट के जरिए पॉसिबल होती हैं। मगर अगर आपके पास एनआरओ अकाउंट है तो आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे, किसी और एनआरओ अकाउंट में, दूसरा पॉइंट किसी और के सेविंग बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट भी है और आप एनआरआई भी हैं तो ये फेमा लॉ के मुताबिक एक ऑफेंस है। फेमा लॉ FEMA, आप अपने खुद के SB अकाउंट से NRO अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही NRO अकाउंट से अपने SB अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप NRI हैं और ये अकाउंट लीगल तरीके से होल्ड कर रहे हैं। आप NRO अकाउंट का पैसा इंडिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको इन बैंक अकाउंट से मिलता है। अगर आपको एनआरई फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इंडिया में टैक्स फ्री होता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर ये एनआरई फिक्स डिपॉजिट है तो इंडिया में इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ये इंटरेस्ट उस मुल्क में टैक्सेबल हो सकता है जहाँ आप रह रहे हैं। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के टैक्सेशन रूल्स पर। एग्जाम्पल, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे हैं तो ये इंटरेस्ट यूएस में टैक्सेबल होगा लेकिन इंडिया में नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर आप कतर या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री में हैं जहां इनकम टैक्स नहीं होता तो ये इंटरेस्ट ना इंडिया में टैक्सेबल होगा ना आपकी कंट्री में। आपको अपने मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इंडिया से मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी कंट्री में टैक्सेबल है या नहीं। एनआरओ अकाउंट के केस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट मेंटेन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होता है चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हों। इस वजह से एनआरओ अकाउंट का पैसा कम टैक्स एफिशिएंट होता है और वहीं एनआरई अकाउंट का पैसा ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है सिर्फ इंडियन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये टैक्सेशन सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के लिए है। अगर आपने अपने एनआरई या एनआरओ अकाउंट के जरिए पैसा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में टैक्सेबल होती हैं, चाहे अकाउंट एनआरई हो या एनआरओ। टैक्स फ्री स्टेटस सिर्फ एनआरई अकाउंट के इंटरेस्ट पर अप्लाई होता है, और अगर आपका एफसीएनआर अकाउंट है तो उसका इंटरेस्ट भी इंडिया में टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आप जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का टेन्योर क्या है। अगर आप एनआरई या एनआरओ अकाउंट के जरिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो दोनों में टेन्योर का फर्क होता है। पहला पॉइंट, अगर आप एनआरई अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका मिनिमम टेन्योर 1 साल होगा और मैक्सिमम 10 साल तक हो सकता है। लेकिन अगर आप एनआरओ अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसका टेन्योर सिर्फ 1 हफ्ते से लेकर 10 साल तक हो सकता है। ये फर्क समझना जरूरी है जब आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की। कैसे TDS अप्लाई होता है पैसे पर जो आपके एनआरई और एनआरओ अकाउंट में रखे गए हैं। पहला पॉइंट, अगर आपका एनआरई अकाउंट है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई TDS अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट इंडिया में ऑलरेडी टैक्स फ्री है, इसलिए किसी को TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, अगर पैसा आपके एनआरओ अकाउंट में है, चाहे वो SB सेविंग बैंक अकाउंट हो या RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट हो या FD यानी फिक्स डिपॉजिट, तो TDS अप्लाई होता है। जब पैसा आपको पे किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड पर तो बैंक TDS डिडक्ट करता है। ये TDS हाईएस्ट रेट पर अप्लाई होता है जो तकरीबन 30% प्लस एप्लीकेबल सेस होता है। लेकिन एक रिलीफ भी है, आप DT

डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट चेक कर सकते हैं इंडिया और उस कंट्री के बीच जहां आप रह रहे हैं। अगर DTAA में कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं, तो आप अपने बैंक को रेफर कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं और फिर लोअर TDS रेट अप्लाई हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30% TDS का मतलब 30% टैक्स है। ये सही नहीं है। TDS सिर्फ एक डिडक्शन है। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का पता टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद चलता है। अगर आपका 30% TDS डिडक्ट हुआ है लेकिन आप उस साल टैक्स देने के लायबल नहीं हैं, तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। तो ये गलत फहमी मत रखिए कि अगर TDS डिडक्ट हो गया है तो आपको वो पैसा गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। आप रिफंड ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब इंटरऑपरेशन NRE और NRO अकाउंट के दरमियान ट्रांसफर के बारे में आपको बताता हूँ। आप NRE अकाउंट से पैसा NRO अकाउंट में फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर आप NRO अकाउंट से पैसा NRE अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये नॉर्मल कोर्स में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये मुमकिन है अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा, बैंक में कुछ फॉर्म्स फिल करने होंगे और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसके बाद ही आप NRO अकाउंट का पैसा NRE अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी मत रखिए कि NRO से NRE में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोसीजर है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों, आप NRE और NRO अकाउंट के अंडर इन टाइप्स के अकाउंट्स होल्ड कर सकते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट या RD अकाउंट, या फिक्स डिपॉजिट यानी FD अकाउंट। ये टाइप्स दोनों अकाउंट्स के लिए सेम है। NRE और NRO दोनों में आप इन अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। सामईन, वापस आने वाले NRIs के लिए ऑप्शन की बात करें तो अगर आप एक NRE अकाउंट होल्ड कर रहे हैं और आप इंडिया वापस आ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। आपको अपना NRE अकाउंट क्लोज करना होता है या उस अकाउंट का पैसा आप FCNR अकाउंट या RFC अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। RFC अकाउंट का मतलब है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये ऑप्शन सिर्फ NRE अकाउंट होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन अगर पैसा आपके NRO अकाउंट में है तो आप डायरेक्टली उस पैसे को RFC या FCNR अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस केस में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे जब आप अभी भी NRI हैं तो NRO अकाउंट का पैसा NRE अकाउंट में ट्रांसफर करें, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होते हैं। दूसरा, उसके बाद आप NRE अकाउंट से पैसा FCNR या RFC अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के मुताबिक। तो अगर आप वापस जा रहे हैं तो ये प्लानिंग जरूर करें ताकि आपका पैसा एफिशिएंटली मैनेज हो सके। तमीन, आइए अब जान लेते हैं कि आप अपने अकाउंट किस तरह होल्ड कर सकते हैं। आप अपना बैंक अकाउंट सिंगल अकाउंट के तौर पर होल्ड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आप ही ओनर होते हैं, या फिर आप ज्वाइंट अकाउंट भी होल्ड कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट के केस में अगर आपका NRE अकाउंट है तो आप ज्वाइंट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं किसी NRI, PIO या OCI के साथ। क्या आप रेसिडेंट इंडियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्ड कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अगर आप रेसिडेंट इंडियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्ड करते हैं तो अकाउंट का टाइप होगा फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, और रेसिडेंट अकाउंट होल्डर आपका इमीडिएट रिलेटिव होना चाहिए। आप किसी भी पर्सन के साथ ये अकाउंट होल्ड नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी इसलिए दी गई है ताकि अगर NRI का इंतकाल हो जाए तो वो पैसा सीमलेसली उसके रिलेटिव को ट्रांसफर हो जाए। इमीडिएट रिलेटिव में शामिल हो सकते हैं कौन कौन? वाइफ, फादर, मदर, सन, डॉटर, सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ। आप इन रिलेटिव्स के साथ NRE या NRO अकाउंट जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट जानिए, सिर्फ NRI ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, रेसिडेंट रिलेटिव अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। ये सेम रूल दोनों अकाउंट्स यानी NRE और NRO पर भी अप्लाई होता है। दोस्तों, एक और सवाल जो अमूमन जहन में आता है कि अकाउंट किस करेंसी में होल्ड किया जा सकता है, तो ये जानिए कि NRO अकाउंट के केस में आप सिर्फ इंडियन रुपीस में ही अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। इस अकाउंट में फॉरेन करेंसी का ऑप्शन नहीं होता। NRE अकाउंट के केस में आपका अकाउंट इंडियन रुपी में भी हो सकता है, जो कॉमनली NRE अकाउंट के नाम से जाना जाता है। आप अपना NRE अकाउंट फॉरेन करेंसी में भी होल्ड कर सकते हैं।

FCNR अकाउंट कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। FCNR अकाउंट के जरिए आप अपनी पसंद की फॉरेन करेंसी में पैसा रख सकते हैं, जैसे कतरी रियाल, US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, सिंगापुर डॉलर, UAE दिरहम, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, हांगकांग डॉलर वगैरह, या कोई भी करेंसी जो आपके बैंकर के जरिए अवेलेबल हो। तो NRE अकाउंट के दो मोड्स होते हैं, रूपी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट यानी FCNR। दोस्तों अब बताता हूँ आपको कि वो कौन से क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं जो एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के लिए हैं। एनआरई अकाउंट के साथ आपको डेबिट कार्ड मिलता है जो आप इंडिया में भी यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आपके पास एनआरई डेबिट कार्ड है तो आप इंडिया के बाहर भी फ्रीली यूज कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट के केस में डेबिट कार्ड सिर्फ इंडिया में यूज हो सकता है। ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड होता है, इंटरनेशनल यूसेज अलाउड नहीं होती। क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड बैंक की डिस्क्रिशन पर होता है। आपको ट्रू क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, मतलब जिसमें आप पहले स्पेंड करें और बाद में पे करें। अगर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो सिक्योर्ड होता है, यानी आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट पैसा रखना पड़ता है। आपको पैसा रेमिट करना होता है और बैंक उसको सिक्योरिटी के तौर पर होल्ड करता है। आखिर में उसके बाद बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकता है। दोस्तों हम जानते हैं कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट में पैसा कैसे रिसीव कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट के केस में आप पैसा इंडिया के बाहर से रेमिट कर सकते हैं। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं किसी और एनआरआई के एनआरई अकाउंट से। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स के तौर पर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट एनआरई अकाउंट से किया हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मिल रहा है और आप चाहते हैं कि वो एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हो, तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपने ये इन्वेस्टमेंट एनआरई अकाउंट से किया था। इंस्टीट्यूट को सर्टिफिकेट देना होता है कि पैसा एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। सिर्फ चेक लेने से पैसा एनआरई अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कंफर्मेशन जरूरी होती है। एनआरओ अकाउंट के केस में आप पैसा इंडिया के बाहर से रेमिट कर सकते हैं। आप पैसा एनआरई अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं किसी और एनआरओ अकाउंट से। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं किसी और के सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंडिया में हो। आप पैसा रिसीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स के तौर पर, अगर आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हो और आपकी इंडिया की इनकम जैसे रेंटल्स, डिविडेंड्स या कोई और इनकम सिर्फ एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट हो सकती है। तो दोस्तों प्रोग्राम के इस आखिरी मरहले में हर एनआरआई के लिए एक जरूरी मशवरा। चाहे आप कितने भी साल से इंडिया के बाहर रह रहे हो, हर साल के एंड पर एक जरूरी काम जरूर करें। अपने पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट निकालें, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में सेव तरीके से मेंटेन करें। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन के लिए जरूरी होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए। अगर आपने एनआरई अकाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो जब आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलेंगी तो इंस्टीट्यूट आपसे प्रूफ मांगेगा कि पैसा एनआरई अकाउंट से दिया गया था। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होती हैं, 10, 15, 20 या 30 साल बाद मैच्योर होती हैं। उस वक्त अगर आप बैंक से स्टेटमेंट मांगेंगे तो रिट्रीव करना मुश्किल हो सकता है। बैंक ने डेटा आर्काइव कर दिया होगा और टाइम लग सकता है उसको वापस लेने में। इसलिए हर साल अपना एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड करें और उसको मेल फोल्डर या किसी सिक्योर जगह पर रख लें। दूसरा, इनकम टैक्स के लिए। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है, आपने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो भाई ऐसे केसेस में अगर आपके पास एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे तो आप इजीली प्रूफ दे सकते हैं। तो जब तक आप एनआरआई हैं, हर साल अपने एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट के पूरे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। ये फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों चलते चलते एक छोटी सी रिकैप करते हैं। पहला, एनआरई अकाउंट फॉरेन अर्निंग फ्रीली रिपेटरेबल और इंडिया में टैक्स फ्री होता है। दूसरा, एनआरओ अकाउंट इंडियन अर्निंग्स लिमिटेड रिपेट्रिएशन और इंडिया में टैक्सेबल होता है। और तीसरा, एफसीएनआर अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जो फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है। इसका इंटरेस्ट भी इंडिया में टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों
सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se Desi. Dil se Desi.
4: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
5: हम भी वो हैं जो कभी

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा

0: धक्का दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: यार अगर टिकट ले लिया आपने तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टिकट नहीं लिए तो रुक जाओ, सब्र कर लो, मैं आपको बता दूं, अगर टिकट नहीं लिया है तो थोड़ा सोच लो, उसके बाद टिकट लेना।

0: is Welcome to the Jungle.
1: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
2: एक जबरदस्त कहानी है.
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल.
0: ये कौन सी मूवी है? वेलकम टू द जंगल. वेलकम टू सुनी थी. एक्चुअली ये वेलकम ही, वेलकम टू द जंगल ये मूवी जो है वेलकम का सीक्वल कह सकते हैं. कुछ यूनिकनेस इसमें जो है दी गई है, और ये एक्चुअली तीसरा पार्ट है. आप वेलकम

0: सबसे पहले मूड के बारे में बात कर लें. फिल्म खत्म होने के बाद जो ऑडियंस है उसका मूड है बहुत ज्यादा मिक्स और कंफ्यूजिंग मूड है लोगों का. पहला हाफ देखकर आपका मूड एकदम फ्रेश और हैप्पी हो जाता है क्योंकि स्क्रीन पर नॉन स्टॉप कॉमेडी है, फनी डायलॉग्स हैं और पुराने बॉलीवुड एक्टर्स का मजाक चल रहा होता है. लेकिन इंटरवल के बाद जैसे ही पूरी कास्ट जंगल के अंदर एंटर करती है फिल्म का पूरा मूड अचानक चेंज हो जाता है. कॉमेडी गायब हो जाती है और उसकी जगह बहुत ही स्ट्रेस्ड एक्शन सीक्वेंसेस और ओवर द टॉप पैट्रियोटिक इमोशनल सीन्स ले लेता है. तो यहाँ पर फिल्म जो है वो थोड़ी सी छूटती हुई सी लगती है. लेकिन अगर आप फिल्म के दीवाने हैं, अगर आप एक्टर्स के दीवाने हैं, तो एक्टर्स के ऊपर जो जोक मारा गया है फिल्म में उसके आप फैन हो जाएंगे. शुरुआत में आपको मजा आ जाएगा, आप सोचेंगे यार ये इस तरह की भी कॉमेडी होने लग गई है.
1: तो पैसों की बात कौन करेगा, बताइए कैसा दिया.
2: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या.
0: स्टार्स जो रहे हैं उनके ऊपर, उनके मूवी के ऊपर बड़ा कॉमेडी सीन है. अभी आगे मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा. तो दोस्तों ये जब फिल्म सेकंड हाफ में पहुंचती है, जब जंगल में पहुंच जाते हैं पूरे स्टार कास्ट, तो अचानक बदलाव की वजह से ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी बोर और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगती है. जो लोग दिमाग घर छोड़कर सिर्फ हंसने आए थे उन्हें भी सेकंड हाफ में घटिया VFX, गोरिल्ला और बिना सर पैर की कहानी देखकर थोड़ा सा सरदर्द होने लगता, मूड खराब होने लगता है. फाइनल फ्रेम तक पहुंचते पहुंचते मजा थोड़ा फीका पड़ जाता है. ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ज्यादा हंसाती भी और साथ ही साथ अपने लंबे रन टाइम यानी कि 164 मिनट की ये मूवी है उसकी वजह से थोड़ा थका भी देती है. आप ऐसे होता है ना कि बैठे बैठे आपका दिमाग खराब हो जाता है. अच्छा खास तौर पे अब जब कतर में इस मूवी को देखेंगे तो यहाँ तो वो वाला सीन भी नहीं है ना कि आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा और फिर मूवी शुरू हो रही.

0: बोर और ज्यादा बोर इंसान होने लगता है. लेकिन अगर बीच में, जैसे इंडिया में होता है, बीच में मूवी रोक दी जाती है, फिर लोग खाना पीना करने अपना जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मूवी देखते हैं, तो वो बना रहता है माहौल. लेकिन उसमें भी अगर मूवी खराब है तो ज्यादा ही मूड खराब हो जाता है, कि तो बैठना भी है इतना लंबा 164 मिनट, और ऊपर से मूवी भी इतनी अच्छी नहीं है. तो ओवरऑल थिएटर से निकलते वक्त आपका मूड पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होता है इस मूवी को देखने के बाद, बल्कि आप सोचते हैं कि काश डायरेक्टर ने सेकंड हाफ को भी पहले हाफ जितना ही फनी या शॉर्ट रखा होता तो मजा आया.
1: वो जो छपरी ने किया ना, वो अपने को भी करने का है.
2: ये
0: अच्छा, इस मूवी के हाइप के बारे में बात कर लेते हैं. लोगों की उम्मीदें क्या थी इस मूवी से? दोस्तों, इस फिल्म की हाइप रिलीज से पहले बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर थी. इसका सबसे बड़ा रीजन था इसका मेगा स्टार कास्ट अनाउंसमेंट प्रोमो, जिसमें अक्षय कुमार थे, सुनील शेट्टी थे, अर्शद वारसी थे, संजय दत्त जैसे 30 से ज्यादा

0: बॉलीवुड स्टार्स एक साथ आर्मी यूनिफॉर्म में गा रहे थे।
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
0: फैंस को लगा था कि ये मूवी पुरानी वेलकम 2007 और वेलकम बैक 2015 का आइकॉनिक क्रेज जो है वो वापस लेकर आएगी। ऊपर से नीरज वोरा का लिखा हुआ पुराना स्क्रिप्ट और अक्षय कुमार की कॉमिक रोल

0: ये बात बात में झगड़ा क्या करते हो यार?
1: ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है।
0: मेंढक को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर, हाँ तो तू रिक्शा कर जा।
2: थिएटर के बाहर एडवांस बुकिंग्स का माहौल बहुत स्ट्रॉन्ग और लोग एक ब्लॉकबस्टर स्लैपस्टिक कॉमेडी की उम्मीद कर रहे थे। अच्छा मुझे लगता है देखिए अक्षय कुमार वापस तो आए हैं, लेकिन 2007 के अक्षय कुमार और 2026 के अक्षय कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? 2007 में वेलकम में अक्षय कुमार मासूम रोल में थे, उनका चेहरा, उनकी मासूमियत, उनकी टाइमिंग वो बहुत अच्छी थी। लेकिन 2026 में वो ज़्यादा ही चिल या कहें बहुत ही आउटस्पोकन हो गए हैं ऑन स्क्रीन, है ना। जिस तरह से वो अपने डायलॉग बोलते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग, फनी, बेहतरीन टाइमिंग है, बट वो मासूमियत रह गई है। और जो उनका बोलने का, डायलॉग डिलीवरी का तरीका है, वो मासूमियत पर उस तरह से आता नहीं है। तो अब वेलकम वाला जो सीन था, जो स्क्रिप्ट थी, और फिर अब 2026 की जो स्क्रिप्ट है उसमें आप बराबरी करेंगे तो वो बात नहीं आती है। उसके अलावा जब फिल्म स्क्रीन पर आई तो ये पूरी तरह से उस ह्यूज हाइप को जस्टिफाई नहीं कर पाई। हद से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से पूरी फिल्म बिखरी हुई लगती है। अब देखिए ये भी एक बड़ा रीज़न है कि ज़्यादा बड़े एक्टर्स रहेंगे तो सब पर दिमाग ना डाइवर्ट होता रहता, सबके एक्टिंग पर दिमाग जो है डाइवर्ट होता रहता, और ये इस मूवी के साथ प्रॉब्लम हुई। जितनी उम्मीद आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे कि उदय मजनू भाई के लेगेसी से थी, वो मज़ा थोड़ा कम रहा।
3: ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
2: सोशल मीडिया और बाकी जगह पे पब्लिक डिस्कशन से साफ पता चलता है कि फिल्म ने शुरुआत तो धमाकेदार हाइप के साथ की थी, लेकिन खराब एग्जीक्यूशन की वजह से ये सिर्फ एक एवरेज वन टाइम वॉच बनकर रह गई। हाइप बहुत ज्यादा ऊंची थी लेकिन फिल्म का फाइनल आउटपुट थोड़ा ओवरवेलमिंग रहा। ऑल्दो अगर आप ये मूवी देखने जाएंगे तो मे बी द पॉसिबिलिटी इज कि आपको ये मूवी अच्छी लगे, लेकिन क्रिटिक्स का, बाकी लोगों का जो मूवी को देखते हैं प्योर नॉट एंटरटेनमेंट बट एज अ क्रिटिक्स एज वेल, तो उनका ये कहना है कि फिल्म की जो रेटिंग है उसे 5 में से 3 मिलेगा। और मैं उम्मीद कर रहा था कि जब ये मूवी रिलीज होगी हाइप के अकॉर्डिंग इसे आराम से 4 या 4.5 मिल जाएगा, लेकिन इस मूवी को रेटिंग मिली है 5 में से 3। ये एवरेज रेटिंग कहलाती है। ये रेटिंग पूरी तरह से फिल्म के दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर सिर्फ पहले हाफ की बात करें तो आराम से 4 स्टार्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि अक्षय की विंटेज कॉमिक टाइमिंग, जॉनी लीवर का अचानक आवाज खो देना वाला फन, और परेश रावल, राजपाल यादव की जो पागल बनती है वो बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है। फर्स्ट हाफ का मेटा कॉमेडी कॉन्सेप्ट, जहां एक फ्लॉप फिल्म बनाने की साजिश होती है, बहुत फ्रेश और यूनिक लगता है ये सब। लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ इस रेटिंग को नीचे गिराकर 2 स्टार पर ला देता है। एक तो CGI इफेक्ट अच्छा नहीं है, बिना किसी लॉजिक के चलने वाली एक्शन चेस सीन्स हैं, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडेज जैसे लीड्स के विस्टेड रोल्स फिल्म के स्टैंडर्ड को डाउन करते हैं। इसलिए दोनों हाफ्स को बैलेंस करते हुए ये फिल्म एग्जैक्ट 3 स्टार पर आकर रुकती है। ये रेटिंग बताती है कि फिल्म बिल्कुल ख़राब या फ्लॉप नहीं है, बल्कि ठीक ठाक मसाला पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट है। एक बार आप देख सकते हैं, अगर आप बिना दिमाग लाए दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये 3 स्टार राइड आपके लिए एक बार देखने लायक जरूर है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, आप अपनी मर्जी से इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अगर आप ट्रेलर को देखेंगे ना, क्योंकि आजकल ट्रेलर ऐसा बनाया जा रहा है कि ऐसा लगता है यार क्या बोम्बास्टिक मूवी आएगी बाबा, कुछ डायलॉग तो बड़े ही लाजवाब है। अच्छा ट्रेलर का कुछ हिस्सा है वो सुनिए।
3: पहले टॉप का हीरो था, अब ड्रॉप का हीरो।
4: रोलिंग तो पैसों की बात कौन करेगा, बताइए कैसा दिया।
3: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
5: ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा?
6: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
7: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देखा।

फिल्म के सेट पर हर रोज का काम संभालना किसी मेला लगाने जैसा था भाई। एक नॉर्मल शूटिंग डे पर सेट पर एक साथ 34 मेन एक्टर्स, 50 वैनिटी वैंस, मतलब ये पहली बार एक तरह से माना जा सकता है, 50 वैनिटी वैंस, 250 गाड़ियां और तकरीबन 900 लोग मौजूद होते थे। डायरेक्टर अहमद खान ने खुद बताया कि इस फिल्म की शूटिंग मैनेज करना रोजाना एक मैसिव म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने जैसा मुश्किल काम था। और यू नो इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करना फिर भी आसान है, लेकिन इनके लिए गाड़ियां और उनकी पार्किंग, ये एक और जरूरत से ज्यादा बड़ा काम था जो रोज इनके

के फ्रेम में उन्होंने 30 से ज्यादा मेन बॉलीवुड स्टार्स और 500 से ज्यादा बैकग्राउंड डांसर्स को एक साथ एक ही स्क्रीन पर डांस करवाया, जो बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राउड डांस नंबर्स में से एक है। वो गाना कौन सा है? ये

0: उसके अलावा एक और फन फैक्ट है इस मूवी के बारे में, विच इज जो बड़े स्टार्स हैं उन्होंने अपनी फीस जो है वो छोड़ दी है फिल्म की शूटिंग के दौरान। बीच में कुछ बड़े बजटिंग इश्यूज और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे जिसकी वजह से फिल्म रोकने की नौबत आ गई थी। ऐसे में लीड एक्टर्स जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी ने दोस्ती निभाई और प्रोडक्शन की मदद करने के लिए अपनी स्टैंडर्ड फ्रंट फीस लेने से मना कर दिया ताकि फिल्म का थिएट्रिकल काम बिना किसी रुकावट के स्मूथली पूरा हो सके। तो देखो ये दिल के तो अच्छे हैं, ये तो बात पता चल गई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर विजन, कि डायरेक्टर का विजन क्या था इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं भाई, सिर्फ मूवी बनाना थोड़ा ही होता है, डायरेक्टर का अपना विजन होता है। अच्छा, यूनिकनेस इस मूवी में आपको जरूर मिलेगी, ये तो गारंटीड है। क्या यूनिकनेस है डायरेक्टर विजन में, सबसे पहले उसके बारे में डिसाइड कर लेते हैं। कॉम्बैट और कॉमेडी का कॉन्ट्रास्ट। डायरेक्टर अहमद खान का मेन विजन ये था कि वो एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन पर दिखाएं। उन्होंने बताया कि अगर आप इस फिल्म को बिल्कुल म्यूट करके देखेंगे तो ये आपको एक बहुत ही सीरियस ग्रिटी कॉम्बैट और मिलिट्री एक्शन मूवी लगेगी, जहां एक्टर्स ने आर्मी गियर पहने हैं और हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम ऑन करेंगे ये बिल्कुल एक पागलपंती वाली सटायर और मेटा नॉनसेंस कॉमेडी में बदल जाती है। कोई ईगो क्लैशेस नहीं, इतनी बड़ी मल्टी जनरेशनल स्टार कास्ट को एक साथ हैंडल करना आसान नहीं था, लेकिन अहमद खान का कोरियोग्राफर बैकग्राउंड उनके बहुत काम आया। उनको बड़े ग्रुप्स और क्राउड्स को मैनेज करने की आदत थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी एक्टर के ईगो क्लैश के पूरी फिल्म शूट कर ली। उनका मकसद सिर्फ सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स थिएटर के लिए एक बहुत ही लाउड हाई एनर्जी सिनेमा एक्सपीरियंस बनाना था ताकि लोग बड़े पर्दे पर हंसें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। वेल, इस मूवी को सिर्फ इसलिए आई गेस देखना चाहिए कि इसमें स्टार बहुत हैं और पहला हाफ अच्छा है, ठीक है। एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में, जिसमें 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स बॉलीवुड हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल्मिंग लोकेशन।

0: लोकेशन क्या है। सबसे पहले मुंबई का नकली जंगल, फिल्म का नाम वेलकम टू द जंगल है, इसलिए डेंस जंगल का माहौल दिखाने के लिए मुंबई में एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया। प्रोडक्शन डिजाइनर शैलेश महादिक ने 9 एकड़ की जमीन को कन्वर्ट करके एक आर्टिफिशियल घना जंगल बनाया। ये शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी, रॉयल पाम्स, बोरीवली नेशनल पार्क और एरे कॉलोनी के अलग अलग हिस्सों में शूट की गई है। उसके अलावा एक और कुछ लोकेशंस हैं बड़ी खूबसूरत, जैसे कि कश्मीर और यूएई के स्केड्यूल्स भी हैं। मुंबई के आर्टिफिशियल फॉरेस्ट साउंड स्टेजेस के अलावा फिल्म की शुरुआत की शूटिंग कश्मीर की हसीन वादियों में हुई है। भाई आप जब देखेंगे ना, फिल्म की शुरुआत जब होगी तब आप देखिएगा क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। उसके बाद पूरी जो कास्ट और क्रू है वो 15 दिनों के एक बड़े इंटरनेशनल स्केड्यूल के लिए यूएई चले गए। वहाँ उन्होंने हाई ऑक्टेन चेज सीन और बड़े गाने जैसे कि अबू धाबी में, दुबई में, रास अल खैमा में प्रीमियम लोकेशन पर शूट किए। तो वहाँ पर भी काफ़ी लंबा जो है काम रहा है, काफ़ी लंबे वक्त तक रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन, लुक्स या चेंजिंग क्या है। वैसे बहुत कोई यूनिकनेस नहीं थी इस मूवी के कैरेक्टर को लेकर, लेकिन अक्षय कुमार का जो भोजपुरी लुक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में अपने रेगुलर क्लासी और सोफेस्टिकेटेड लुक को छोड़कर एक बिल्कुल अलग अवतार अपनाया। वो फिल्म में एक लार्जर देन लाइफ और लाउड भोजपुरी फिल्म स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहीं से पता चल जाता है कि इस फिल्म में काफ़ी यूनिकनेस, फनी चीज़ें होंगी, फनी एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा स्क्रिप्ट अच्छी ऑटोमेटिक हो जाएगी और फिर अक्षय कुमार हैं तो उनकी जो डिलीवरी है वो लाजवाब हो ही जाती है। अक्षय के इस लुक के लिए उन्होंने बहुत ही चमकीले और वाइब्रेंट कपड़े पहने हैं, जो कि ऑब्वियसली ज़रूरी था, और लोकलाइज्ड भोजपुरी डायलेक्ट सीखी है, बोलचाल सीखी, और उन पर एक अजीब सॉन्ग घिस घिस घिस भी शूट किया गया है। तो ये भी एक यूनिक बात तो हो ही जाएगी भाई साहब। अच्छा, अक्षय के कुछ सीन्स यहाँ पर हम जरा देखते हैं, अक्षय के कुछ डायलॉग्स जो है वो हम देख लेते हैं, ट्रेलर से हमें क्या कुछ मिला है वो सुन।
1: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं।
2: वो कांता भाई, फटके मारने ना तो जमीन पे मार इधर।
1: तो वैसे तो तेरा थोबड़ा भी गंदा है, उसे लगाऊं क्या?
0: अब जब अक्षय की बात होगी तो यार इस तरह के डायलॉग तो देखो होंगे, और उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे नहीं लगता उनकी जैसे डायलॉग डिलीवरी अभी किसी की भी है बॉलीवुड में अगर हम देखें तो। उसके अलावा जैकलीन के बारे में बात कर लें, उनका होना कोई ऐसा खास रीज़न नहीं था, वो ट्रेलर में ही कहा जा रहा है कि मैं किस लिए हूँ, आपका काम बस कोई खास काम नहीं है, बस आपका होना ज़रूरी है मूवी में। ये डायलॉग भी आप ट्रेलर में भी देखेंगे उसमें भी कहा गया। जैकलीन फर्नांडिस ने इस मूवी के लिए एक बहुत ही बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, उन्होंने अपने बालों को पूरी तरह बदल कर एक पेरिस हिल्टन स्टाइल ब्लॉन्ड लुक अपना लिया है, बहुत ही क्रिएटिव। ये क्रिएटिव आइडिया खुद डायरेक्टर अहमद खान और अक्षय कुमार का था, ताकि उनका कैरेक्टर बाकी कास्ट से बिल्कुल अलग और थोड़ा केओटिक कॉमेडी वाइब्स देने वाला लगे। तो ऐसा तो कोई यूनिक नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि भाई एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन तो करना पड़ेगा कुछ। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में हम बात करें तो वाइड एंगल फ्रेमिंग जो है इस पूरे मूवी में रखी गई है, क्योंकि एक एक सीन में 20 से 30 एक्टर्स मौजूद होते थे, इसलिए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी कि सिनेमाटोग्राफर ने बहुत ज़्यादा वाइड एंगल लेंसेज का इस्तेमाल किया। कोशिश ये थी कि एक ही स्प्रॉलिंग ग्रुप फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स और उनके एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया जा सके। ये स्केल देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक्शन सीन्स में फ्रेम बहुत ज़्यादा मैसी और बिखरा हुआ लगने लगता है। फिर उसके बाद ये भी है ना कि एक ही स्क्रीन में आप इतने एक्टर्स देखेंगे तो आपका मन है कितने एक्टर्स को आप देखेंगे, तो आप किसी एक को नोटिस ही नहीं कर पाएंगे, उनके एक्सप्रेशंस को, उनके डायलॉग्स को नोटिस नहीं कर पाएंगे। एक फ्रेम में आपके पास 100 कार हो या आप कहीं कार देखने जाएं, आपको 100 कार दिखा दी जाए, आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन सी लूँ, है ये तो 4x4 है लेकिन इसका इंटीरियर अच्छा नहीं है, यार इसका इंटीरियर अच्छा है लेकिन 4x4 नहीं है, यार इसका इंटीरियर अच्छा है लेकिन ये गाड़ी में वो पावरफुल नहीं है, यार इसके जो रेटिंग्स हैं वो अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद यार इसका इंटीरियर और आउटसाइड दोनों अच्छा लेकिन इसकी पेंट के बड़े मसले आते हैं। तो इतने ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे तो फिर आपका मन डगमगा जाएगा, इतने ऑप्शन देने नहीं चाहिए। तो ये एक मसला रहा है। उसके अलावा जो लाउड और स्लैपस्टिक साउंड मिक्स है वो भी इस मूवी की यूनिकनेस रही है। फिल्म का साउंड डिज़ाइन पूरी तरह से 2000s की अर्ली कमर्शियल मसाला मूवीज जैसा है। इसमें बहुत ज़्यादा लाउड स्लैपस्टिक ऑडियो क्यूज, बैकग्राउंड पंच साउंड्स और बॉम्बास्टिक म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट है और बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड रखा गया है ताकि थिएटर

थिएटर में बैठे लोग हाई डेसिबल एनर्जी फील कर सकें। हालांकि कुछ सीन्स में ये जो तेज आवाज है ना, ये कान में चुभती हुई सी लगती है, आपको इरिटेट करती है। तो ये सारी चीजें हैं, ऑल दो हमने सारी चीजें कवर कर ली इस सीन में, सिनेमाटोग्राफी, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्मिंग का लोकेशन, डायरेक्टर का विजन एंड कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने बात करी कि भाई इतने सारे स्टार्स आते थे, उनको मैनेज करना मुश्किल था, उससे बड़ा काम था उनकी कार को पार्क कहाँ किया जाए। इतने ज्यादा तो लोग थे, वैनिटी वैन 30 से ज्यादा, फिर गाड़ियां इतनी ज्यादा, 900 लोग एक बार में एक जगह पे होना तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस मूवी का प्लॉट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। एक तो फ्लॉप फिल्म का प्लान, सबसे बड़ा प्लॉट, एक बहुत अमीर और करप्ट कॉरपोरेट बिजनेसमैन है जिसका नाम है सिन्हा। उसे पता चलता है कि उस पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड पड़ने वाली है। अपना काला धन यानी कि ब्लैक मनी लीगल तरीके से छुपाने के लिए वो एक अजीब और खुराफात प्लान बनाता है। और फिर सबसे बुरा क्रू, सिन्हा एक बिल्कुल बेकार और अजीब या घटिया फिल्म बनाने का फैसला करता है ताकि 2000 करोड़ का बिजनेस लॉस दिखाकर अपना सारा टैक्स बचा सके। इस बेकार फ्लॉप मूवी को बनाने के लिए वो दो सबसे यूजलेस डायरेक्टर्स जैसे कि परेश रावल और राजपाल यादव और एक वॉस्ड अप फ्लोर एक्टर यानी कि अक्षय कुमार को हायर करते हैं। ये फिल्म की बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये असलियत में नहीं। उसके बाद जो आगे की प्लॉट लाइन है वो है असली डेंजर। जैसे कि फिल्म की शूटिंग के लिए ये पूरी क्लूलेस पलटन एक जंगल के पास वाले रिमोट विलेज में चली जाती है। वहां अचानक कुछ असली डेंजरस लोग जो हैं वो आ जाते हैं आर्म्ड। तो ये फिल्म में जो फिल्म बन रही है उनके जो एक्टर्स हैं वो वहां के बवाल करने वाले लोगों को असल में जूनियर आर्टिस्ट समझ लेते हैं, उन्हें डोमिनेट करने लगते हैं और मासूम गांव वाले इन एक्टर्स को असली इंडियन आर्मी समझ बैठते हैं। बस यहीं से असली हंगामा शुरू होता है। ये सेकंड हाफ का सीन है, ऑल्दो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट कई लोगों को पसंद भी आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के बारे में जो राजीव कोहली है। अक्षय कुमार इस फिल्म के सबसे बड़े एंकर और जान है। उन्होंने बहुत सालों बाद ऐसी जबरदस्त विंटेज कॉमिक टाइमिंग दिखाई। उनकी फिजिकल कॉमेडी और अपने हाई रियल लाइफ करियर चॉइसेस पर मजाक उड़ाने वाले सेल्फ अवेयर मेटा जोक्स ऑडियंस को बहुत ज्यादा हंसाते हैं। कई मूवीज बीच में उनकी फ्लॉप गई हैं, तो उस फ्लॉप मूवीज का इस मूवी में बहुत ज्यादा मजाक उड़ा है, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जॉनी लीवर के बारे में बात कर लेते हैं दुबे जी। जॉनी लीवर ने फिल्म के सबसे बेस्ट और ओरिजिनल कॉमेडी सीन्स दिए हैं। फिल्म में उनका एक रनिंग गैग है जहां वो ज्यादा एक्साइट या स्केयर होने पर अपनी आवाज बिल्कुल खो देते हैं और अजीब इशारे करते हैं जो देखने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। ये भी एक यूनिक चीज है ना। सुनील शेट्टी और अर्शद वारसी के बारे में बात करें तो ये दोनों पुराने वेलकम फिल्म के यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और उदय मजनू के भाई बने हैं। इन दोनों की आपसी नोकझोंक, डायलॉग्स, नॉस्टैल्जिक केमिस्ट्री देखकर पुरानी वेलकम वाले जो दिन हैं वो याद आ जाते हैं। परेश रावल और राजपाल ने भी बम्बलिंग डायरेक्टर्स के रूप में बहुत एनर्जी डाली है। क्योंकि फिल्म में 30 से ज्यादा बड़े एक्टर्स हैं इसलिए कृष्णा अभिषेक, श्रेयस तलपड़े और यशपाल शर्मा जैसे ब्रिलियंट कॉमेडी स्टार्स को कुछ खास करने का मौका नहीं मिला। वो बस क्राउड बढ़ाने के लिए पीछे खड़े नजर आते हैं। लीडिंग लेडीज का रोल दिशा पाटनी, जैकलीन के पास एक्टिंग के नाम पर जीरो कंटेंट था। दिशा का तो पहले हाफ में कोई ढंग का डायलॉग भी नहीं था और जैकलीन को बस पेरिस हिल्टन जैसा ब्लॉन्ड लुक देकर स्क्रीन पर ग्लैमर ऐड करने के लिए रखा गया है। ये खुद बात कही भी है, मतलब फिल्म में कि मैं किस लिए हूं तो बताया गया इसलिए आप। तो ये ओवरऑल कुछ चीजें हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिक्स के, क्रिटिक्स का क्या कहना है। अनुपमा चोपड़ा, अगर लोगों को पता है तो पता है, उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ट्रॉपिक थंडर जैसा सटायरिकल था, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी बिखरी हुई है कि मजा खराब हो जाता है। उनके मुताबिक डायरेक्टर ने सब कुछ एक साथ डाल दिया, अजीब CGI, गोरिल्ला सीन, बवाल करने वाले लोग जो जंगल में होते हैं, इमोशनल विलेजर्स जिसकी वजह से फिल्म स्पार्कलिंग लगने के बजाय बहुत ज़्यादा बेकार और स्लैपडैश जिसे कहते हैं वो लगने लगती है। अनुज कुमार का कहना है कि डायरेक्टर अहमद खान ने एक प्रॉपर जुड़ी हुई फिल्म बनाने के बजाय इसे 164 मिनट का वैरायटी शो बना दिया। ये मूवी कम और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाले 30 सेकंड के रील्स और क्लिप्स का एक लंबा कलेक्शन ज्यादा लगती है।
अच्छा ये भी कभी कभार दिमाग में आता भी है क्योंकि कई ऐसे मीम्स हुए हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं पुरानी फिल्मों से, तो डायरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा अब यू नो फोकस करने लगे हैं कि बस

0: ऐसे डायलॉग हो, कोई ऐसे सीन हो जो बहुत ज्यादा एज अ रील फेमस हो जाए, उस फेमस रील की वजह से उनकी मूवी चल जाए। ये आजकल एक्चुअली लोग बात भी करने लगे हैं और कुछ डायरेक्टर्स पॉडकास्ट में इस बात को बता भी चुके हैं। एंड नाउ एक और क्रिटिक्स हैं शुभ्रा गुप्ता जिनका नाम है, उनका कहना है कि फिल्म अपने हैवी कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बोझ तले दब गई है। शुरुआत में तो स्लैपस्टिक जोक्स पर हंसी आती है लेकिन सेकेंड हाफ में कॉमेडी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ज़बरदस्ती की बॉर्डर एक्शन चेस सीक्वेंसेस देशभक्ति शुरू हो जाती है जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बोर कर देती है। तो ये कुछ बातें दोस्तों जो लोगों को लगी। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के वर्डिक्ट के बारे में कि क्या भाई इस मूवी को देखना है कि नहीं देखना है, क्या करना है। टिकट तो हमने खरीद लिया, अगर आपने टिकट खरीद लिया ऑब्वियसली ये मूवी बुरी नहीं है क्योंकि शुरुआत में भी हमने कह दिया कि इसको 5 में से 3 स्टार मिल चुके हैं। तो अगर किसी मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हैं तो वो ऑब्वियसली बड़ी अच्छी है। और वैसे भी फर्स्ट हाफ के लिए इसे 5 में से 4 मिले हैं और सेकेंड हाफ के लिए 5 में से 2 मिले हैं। तो ओवरऑल 5 में से 3 स्टार लेकर आई है। तो मुझे लगता है अगर आपने टिकट खरीद लिए तो वो जाया नहीं जाएगी किसी भी हाल में। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। वेलकम टू द जंगल, ये मूवी एक प्योर ब्रेन रॉट स्लैपस्टिक और टाइम पास एंटरटेनर है। पहला हाफ इसे कहेंगे पैसा वसूल। अक्षय कुमार की कमाल की कॉमिक टाइमिंग, जॉनी लीवर के गैग्स और स्टार्स स्टडर्ड मेटा कॉमेडी आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएंगे। सेकंड हाफ के बारे में बात करें, ये सरदर्द है। जंगल में जाते ही कॉमेडी खत्म हो जाती है और फिर बड़ा घटिया CGI गोरिल्ला उसमें आएगा, खराब एक्शन है, जबरदस्ती की देशभक्ति फिल्म को बहुत लंबा और बोर बना देती है। अच्छा आजकल ये भी एक चलने लगा है ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट डाल दो जो लोगों के दिलों को छू जाए और वो फिजूल का, जबकि फिल्म का काम है ही नहीं कि लोगों के दिलों को छूना। फिल्म का काम है कि आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से आए तो आप एंटरटेन करें। उसके अलावा हमने बात करी फिल्मिंग लोकेशन के बारे में जो कि शूट हुई मुंबई में, कश्मीर में, UAE में, अबू धाबी, दुबई और रास अल खैमा में शूट हुई। उसके अलावा अक्षय कुमार जो दिखे हैं वो भोजपुरी अवतार में दिखे हैं। जैकलीन और दिशा का कोई ऐसा कोई खास काम था नहीं। सिनेमाटोग्राफी के बारे में हमने बात करी, सब कुछ कवर कर लिया। अब इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी मूवी के बारे में बात करो जो अंग्रेजी हो या आपकी मर्जी की मूवी हो जिसकी रिव्यू आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6666 22107 6662217 और कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 4434377। उसके अलावा एक और बात जो कि बड़ी लाजमी है वो ये कि आप हमें हर जगह फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप हमें टिकटॉक पे, फेसबुक पे और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, FM 107 कतर डालिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको हमारा नाम, हमारा ऑफिशियल पेज आसानी से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी हम FM 107 के नाम से मौजूद हैं, साथ ही टिकटॉक पर भी हम मौजूद हैं और फिर हम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। FM 107@FM107 कतर बस इतना डालिए और हमें ढूंढ लीजिए। तब तक मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी फिर इसी एपिसोड में। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
2: दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है. और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है. FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम में इस्तकबाल है आपका। हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं नए जमाने के स्कैम्स के बारे में, फ्रॉडस्टर्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स और सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड के बारे में। 2026 में साइबर क्रिमिनल्स ने इंडिविजुअल आइडेंटिटी चोरी करने के बदले सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया है। इस फ्रॉड में एआई एजेंट्स रियल लोगों के थोड़े से डेटा, जैसे कि आधार या पैन या कुछ हिस्सा या छोटी मोटी डिटेल्स को फेक एआई जनरेटेड डेटा के साथ मिक्स करके एक बिल्कुल नई झूठी आइडेंटिटी खड़ी कर देते हैं। ये फेक आइडेंटिटीज इतनी परफेक्ट होती हैं कि बैंक के ऑटोमेटेड केवाईसी सिस्टम्स और क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम्स भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। इन सिंथेटिक प्रोफाइल्स के दम पर फ्रॉडस्टर्स बड़े बड़े पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और शॉपिंग लाइंस अप्रूव करवा लेते हैं। जब लोन डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस नाम का कोई इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका असर आम लोगों पर तब पड़ता है जब उनका रियल डेटा इस फेक मिक्स में यूज होता है और उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेगुलरली चेक करते रहें। ये ऑटोनोमस एआई एजेंट्स हर रोज हजारों फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, बैंकिंग पोर्टल्स पर ऑटोमेट अटैक्स रन करते हैं, जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन एफएम 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड का शिकार होने से बचने के लिए आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड क्रेडेंशियल्स के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क या कहें होशियार रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखने के लिए सिबिल, एक्सपेरियन या इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरोज से हर महीने अपने क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी लोन इंक्वायरी या क्रेडिट अकाउंट दिखता है जो आपने कभी खोला ही नहीं, तो तुरंत उस बैंक और साइबर सेल को रिपोर्ट करें। अपने पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या QID, फोटोकॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की अनवेरिफाइड जगह पर ना दें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा मास्क्ड आधार या QID या ऐसी डिटेल्स जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मास्क्ड दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के आखिरी के 4 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही अगर आप दे देंगे तो आपके नाम से उसे मैच किया जा सकता है बजाय पूरे 16 या जितने भी नंबर हैं वो देने के, क्योंकि वो हो जाता है खतरनाक। उसके अलावा साइबर थ्रेट से अलर्ट रहने के लिए बैंक्स की तरफ से भेजे गए ट्रांजैक्शन अलर्ट्स और क्रेडिट अपडेट्स को भी इग्नोर ना करें। अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज का यूज करें, जो डार्क वेब पर आपके क्रेडेंशियल्स का मिसयूज स्कैन करती रहती हैं। ये है सबसे सेफ तरीका। दोस्तों, ये था आज का एफएम 107 पे खास फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे एफएम 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं एफएम 107,
0: दिल से

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
5: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, मैं हूँ आरजे सफा और आप सभी को वेलकम करती हूँ जूनियर जनाब के एक और एपिसोड में। साथियों, ये एक ऐसा शो है जहाँ हम आपकी मुलाकात कराते हैं यंग अचीवर्स से। आज हमारे रेडियो शो की दुनिया में एक ऐसा सितारा आया है जो अभी छोटा है लेकिन अचीवमेंट्स इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई। मैं बात कर रही हूँ एक यंग अचीवर की जिनका नाम है मोहम्मद हसन। अच्छा भाई, मोहम्मद हसन का अगर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकूँ तो मैं आपको बता दूँ कि हसन ने सिर्फ अपनी किताबों में ही एक्सीलेंस नहीं दिखाई बल्कि स्पोर्ट्स, ट्रैवल और नॉलेज की दुनिया में भी इन्होंने अपने रंग जमाए भाई। इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन से 2 मेडल्स जीते, CNQ बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत कर अपने स्कूल का नाम रोशन सितारे की तरह कर दिया और 14 मुल्कों की यानी 14 कंट्रीज की सैर भी की। और ये सब कोई आसान बात नहीं है साथियों। और सिर्फ यही नहीं, एकेडमिक्स में भी इन्होंने 90% प्लस स्कोर किया है भाई। और वो है ना अपना अबास्कस कंप्लीशन फ्रॉम पेस एजुकेशन दोहा, और फ्यूचर डॉक्टर बनने का ख्वाब भी भाई। इतना कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं इनसे पूछना तो बनता है क्योंकि ये हैं परफेक्ट एग्जांपल डेडिकेशन और पैशन की। और सबसे इंस्पायरिंग बात पता है क्या है साथियों इनकी, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, कि ये छोटा सा सुपरस्टार सिर्फ स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज से अपनी जनरल नॉलेज भी बढ़ाते हैं। नॉलेज और टैलेंट

0: ही ऑलराउंडर हैं भैया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी मुलाकात के लिए जो कि हो रही है मोहम्मद हसन से, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी ख्वाबों की कहानी के बारे में, और ये सब कुछ तो हम उन्हीं से सुनेंगे ना, मजा तो उन्हीं की बातें सुनकर आएगा। तो भाई ये है एक इंस्पायरिंग मुलाकात एक यंग अचीवर के साथ, राइट हियर ऑन एफएम 107 शो पर, जिसका नाम है जूनियर जनाब। तो साथियों चले भाई चलते हैं हम मोहम्मद हसन की तरफ। मोहम्मद हसन कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा थोड़ा सा माइक के पास पास आ जाएंगे ताकि हम हमारी दुनिया को आवाज क्लियरली आनी चाहिए ना हमारी भाई। देखिए हमारे कॉन्सेप्ट और हमारी आवाज बिल्कुल टोटली क्लियर रहनी चाहिए लोगों को, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं?
1: मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ।
0: एक्साइटेड है
1: जी।
0: थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ऐसे, मैं एक्साइटेड हूँ, ताकि एक्साइटमेंट सुनाई दे ना हमें।
1: जी मैं एक्साइटेड हूँ मैं।
0: और सर हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, जबरदस्ती बुलवा रही हूँ उससे, मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा ये बताएं कि ये जो छोटा सा हमारा सुपरस्टार है जिसका नाम है मोहम्मद हसन, क्या ये अपने आप को थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में, मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस करा दिया लेकिन आप अपने वर्ड्स में थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे?
1: जी मैं मोहम्मद हसन हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मैं MES इंडियन स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत शौक है, मुझे है ना बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग, फुटबॉल, मैंने बास्केटबॉल में भी सर्टिफिकेट जीते हैं, स्विमिंग में भी सर्टिफिकेट जीते हैं, और इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में भी 2 मेडल्स जीते हैं, और बास्केटबॉल के अंदर CNAQ में एक टूर्नामेंट था उसके अंदर हम लोग फाइनल में जीत गए थे।
0: सही,
1: और ट्रॉफी मिली थी।
0: नाइस, अच्छा ये सब कुछ है, अभी भी और लंबी चौड़ी लिस्ट है, चलती जाएगी इंशाल्लाह, जब बड़े होते जाएंगे तो और चलती जाएगी ठीक। तो भाई मुझे ये बताएं, चलिए आपसे एक एक एक नॉर्मल से सवाल करती हूँ, लॉन्ग डिस्कशन, एक एक अगर मैं आपको एक एक छोटे से शॉर्ट से पैसेज में लाने को बोलूँ, तो जरा मुझे ये बताएं, अगर आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना हो इन यू समझ लें फ्यू वर्ड्स, ठीक है, तो आप अपने लिए क्या बोलेंगे, क्या हैं आप, कौन हैं आप, कैसी पर्सनैलिटी आप?
1: जी मुझे पढ़ाई करने का शौक है और मैं कभी जल्दी ज्यादा गुस्सा नहीं होता हूँ।
0: अरे वाह नाइस,
1: जब बहुत ही ज्यादा होता है तभी गुस्सा होता है, छोटी बातों पर नहीं होता हूँ।
0: अच्छा भाई ये तरीके का, देखें हम सबको क्लासेस दे दें, चले फीस के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कि ये एंगर मैनेजमेंट की जो आप क्लासेस देंगे इसकी फीस कितनी होगी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? लेकिन ये कमिटमेंट जरूर करके जाइएगा कि एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस देंगे आप, ठीक है? अच्छा ये बताइएगा कि आपके जो स्पोर्ट्स हैं और हॉबीज हैं, विच वन डू यू लव द मोस्ट? अब आप बता रहे ना कि आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स आपने खेले हुए हैं, हॉबीज मल्टीपल हैं आपकी, लेकिन एक होगा ना कुछ जिससे आप कहते नहीं भाई इससे मैं बोर नहीं होता।
1: ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल है, फुटबॉल मुझे घर में भी खेलना अच्छा लगता है, बाहर दोस्तों के साथ भी खेलना अच्छा लगता है, मैं कभी फुटबॉल से बोर नहीं होता हूँ।
0: तो ये बताएं कितना फर्नीचर तोड़ चुके हैं अभी तक, अम्मी के कितने गमले, कितने वास, कितने डेकोरेशन पीसेस, क्या कितनी दफा डांट खा चुके, घर में खेलते हैं घर के अंदर
1: कभी कभी थोड़ा,
0: तो सही सही बताना कितनी डांट खाई है अम्मी से,
1: खाई
0: है। ये मुस्कुराहट से पता चल रहा है मुझे बहुत खाई। देखिए आप कौन कौन सी डांट को याद रखेंगे, अब तो नॉर्मल हो गया है। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट मेक्स यू द मोस्ट हैप्पीएस्ट डूइंग स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल या ट्रैवलिंग, इन चीजों में आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है?
1: ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे दोनों से इक्वल मजा आता है, तो मेरा आंसर है फुटबॉल, बास्केटबॉल और ट्रैवलिंग।
0: लो भाई सब ही आ गया हमारी जेब के अंदर। देखिए स्विमिंग आपने जो एक छोड़ दी थी वो भी मैं इंक्लूड कर ही देती हूँ फिर।
1: जी जी
0: चले भाई जी जी, ये हम भूल गए थे, जल्दी में बताना। अच्छा ये बताएं कि आपका कोई जैसे घर में होता है ना हम लोग एक दूसरे को बड़े प्यार से निकनेम्स देते हैं, आपका कोई निकनेम है घर में?
1: मेरा नाम वैसे भी थोड़ा शॉर्ट है हसन, तो ऐसा ही है।
0: हाँ अम्मी भी ऐसे बोलते हैं हसन
1: जी।
0: अच्छा भाई इनका कोई निकनेम नहीं है, तो कोई फ्रेंड्स वगैरह में कोई आपको निकनेम से बुलाते हैं?
1: नहीं
0: हसन ही, माशाल्लाह प्यारा सा नाम, ठीक है भाई। अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर। सुनते रहिए FM 107।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।

0: आपको छोटे छोटे अचीवर्स बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ जूनियर जनाब विद आरजे सफा
1: अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी के बारे में बात करें अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो हाउ डिड यू फर्स्ट गेट इंटरेस्टेड इन स्विमिंग
2: स्विमिंग मैंने सबसे पहले आई थिंक शुरू करी थी जब मैं 4 साल का था
1: मेरे वाओ
2: जी मेरे पापा ने मुझे स्विमिंग क्लासेस में डाला था तब मुझे मजा आया था मतलब स्विमिंग मतलब बच्चे को तो अच्छा ही लगता है
1: पानी में पानी
2: जी
1: बेटा सबको अच्छा नहीं लगता कुछ बच्चे पानी से भागती भी है मिलियों की तरह

0: जब सीख ली
1: जी,
0: अब देखो मुझे को देख लो, मैंने बड़ी सीखने की कोशिश की है लेकिन मैं तो अभी तक सीखने के ही मरहले में हूँ। मैं पानी देख कर डर के भाग जाती हूँ। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, हम आपके बारे में बात कर रहे थे, तो ये बताइएगा कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू वन द फर्स्ट मेडल इन स्विमिंग?
1: जी मुझे बहुत अच्छा लगा था।
0: ऐसा मतलब कभी एक होता है ना कि हमारा एक टारगेट होता है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं या कुछ, कभी सोचा था कि नहीं भाई मैंने मेडल लेना है?
1: जी मैंने सोच कर गया था कॉम्पिटिशन।
0: अच्छा, टारगेट था?
1: जी जी।
0: अरे वाह, वेरी गुड।
1: मैंने वही सेम दिन में दो मेडल जीते थे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब पता चल रहा है बच्चे की डेडिकेशन। इसे देखें, आपकी इस बात को देखते हुए ना मुझे वो चीज एक बात याद आती है कि हमें हमेशा लाइफ में पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आप कुछ पॉजिटिव सोच कर गए थे, दैट्स हाउ यू गॉट व्हाट यू वांटेड। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अपना बास्केटबॉल का शौक है, कैन यू टेल अस अबाउट द चैंपियनशिप यू वॉन इन बास्केटबॉल?
1: जी हम, मेरी टीम एक मतलब एकेडमी है, स्कूल की तरफ से नहीं, मतलब एकेडमी है।
0: सही सही।
1: हम लोग सबसे पहले एक सिलेक्शन हुआ था जैसे,
0: सही।
1: फिर उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद टीम सिलेक्ट हुई और फिर हम लोग टूर्नामेंट में गए। टूर्नामेंट में हम लोग ने तकरीबन 7 या 8 मैचेस खेली।
0: सही।
1: जैसे फुटबॉल में होता है राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ऐसे हम लोग ने खेला और फाइनल में हम लोग जीत गए।
0: सही।
1: 10 पॉइंट से ऐसा कुछ।
0: अरे वाह
1: जी।
0: और ओपोनेंट टीम के कितने थे?
1: हमारे उनके 90 ऐसा कुछ थे, हमारे 100 थे।
0: माशाल्लाह गुड नाइस। मतलब ये नहीं था, मतलब जिसे हम कहते हैं टक्कर का मुकाबला था। इफ यू आर सेइंग 98 और समथिंग, दैट मींस इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल।
1: यस।
0: अरे मैच अच्छा हुआ होगा।
1: जी जी।
0: अच्छा भाई, अच्छा ये बताइएगा कितने सारे माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स मल्टीपल एक्टिविटी करते हैं, तो इन स्पोर्ट्स में आपको क्या लगता है विच इज दी मोस्ट, विच हैज बिन दी मोस्ट चैलेंजिंग स्पोर्ट फॉर यू एंड व्हाई? What was difficult in it? के होता है, हम सबके साथ होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, we do face challenges. ऐसा नहीं है कि किसी के लिए मक्खन हो कोई भी चीज़। तो which one do you think was challenging for you and why?

0: जैसे कि कुछ झटका जैसा लगता है।
1: हाँ जी
0: जी, उसके अंदर थोड़ा सा डर लगता है स्विमिंग के कंपटीशन में जाने से पहले। फिर उसके बाद दूसरे के भी ऊपर होता है वो कितनी अच्छी करते हैं, हम लोग का डिफरेंस होता है। तो
1: अच्छा, ये आपको ऐसा लगता है कि हमारी प्रैक्टिस जो होती है ना वो हमें पहुंचाती है?
0: जी एक्चुअली बिलीविंदा।
1: हाँ ओके, तो मतलब हार्ड वर्क कर लेते हैं। अच्छा, इतने सारे माशाल्लाह से स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये बताएं कि ये स्पोर्ट्स को और स्टडीज को कैसे मैनेज करते हैं?
0: टाइम होता है मेरा,
1: स्केड्यूल पे चलते हैं अपने। माशाल्लाह, वेरी गुड गुड गुड गुड।
0: स्पोर्ट्स का टाइम होता है तो स्पोर्ट्स को ही देखना है, और जब स्पोर्ट्स खत्म हो तो पढ़ाई को देखना है।
1: फोकस हो जाता है
0: जी,
1: तो बच्चे कहते हैं नहीं आई एम टू टायर्ड टुडे, आई डोंट वांट टू डू दिस, ऐसा होता है?
0: हाँ कभी कभी होता है,
1: कभी कभी चल जाता है। ज्यादा दफा करेंगे तो वो कभी कभी अगर नॉर्मल रूटीन में आ जाए तो फिर सब कुछ ही कोलैप्स हो जाता है ना।
0: जी जी
1: सही। अच्छा ये बताइएगा कि मुझे ये तो पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो स्पोर्ट्स में आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है और क्यों है?
0: मेरा फेवरेट फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है। वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है।

0: नी सा भी हो जाता है जो हमें याद रह जाता है कि पता है ग्राउंड में ये हुआ था, फलाने ने ये कर दिया था, हम उसके ऊपर बेचारे का फुल टाइम मजाक उड़ा रहे होते हैं. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ आपको मिलकर कभी दोस्तों ने टीज किया है या आपने किसी दोस्त का जो ना ये पॉइंट आउट किया कोई ऐसा कुछ ऐसा फनी सा आपको कुछ याद?
1: फुटबॉल में एक बार मेरा एक दोस्त था, गोल के पास ही था, गोलकीपर भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी है ना बाहर बॉल को किक कर दिया.
0: अच्छा ओके ओके ओके ओके, उसको बस ये था कि मैं किसी तरह से बचा लूं. अच्छा कभी कभी ये भी होता है फुटबॉल में कि मैंने देखा है खुद भाई, मैं एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, अपने ही गोल में गोल कर जाते हैं.
1: जी जी होता है कभी कभी,
0: ये हो जाता है.
1: हाँ.
0: सही, गेम में इतने मगन हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, बस गोल ही नजर आ रहा था, ये नहीं ये भूल जाते हैं किसका गोल है, कहाँ है. अच्छा ये बताएं कि जब आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं या कुछ, एक होता है ना कुछ लोगों के अंदर ये सेंस होता है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ दिमाग में रखते हैं, कुछ सोचते हैं अपने आप को. मैंने इसे बहुत सारे जो है ना सेलिब्रिटीज को सुना है जो कहते हैं कि व्हेन वी आर अबाउट टू गो ऑन अ मैच या समथिंग, तो हम लोग अपने आप को प्रीच करते हैं कुछ ना कुछ. वी सिट डाउन फॉर अ व्हाइल इन अ रूम इन अ साइलेंस प्लेस साइलेंट प्लेस, और हम अपने आप को ना कुछ फीड करते हैं इन द सेंस कि वी हैव थॉट्स इन आवर माइंड. तो आप जब कोई रेस कोई मैच कुछ कोई गेम कुछ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है?
1: मेरे दिमाग में होता है कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, हम लोग को हमारा सबसे बेस्ट देना है.
0: वेरी नाइस, अरे भाई वेरी नाइस वेरी नाइस. अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह खेल कूद की तो आदत है आपको, लेकिन अपनी विक्ट्रीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कुछ स्पेसिफिक होता है या एक बंदा कहता है या मैं तो वैसे ही इतना हाई फाई सुपर स्टार चल रहा हूँ, अब तो मैं थक गया हूँ विक्ट्रीज सेलिब्रेट करते करते, या हर दफा हर विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं?
1: जी खुशी तो होती है. हाँ, सेलिब्रेट
0: खुशी तो होती है. तो कैसे, मतलब कोई केक शेक, कोई दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी, चलो आज फास्ट फूड खा कर आते हैं, कुछ ऐसा?
1: फास्ट फूड नेसेसरी नहीं है, हम लोग कभी मतलब घूमने जाते हैं थोड़ा.
0: अरे गुड गुड, मतलब अपने आप को सेलिब्रेट करना जरूरी है, करना चाहिए. इट बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस एज वेल. अच्छा ये बताइएगा, विनिंग के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, देयर आर टाइम्स व्हेन वी डोंट विन, हाउ डू यू हैंडल दैट?
1: शुरू में थोड़ा सा उदास होते हैं, लेकिन फिर हम लोग को दिल में रखना चाहिए कि हार भी होगी जीत भी होगी. हार से हम लोग को कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम लोग जीत पाए.
0: वेरी वेरी गुड, वेरी बहुत बड़ी बात बोली है. हमेशा याद रखें कि अगर आउटकम वैसा नहीं आया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लॉस्ट इट, तो इट्स एन एक्सपीरियंस. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे और कितना सीखते हो. इफ यू वॉन्ट यू वॉन्ट अल्हम्दुलिल्लाह, बट इफ यू लॉस्ट इट देन देयर वुड बी समथिंग ड्यू टू सम रीजन, वो रीजन फाइंड आउट करना. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा चलिए, ये तो हमारे स्पोर्ट्स की बात हो गई, अब थोड़ा चलते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर और एक्सप्लोरेशन के ऊपर. अच्छा ये मेरे इंटरेस्ट की ये भी एक बात थी कि आई वुड से वाओ वाओ 14 कंट्रीज अम्मी अबू के साथ ही घूमी है ना. हाँ माशाल्लाह वो, बट इट्स वाओ. तो ये बताएं कि इतनी सारी कंट्रीज घूमने के बाद जितनी आपने घूमी है उनके अंदर से आपकी फेवरेट वाली कौन सी है भाई?
1: फेवरेट वाली होगी स्विट्जरलैंड और टर्की.
0: टर्की मेरी भी फेवरेट है, मैं भी होकर आई हूँ वहाँ से. आई लाइक. अच्छा इन कंट्रीज में आपको क्या चीज आप कहते हैं ना मुझे अच्छी लगी, ये बात बहुत अच्छी लगी, दैट्स व्हाई आई लाइक्ड इट.
1: स्विट्जरलैंड के अंदर लोग बड़े फ्रेंडली है और सीनरी तो मतलब सबको पता है बहुत ही अच्छी है.
0: पीपल से दैट के ऐसा लगता है पिक्चर में से कहीं से
1: जी जी
0: निकल कर आ रही है. सही
1: और टर्की के अंदर खाना भी बहुत अच्छा है मतलब.
0: यस
1: और सीनरी भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है. और घूमने की भी बहुत सारी जगह है
0: मतलब ऐसा है, इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी. यस अच्छा ये बताइएगा कि अब इतने माशाल्लाह कंट्रीज आपने ट्रैवल की हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि क्या आपको पसंद है न्यू फूड्स ट्राई करना, या कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े चूजी से होते हैं और कहते हैं पिकी ईटर्स होते हैं. पिकी ईटर हैं आप?
1: हाँ.
0: ओहो इतने सारे मुल्क घूमे और पिकी ईटर बन गए, ओहो मेरा तो हार्ट वाला ब्रेक हो गया भाई. अच्छा स्पेसिफिकली खाने में क्या पसंद करते हैं?
1: मैं इंडियन खाने के अंदर बटर चिकन या
0: नाइस बटर चिकन. अब मुझे भूख लग गई है. अच्छा कहीं माशाल्लाह 14 कंट्रीज ट्रैवल की हैं आपने, सबसे बेस्ट डिश ऐसी उधर जाकर क्या खाई?
1: वो तो टर्की में ही था. कबाब और
0: वो मुझे याद है क्या कहते हैं इसे, डोनर कबाब.
1: या
0: हाँ, नाइस नाइस, यू ट्राइड इट, वेरी गुड. अच्छा

0: शवरमा वगैरह भी उनका टेस्ट भी अलग होता है कि हम लोग जो यहाँ पे खाते हैं उसका टेस्ट अलग है, बट व्हाट वी ईट ओवर देयर इज टोटली डिफरेंट.
1: यस.
2: अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
3: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा ये बताइएगा, इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल की है, तो देयर वुड बी समथिंग स्पेशल कि कभी आपने कुछ सोचा हो, कुछ लर्न किया हो कंट्रीज घूमते घूमते, तो वो क्या चीज होगी? व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड?
1: वर्ल्ड के बारे में मैंने सोच लर्न करा है कि जैसा कुछ कभी कभी स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो सही नहीं होते. हर लोग, हर कोई ऐसा नहीं होता है. सबके सब बुरे नहीं होते, सबके सब अच्छे नहीं होते. इट्स लाइक 50-50.
0: अच्छा, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए जब हम दूसरी कंट्रीज घूमते हैं ना, तो हमें ये बड़ी एक अच्छी समझ आ जाती है कि कैसे हमें दूसरे कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और किसी के लिए ना ऐसी एक माइंडसेट नहीं बनानी, डोंट बी जजमेंटल. ये बड़े होकर भी बहुत काम आता है बेटा, ये बात याद रखना. ये बड़े होकर भी ह्यूमंस में भी, सिर्फ जगहों के बारे में नहीं, ह्यूमन एटीट्यूड और उसके बारे में भी काम आता है ये. अच्छा भाई ये बताइएगा कि मुझे बताएं कि इतनी सारी तो कंट्रीज घूमी, अब कुछ और भी ऐसी होंगी जिनको घूमने का शौक तो होगा अभी भी. शौक तो इंसान का कभी खत्म नहीं होता, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए. तो कौन सी कंट्री होगी ऐसी जो घूमना चाहेंगे? मैं भी, मेरा कुछ टाइम से जो ना मूड हो रहा है, मैं कह रही हूँ यार जापान, जापान. अच्छा जापान के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, जो लोग जापान से होकर आते हैं वो कहते हैं एटलीस्ट इफ यू कैन वंस इन योर लाइफ टाइम डू विजिट जापान. इट इज, जब हम कहते हैं ना कि जापान को कहा जाता है द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, तो दे से कि वो बिल्कुल सही बैठता है. मुझे भी शौक है, चलेंगे किसने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे, इंशाल्लाह चलेंगे नेक्स्ट टूर उसी वही ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा आपको जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको क्या, आप क्या प्रेफर करते हैं? बीचेस हो गए, माउंटेन्स हो गए, या सिटीज? कुछ लोग सिटीज बहुत पसंद करते हैं. आपको कैसा एनवायरमेंट अच्छा लगता है?
1: मुझे माउंटेन्स और सिटीज बड़ी अच्छी लगती है.
0: मैं सिटीज से भागती हूँ. मुझे माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे कोई माउंटेन्स ले जाए, बीचेस ले जाए. हाँ पानी, पानी के अंदर नहीं, सी शोर्स पे हम बैठ जाएंगे तो नाइस. सिटीज, अच्छा सिटीज में कोई ऐसी बात है जो आपको, मतलब होता है ना कुछ लोगों को स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, या कुछ लोगों को लाइट्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, तो सिटीज में आपको क्या बात अच्छी लगती है ऐसी?
1: मुझे सिटीज के अंदर उनकी लाइफ और फैसिलिटीज अच्छी लगती है. जैसे कि अगर आप पहाड़ पर रह रहे हो, आपको मतलब ज्यादा हर फैसिलिटी नजदीक नहीं मिलेगी. सिटीज में आपको मतलब 10-15 मिनट की दूरी पे भी मिल सकती है.
0: अरे भाई ये बड़ी प्रैक्टिकल बात की है उन्होंने. अरे वाह, आई लाइक इट. ये बहुत प्रैक्टिकल बात की बच्चे ने. एंड आई लाइक द थॉट के द वे ही इज वेरी, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. चलें भाई ठीक है, जहाँ पे फैसिलिटी ना हो ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर बंदा जो ना थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि हम लोग सारे सिटीज़ के ही पले बढ़े, तो माउंटेन एरिया के होते तो हम कहते हैं नो इट्स नॉर्मल लाइफ फॉर अस. एक टाइम पर जाकर माउंटेन एरिया से भी तंग आ जाते हैं, चाहे कितना ही पसंद क्यों ना करते हो.
1: माउंटेन ऐसी चीज़ है मतलब
0: लिमिटेड एक्सेस है ना हर चीज़ को. सही सही सही सही,
1: लॉन्ग टर्म के लिए मतलब सिटी ज्यादा अच्छी है.
0: सही सही सही. अच्छा ये एक बात बताएं, कोई ऐसी मेमोरी हो आपकी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ फॉर व्हेन यू ट्रैवल? कोई ऐसी मेमोरी अम्मी अबू के साथ हो, या फ्रेंड्स के साथ हो, या कोई ऐसा ओकेजन हुआ हो जो आपको याद रह गया हो
1: ट्रैवलिंग में?
0: हाँ जी,
1: टर्की, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स गए थे हम लोग, हमारे दोस्तों के साथ गए थे, मेरे पापा के दोस्त और मेरे भी दोस्त थे उनके बच्चे, हम लोग को उसके अंदर बहुत मजा आया था, हम लोग खेल रहे थे, हम लोग सब साथ में घूम रहे थे.
0: सही, तो ये मतलब यू एंजॉय विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स.
1: यस,
0: वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट टाइप के नहीं है, फ्रेंडली है. अच्छा ये बताएं कि आपस में दोस्त दोस्त तो हैं, ये बताएं जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है ना कि आपको कोई मिल जाए, कोई दोस्त, कोई बच्चे मिल जाए तो फ्रेंडशिप हो जाती है आपकी उनसे? यू गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स और नो?
1: ज्यादा जल्दी लोगों से नहीं मिलता, लेकिन
0: मैं समझदार बच्चा हूँ. देखिए मैं हर किसी से ऐसे बात नहीं करता, मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि किस टाइप के लोग हैं, फिर देन ओके ओके ओके ओके चलिए वही भी.
1: लेकिन जो मेरा दोस्त बन जाए तो मैं उसको
0: छोड़ता नहीं हूँ फिर मैं. वेरी गुड, लॉयल फ्रेंड, यू आर वन ऑफ द लॉयल फ्रेंड्स, वेरी गुड. अच्छा भाई ये बताइएगा कि अगर हम एकेडमिक्स और लर्निंग के बारे में बात करें तो ये बताइएगा कि ये जो 90% वाला मामला है ना, अब व्हाट्स द सीक्रेट टू दिस थिंग? भाई दे दें इससे, इस ताले की चाबी दे दें हमें, बहुत सारे लोगों को काम आ जाएगी.
1: मैं कभी कभी पढ़ाई करता हूँ, कभी कभी एंड टाइम पे भी होती है, कभी कभी जल्दी भी करता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जल्दी करो. एंड टाइम पे तो मतलब प्रेशर बहुत हो जाता है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जल्दी करने से ऐसा होता है कि हम लोग को सुकून से सब कर सकते हैं, हम लोग को ज्यादा
0: आराम से आप टॉपिक्स कवर,
1: ओवरलोड नहीं होगा.
0: सही सही सही. अच्छा ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहेंगे भाई मुझे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, मुझे ये पता है कि आपको डॉक्टर बनने का शौक है, तो आई कैन गेट अ हिंट ऑफ इट.
1: साइंस,
0: ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि आपका ये जो था माशाल्लाह से, हाउ डिड लर्निंग एबेसकस हेल्प यू इन योर स्टडीज?
1: मैथ में बहुत हेल्पफुल है, हम लोग माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कभी कभी.
0: सही. अच्छा एबेकस का बड़ा पहले नहीं सिखाया जाता, अब बहुत माशाल्लाह से इट्स वेरी ट्रेंडिंग एंड इट्स वेरी डिफरेंट. मैंने देखा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं है कि मुझे पर्टिकुलरली कोई समझाने वाला है नहीं, बट मैंने देखा है कि मैंने कोशिश जरूर की है उसको समझने की, बट आई थिंक इट नीड्स प्रैक्टिस. वंस यू गेट इनटू द थिंग यू नो इट.
1: पहले वो बोर्ड पे सिखाते हैं एबेकस के, फिर हम लोग को माइंड कैलकुलेशन में लेके जाते हैं.
0: सही सही सही सही. और उसके लिए भी वही वाली बात है
1: जी
0: कि आप जो ना प्रैक्टिस करो.
1: जी
0: ठीक है ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि ये तो मुझे पता है कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है. अब ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम वन?
1: लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, और मुझे डॉक्टर की फील्ड बड़ी अच्छी लगती है, लोगों की मदद करना.
0: तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर इफ आई आस्क यू?
1: MBBS.
0: अच्छा MBBS में होता है ना कि आपको हार्ट सर्जन बनना है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, या आपको जनरल फिजिशियन बनना है?
1: जनरल
0: वाला, ठीक है ओके. अच्छा ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट?
1: My parents.
0: माशाल्लाह वेरी गुड,
1: बहुत ही सपोर्टिव है. जब भी मैं उदास रहता हूँ तो हम मुझे हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं.
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड, एवरी पेरेंट शुड डू दैट. अच्छा ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा, अब मैं कहूँ कि जो आप सोचते हैं कि क्या ऐसा करूँगा जो मेरे लिए अचीवमेंट होगी फ्यूचर की, कैसे गोल है, कोई टारगेट है?
1: कम्युनिटी की ट्राई करो तो हेल्प करना, वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि मैंने लोगों की हेल्प करी है.
0: सही सही सही. अच्छा ये बताइएगा कि जाने से पहले, अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, बस मुश्किल से 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है. तो मुझे ये बताइएगा जरा कि ऐसा कोई पीस ऑफ एडवाइस होगा जो आप, जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं, माशाल्लाह यू आर एन अचीवर एंड आई नो इट्स नॉट दैट कोई आपको ऐसे आकर कह दे कि भाई लकी है और गॉड गिफ्टेड है. गॉड गिफ्टेड भी होता है, लेकिन इफ यू एक्चुअली डोंट पॉलिश योर सेल्फ इनफ एंड यू डोंट वर्क हार्ड फॉर इट, तो वो गॉड गिफ्टेड भी चीज फेड आउट हो जाती है. तो मुझे ये बताइएगा कि अपने पास से आपको ये अच्छा सा पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं.
1: मैं सबसे पहले ऐसा बोलूंगा कि इट्स टू नेवर गिव अप. अगर गिव अप करेंगे तो हमारा होने वाला काम भी नहीं होगा, तो हम लोग को हमेशा विल पावर को स्ट्रांग रखना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. और दूसरी एडवाइस है कि हमेशा टैलेंट पर भरोसा नहीं करना है, हार्डवर्क पे भी भरोसा करना है.
0: टैलेंट इज नथिंग इफ रिसोर्सेज और टैलेंट कुछ नहीं होता जब तक आप उसको परफेक्टली अलाइन करके उसके ऊपर सोच कर उसको समझ कर यूज नहीं करते.
1: जी
0: सही सही वेरी गुड. एंड एनीथिंग एल्स? That's it. भाई ये बहुत ही मेजर बात थी, ये सिर्फ that's it नहीं था, बहुत बड़ी बात थी. और आपकी एज में माशाल्लाह, आई होप वॉट एवर यू हैव सेड बाकी बच्चे भी सुने और उससे इंस्पायर हों. साथियों हमेशा याद रखिएगा, बच्चा पार्टी ये होता ये है. आजकल की तो माशाल्लाह जनरेशन इतनी, मैं कहूँगी इंटेलिजेंट आ रही है. एज सच जैसे एक टाइम पर फैसिलिटीज इतनी नहीं थी जितनी आप लोगों के टाइम पर हैं, तो उन फैसिलिटीज को कैसे यूटिलाइज किया जाए

0: तो भाई मेरी तरफ से आरजे सभा की जानिब से मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। हमारे माशाल्लाह मोहम्मद हसन ने आज हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अपनी जर्नी शेयर की है, और हमेशा याद रखें मैं जिस भी अचीवर को लेकर आती हूँ तो हमेशा मुझसे एक ही बात कहते हैं, हार्ड वर्क। इफ यू थिंक कि दे वर लकी इनफ टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ और दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड और दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट, तो यू नीड टू रिकंसिडर योर वर्ड्स। दे वर नॉट जस्ट लकी, दे वर्कड हार्ड फॉर इट एंड दे आर स्टिल पैशनेट अबाउट इट, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, दे आर स्टिल डूइंग देयर पार्ट। तो भाई आपका भी बनता है कि अगर इफ दे कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। हमारी तरफ से हम सबको अल्लाह हाफिज कहते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा साथियों, याद रखिएगा बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। सुनते रहें पे 107 दिल से देसी।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज With RJ Sarwar Mirza. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. Only on FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने प्रोग्राम से, दिल से जुड़े प्रोग्राम से. वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं. भाई कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या कोई और दूसरे सफर के पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं. हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है. और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, भाई एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है. तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और करीब लाती हैं. यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी. और इस सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, भाई कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं. और इसी सिलसिले से आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप दोहा की एक मोहतरम शख्सियत हैं, आपका ताल्लुक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश इंडिया से है, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हासिल किया, फिर आप 2000 से रियासत कतर में मुकीम हैं और इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में आपका वसी तजुर्बा रहा है. आपने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज कतर आर्म्ड फोर्सेस के साथ किया, जहां 2002 से 2010 तक आपने अपनी खिदमात अंजाम दी. इसके बाद आपने 2010 से 2020 तक अशगाल पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी के साथ अहम प्रोजेक्ट्स पर काम किया, और फिलहाल आप पार्सन्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज जारी रखे हुए हैं. प्रोफेशनल जिंदगी के साथ साथ आप कतर की वॉलंटियर सर्विस में भी बहुत एक्टिव रहे हैं. आपने वेस्ट एशियन गेम्स, एशियन गेम्स और फिर फीफा अरब कप और आखिर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स में वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया, जो आपकी कम्युनिटी सर्विसेज के जज्बे को वाज़े करता है. मैं इस बात का भी जिक्र करता चलूं कि आप उर्दू रेडियो के एक डेडिकेटेड लिसनर भी हैं. आपकी जिंदगी प्रोफेशनल डेडिकेशन, वॉलंटियर सर्विसेज और कम्युनिटी एंगेजमेंट का खूबसूरत इम्तिजाज है. आपका काबिले एहतराम नाम अली इमरान है. आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और कुछ सवाल जवाब के सिलसिले से उनकी शख्सियत को और भी करीब से जानने की कोशिश करते हैं. इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
2: कैसे हैं आप? और बहुत बहुत इस्तकबाल है पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला.
3: नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजे सरवर मिर्ज़ा साहब, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 107 में दोहा डायरी में आपके साथ मैं इंटरव्यू करूं. बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दिल की गहराइयों से आपका पूरा और जो आपकी 107 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं.
2: अहलन वसहलन सर, मोस्ट वेलकम.

0: जो असली सिलसिला है सवाल जवाब का वो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि अगर आप अपनी शख्सियत को तीन अल्फाज में बयान करें तो वो क्या होंगे?
1: जी देखिए सरवर मिर्जा साहब, देखिए आदमी शख्सियत अपनी खुद बनाता है, ठीक है। तो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कमिटमेंट होना चाहिए आपको, एक कमिटमेंट जो आप कहते हैं, और रिलायबल होना चाहिए और हार्ड वर्किंग।
0: क्या बात है। तो सर दोहा में आपके लिए एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन कैसा होता है?
1: अब देखिए भाई वर्किंग डे में तो सुबह जाते हैं सब लोग और शाम को आते ही ये रहता है। वीकेंड में हमारा स्पेशल रहता है, मतलब जितने भी यहाँ पे फैमिलीज वाले हैं, बैचलर्स हैं, तो भाई वीकेंड हमारा शुरू होता है फ्राइडे से, शुरू होता है सैटरडे तक, ठीक है। तो सुबह नमाज वगैरह पढ़ के तो मैं कोशिश करता हूँ वॉक करने जाऊँ, स्पेशली कॉर्निश वगैरह पे, बहुत अच्छा रहता है मुझे, है ना, एक एक फ्रेश एयर है वहाँ पे, बहुत बहुत लोग आते हैं वहाँ पे कॉर्निश पे वॉक करने जाएंगे आप। फिर उसके बाद वॉक करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर नाश्ता करिए, फिर घर पे आइए, फिर जुमे की तैयारी, फिर इस तरह से मामला रहता है। यही सैटरडे में है, लेकिन आजकल मामला बहुत गर्म है, माहौल बहुत गर्म है। गर्म का मतलब ये है हॉट सीजन है, तो इसलिए कतर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे पार्क में इंडोर एयर कंडीशन ट्रैक बनाए, वो भी बहुत जबरदस्त है, वो मेरे ख्याल से बहुत कम कंट्रीज में है। तो क्या आप अंदर जाएं वॉक करें, एयर कंडीशन ट्रैक करें, वही शुक्रगुजार हूँ कतर गवर्नमेंट का वही मैं, ये अपने यहाँ पे वर्कर्स के लिए इतनी सहूलतें दे रहे हैं।
0: क्या बात है सर। वैसे तो आप हर इस तरह से लायक हैं कि हम आपसे बात करें और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, मगर फिर भी कोई ऐसी चीज आप जिक्र करना चाहते हो जिसने आपको इंस्पायर किया कि आज आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें?
1: भाई सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कतर गवर्नमेंट का, ठीक है। यहाँ पे मैं जॉब के लिए आया था और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा माहौल लगा कि यहाँ पे वॉलंटियर सर्विस में मैं शुरू से इन्वॉल्व हो गया, और कतर गवर्नमेंट ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बड़े बड़े इवेंट में मतलब उनकी हेल्प कर सकूं। तो ये मैं तो इंडिया में था, तो इंडिया में तो तस्वीर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं बड़े बड़े इवेंट में, जो मेरा लास्ट बड़ा इवेंट था फीफा वर्ल्ड कप, जो आजकल अभी फीफा 2026 चल रहा है, मैं 2022 में फीफा वर्ल्ड में
0: किया। बिल्कुल। चलिए सर अब जरा दूसरे सिरे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ओरिजिन स्टोरी के हवाले से आपसे सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहला सवाल ये इमरान साहब के, आपने दोहा आने का फैसला किस वजह से किया?
1: भाई दोहा मैं इससे पहले सऊदी अरेबिया में था 4 साल, और मैंने सुना था कि ये दोहा कतर एक बहुत डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हो रहा है और अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो मैंने अप्लाई करा तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है।
0: क्या बात है।
1: बस जी
0: जिंदगी की बेहतर ख्वाहिश रखते हुए यहाँ आने का फैसला किया। जब आप यहाँ आए उस वक्त आपके जहन में किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी?
1: भाई आदमी देखिए कोई भी कंट्री में आता है, शुरू में तो मैं बैचलर ही था, शादी मेरी बाद में हुई, तो मैं सन 2000 में आया था, मुझे अभी तकरीबन 3 दहाइयां हो चुकी हैं।
0: क्या बात।
1: तो सोच के हाँ जी सोच के आदमी यह आता है कि कुछ अर्था हम रहेंगे और कुछ अच्छा सेविंग वगैरह करके अपने मुल्क चले जाएंगे। लेकिन ये मुल्क ऐसा है कि ये मतलब बुलाता है फिर छोड़ता नहीं है, बस
0: क्या बात।
1: इसकी मतलब वो इसलिए छोड़ता क्योंकि इतनी सहूलतें, इतनी अच्छा इन्वॉल्वमेंट, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छी सेफ्टी, दिल नहीं करता।
0: क्या बात है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इमरान साहब आपका पहला इम्प्रेशन दोहा के बारे में क्या रहा?
1: क्या पूछ लिया
0: क्या याद
1: देखिए आज की जो लिस्टर है तो उनको तो यही मालूम है कि हमद इंटरनेशनल है उनके लिए। हाँ बहुत पुराने कुछ ही लोग हैं, मतलब हैं होंगे आप बहुत लोग होंगे जो दोहा इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं। जी जी जी। तो मैं ये भी एक बड़ा जबरदस्त है मामला क्योंकि मैं मुंबई से कतर एयरवेज से मैं दोहा आया और फर्स्ट डे को जो जिसके जरिए आया था ट्रेवल एजेंसी उन्होंने फैक्स किया यहाँ पे कंपनी में मिस्टर अली इमरान
0: का फैक्स चलते थे। क्या बात।
1: फैक्स होता था, ईमेल वगैरह नहीं था, फैक्स था वो, और मोबाइल भी नहीं थे उस वक्त, मोबाइल भी नहीं थे, लैंडलाइन थी।
0: क्या बात।
1: तो मुझे फैक्स कर दिया, मैं नया आदमी बिल्कुल, वो जो बाद में मालूम चला कि जो हमारे अकाउंटेंट थे तो उन्होंने जब वो थर्सडे को ऑफिस बंद हो जाता है शाम को तो वो चलो ने कहा मैं इधर फैक्स मशीन को देख लो कुछ है, तो मेरा फैक्स मशीन रखा था, तो वो कह रहे थे अगर मैं फैक्स मशीन नहीं देता तो नेक्स्ट डे फ्राइडे था, छुट्टी थी, और मेरी सैटरडे को सुबह मेरी फ्लाइट थी, तो मैं एयरपोर्ट पे ही रहता। तो बहरहाल वो मेरे साहब आए, जो पीआरओ आए वहाँ पे, बहुत अच्छा वेलकम किया, दुआ निकलती, जब मैंने देखा बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बिल्कुल एक ताजी सुबह थी, जबरदस्त, बहुत अच्छा वेलकम।
0: क्या बात है,
1: सन 2000 से अब 2026 से तकरीबन 26 साल हो गए, देखिए आधी जिंदगी मेरी यहाँ निकल चुकी है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे। सर क्या कोई ऐसी चीज थी जो आपके लिए बिल्कुल नई या अनएक्सपेक्टेड थी दोहा में?
1: क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से आया हूँ, तो मैं तो मतलब सेम कंट्री जीसीसी के सेम ही होते हैं। सऊदी अरब तो बहुत बड़ा कंट्री, वहाँ पे 4 साल था, और वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आपके पास अकामा नहीं है बाहर नहीं जा सकते, चेकिंग होती है बहुत। लेकिन मैंने कतर में आज तक 26 साल हो गए, 27 साल हो गए मुझे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी चेकिंग इस तरह से, क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन क्या है, किस तरह से करना है, असामा अपडेट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना है, वहाँ पे बहुत चेकिंग होती है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
0: हमारे कतर में आसानियां इतनी हैं हर चीज को लीगलाइज्ड और सही तरीके से रखने की कि किसी को कोई परेशानी होती ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: जी जी
0: बिल्कुल सही।
1: और दूसरे कंट्री में थोड़ा फैमिली के साथ आदमी थोड़ा सा हिचकिचाता है कि अभी रात के 2 बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, अकेले कैसे जाएं। यहाँ पे आप हो या आपकी फैमिली, अकेले भी 2 बजे 3 बजे ट्रेवल कर सकते हैं, सेफेस्ट कंट्री इस वक्त, मतलब दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कतर का सेफेस्ट कंट्री, पीसफुल कंट्री है।
0: आपका पहला प्रोफेशनल कह लीजिए या वर्क प्लेस एक्सपीरियंस दोहा में कैसा रहा?
1: मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरा तो गवर्नमेंट के इदारे से था, कतर फोर्सेस में था, बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पे जो ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। किस तरह से मतलब वो लोग कतर आर्म फोर्सेस जो है, एक तो प्रोफेशनल लाइफ होती है, एक होता है पर्सनल लाइफ, किस तरह से अपने आप को आप उनसे बात करेंगे, उनका कपड़े पहनने का सलीका, बात करने का सलीका, जो कतर की ट्रेडिशन है सब बताते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है वो एक्सपीरियंस, बड़े बड़े जो ऑफिसर से मतलब मिलिट्री,
0: उनसे मुलाकात हुई,
1: रूल रेगुलेशन,
0: मजीद कतर के कल्चर को देखने और समझने का आपको मौका भी मिला, माशाल्लाह क्या बात है।
1: वहीं से मुझे मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई।
0: क्या बात है सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेट्रो का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतना टाइम
1: जी देखिए, जो मेट्रो, जो मेट्रो तो बहुत साल हो गए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी मौका मिला जब मेरी फैमिली थी, तो हमने पूरा एक दिन पूरा मेट्रो में हमने लगाया, ये हमारा मशरिफ से लेके बकरा तक, फिर बकरा से लेके मशरिफ तक, बहुत ही अच्छा लगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन उसकी जो मुझे मेट्रो की जो जो खसूसियत, जो उसकी क्या, किस तरह का मेट्रो है, वो मुझे FIFA 22 में मालूम हुआ मेट्रो क्या है, क्योंकि मेट्रो फीफा में मल्टीनेशनल कंट्री से लोग आए थे
0: जी।
1: तो मेरी उनसे सबसे बात हुई, तो कहने का कि हमने इस तरह का मेट्रो और फ्री मेट्रो कहीं नहीं देखा, पूरे गेट खोल दिए थे, जितने भी बाहर से लोग आ रहे सबके लिए फ्री।
0: क्या बात है, क्या ये बहुत बड़ी हमारे कतर की खासियत है, हर एक के लिए सबका ख्याल रखा जाता है। सर आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं, कुछ इमोशनल और स्ट्रगलिंग क्वेश्चंस जो हैं उन पे नजर डालते हैं। क्या कभी आपको दोहा में तन्हाइया, होमसिकनेस महसूस हुई?
1: जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल हुई है। हाँ देखिए, कोई भी आदमी अपने माँ बाप को, बहन भाई को, फैमिली को छोड़ के आता है तो उसको होमसिकनेस तो होगी, ठीक है। लेकिन शुरू के कुछ दिन हमको महसूस हुआ, बिल्कुल फोन करते थे उस जमाने में, तो आप देखो टेलीफोन बूथ होते थे हर जगह, तो हमको कॉइन्स परचेज करना पड़ता था, कॉइन्स हम डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं,
0: सही।
1: तो वो बातें खत्म नहीं होती थी, बातें खत्म नहीं होती थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा था। फिर एक दौर था खतों का दौर, जो आजकल की जनरेशन को नहीं मालूम, लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक वो खतों का, लेटर लिखने का दौर फिर से आ जाए।
0: तो सर जब घर की याद आती थी तो आप अपने आप को कैसे संभालते थे?
1: बस भाई क्या, नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे अल्लाह पाक सबर दे। अच्छा उसके कुछ ही दिन आने के बाद ऐसा मुझे यहाँ पे दोस्तों का वो मिला जो कि अभी भी बरकरार, कुछ ऐसे दोस्त मिले। देखिए आपको ये है कि आपको दोस्त अच्छे भी मिलते हैं, खराब भी मिलते हैं, सोबत का असर जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से फैमिली फ्रेंड ऐसे मिले जिनकी दोस्ती अभी अभी भी मौजूद है, और अल्लाह पाक हम दोस्तों की दोस्ती सलामत रखे।
0: आमीन।
1: और हमने एक उसका नाम दिया है, हमने अपने एक फ्रेंड सर्कल का नाम दिया है बज़्मे यारा।
0: क्या बात है,
1: बज़्मे यारा में हाँ 7-8 लोग हैं, फैमिलीज वाले हैं। मेरी फैमिली यहाँ पे थी, लेकिन 2000 में मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, 12th वगैरह कर लिया था, तो हायर स्टडीज के लिए मेरे बच्चे इंडिया चले गए।
0: क्या बात है।
1: लेकिन अभी भी ये नहीं है कि मेरी फैमिली है कि मेरे दोस्त मुझसे नहीं मिलते, लेकिन अभी भी बराबर कभी भी मैं रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी अच्छे में बुरे में मेरे सबसे आगे खड़े हुए थे, सबसे पहले हम हैं।
0: क्या बात।
1: तो वही वजह है यहाँ पे कतर में रुकने की।
0: तो सर ये तो आपने कतर की फैमिली का जिक्र किया, अब ये बताइए कि आपकी फैमिली जो है, क्या आपकी जर्नी में उनका कोई खास रोल रहा या उनका कितना हाथ रहा?
1: बिल्कुल बिल्कुल रहा। मेरी देखिए, मेरी 2002 में शादी हुई, अलीगढ़ से ही मेरी शादी हुई।
0: ओके।
1: और उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ पे आ गई, तो मेरी मिसेस ने बहुत कोऑपरेट किया यहाँ पे, फिर हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए माशाल्लाह, बहुत अच्छे में बुरे में। ये नहीं है कि मेरी फैमिली अच्छे अच्छे में मुझे साथ दी, नहीं, जब मेरा वक्त खराब था उसमें भी मेरे आगे खड़ी हो गई, जब मेरा वक्त बुरा था मेरी फैमिली मेरे खड़े हो गई।
0: क्या बात है,
1: बहुत कोऑपरेटिव अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक।
0: अल्लाह ताला
1: देखिए, जब आदमी शादी देखिए, जब शुरू के शादी के कुछ 10 दिन होते हैं तो मोहब्बत कम होती है, जिस तरह से आगे आके बढ़ जाती है मोहब्बत और स्ट्रांग हो जाती है, जो बॉन्डिंग है लव ऑफ बॉन्डिंग वो और बढ़ जाती है।
0: क्या बात है।
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
6: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
5: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360।
7: कतर बिजनेस 360
5: जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
6: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107।
5: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
6: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
8: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
9: द रिक्वेस्ट शो
8: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: तो सर दोहा में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, अगर जानना चाहूँ तो?
1: दोहा पे टर्निंग पॉइंट तो मैं बहुत सारे उसमें है, अपॉर्चुनिटीज
0: जो
1: आती रही मैं जी वही टर्निंग पॉइंट है मेरा। पहले मैं कतला फोर्सेस में करता था, फिर मैं पब्लिक फोर्स अथॉरिटी में आ गया, फिर अभी पार्सन्स में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने टर्निंग पॉइंट मिले हैं, तो बस मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ मेरे लिए कम है। और उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट का, यहाँ के सिस्टम का,
0: क्या बात,
1: पीसफुल सिस्टम, हर चीज आसानी से हो जाती है
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: देखिए यहाँ की मैं टर्निंग पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी दूसरे कंट्री में जाएंगे, बच्चा पैदा होते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए जो सिस्टम है हॉस्पिटल, बहुत ज्यादा चार्जेबल है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी यहाँ पैदा हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ तक कि जब हमको वो डिस्चार्ज कर रहे थे हमारी मिसेस को, बच्चों को, तो साथ में हमको गिफ्ट दिए बच्चों के लिए, दूध पैंपर्स, ये सब, ये मेरे ख्याल से और कंट्री में नहीं है।
0: क्या सच्ची बात है,
1: जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कतर गवर्नमेंट का वो लाजवाब है,
0: वो भी लाजवाब,
1: नोट करना चाहिए।
0: और मेडिकल के हवाले से भी आपने बताया, क्या बात है, क्या बात है सर।
1: जी मैं मेडिकल के हवाले से, यहाँ बीमार होता है आदमी, ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो आप दूसरे कंट्री में जाएंगे आपको हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ही रियाल खर्च होंगे आपके, और जो आपको हॉस्पिटलिटी मिलेगी वो हाई फाइव स्टार मिलेगी आपको, लगेगा नहीं आप कहाँ पर है, और वेल एक्सपीरियंस कंसल्टेंट डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है।
0: बात है, बढ़ते हैं आगे और दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। सर कोई ऐसा वर्क प्लेस या डेली लाइफ का ऐसा मोमेंट जो आज भी यादगार हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो?
1: वर्क प्लेस का, भाई वर्क प्लेस वही है, कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कतर गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीजें घूमने के लिए, शहर के लिए, कॉर्निश जबरदस्त, लाजवाब मॉल जबरदस्त है, आप चाय पीने जा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट करने जा सकते हैं, नाश्ता करने जा सकते हैं। कतर ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे आपको मल्टी क्विजिन मिलता है, खाना हर कंट्री का मिलता है, पाकिस्तान का भी मिलेगा, नेपाल का भी मिलेगा, बांग्लादेश का भी मिलेगा, इंडिया का भी मिलेगा, अरब कंट्री का भी मिलेगा, तो आप लाजवाब खाने हैं यहाँ पे, लाजवाब खानों के साथ यहाँ पे लाजवाब लोग हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है अली इमरान साहब। सर क्या आप किसी ऐसी शख्सियत से मिले जिन्होंने आपकी सोच या जर्नी को बदला, या कुछ उनका बड़ा हाथ था इसके अंदर, किसी को मेंशन करना चाहते हैं?
1: जी मैं आपको मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पे अराइव हुआ कतर में सन 2000 में, शाम को ही एक जगह मुझे जाना था, मैं कुछ अलीगढ़ से उनके लिए सामान लेके आया था, वहाँ पे एक शख्सियत से मुलाकात हुई, वो हमारे ही शहर से हैं, अलीगढ़ से हैं, और यहाँ पे मुखीम थे, वेल शख्सियत, बहुत जबरदस्त शख्सियत, उर्दू से मोहब्बत उनकी, और लाइक माय अल्टर ब्रदर, तो उनके साथ मैं रहा हूँ करीब 3-4 साल, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, जब मैं अकेला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी फैमिली, वो मुझे सपोर्ट करते थे, तो वो मुझे बातें बताते थे, और ही वॉज द फर्स्ट लिसनर जो उस जमाने में, आपको बता दूं अभी तो हम FM है 107, उस जमाने में AM था, वो AM सर्विस होती थी, और वो AM सर्विस शाम को शुरू होती थी, 6 बजे से शायद 6 से 10 बजे तक होती थी, तो हम लोग इंतजार करते थे कब हमारा वो आएगा, हम रेडियो पहले तो अब तो मोबाइल वगैरह में सुनते, रेडियो पे हमारे मेरे रूम में भी रेडियो था, तो हम 6 बजे रेडियो लगा देते उस जमाने में, सैफुर रहमान साहब, मैं खास सैफुर रहमान साहब अभी भी होंगे, बानो सुलेमान मैम, और बहुत सारे सीनियर जो थे उर्दू के, और वहीं से मुझे उर्दू बोलने का, उर्दू लिखने का शौक पैदा हुआ। और जब आपने कहा कि आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगा दोहा डायरी में, तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ उर्दू, तो मैंने दोहा डायरी के लिए 2-3 अल्फाज लिखे हैं, आप मुलाजा फरमाइए।
0: बिल्कुल शेयर कीजिए।
1: दोहा डायरी की महफिल है निराली,
0: वाह,
1: दोहा डायरी की महफिल है निराली, उर्दू की खुशबू बातें हैं प्यारी,
0: वाह,
1: सरवर मिर्जा की दिलकश मेजबानी,
0: वाह
1: जी आपका दावा आ गया, देखिए सरवर मिर्जा की दिलकश मेजबानी, हर किस बन जाए यादों की कहानी,
0: वाह वाह वाह,
1: ये है दोहा डायरी,
0: वाह वाह वाह।
1: तो ये उर्दू, देखिए उर्दू जो चूंकि मेरी मदर टंग है और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बोली जाती है, और 107 ने मुझे बड़ा मेरी उर्दू इम्प्रूव करने बड़ा साथ दिया, क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके चैनल पे उर्दू सीखने का बहुत मौका मिलता है, और जो आपके आरजेस हैं जिस तरह के प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या उर्दू बोलते हैं उसी से शौक होता है।
0: क्या बात है सर। सर डेली रूटीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे फेवरेट चीज क्या है दोहा में आपकी डेली रूटीन के हिसाब से अगर बात करी जाए?
1: भाई डेली रूटीन तो वही है कि सुबह जल्दी उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर ऑफिस गए, फिर वहां से आए, फिर नमाज, फिर अगर आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, या शाम को वॉक। अभी तो गर्मी है, सर्दियों में तो मैं अक्सर मैं कॉर्निश पे या अपने मोहल्ले में भी वॉक करने जाता हूँ। तो यही डेली रूटीन है। वीकेंड वगैरह पे हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉयमेंट होता है, जबरदस्त होता है माहौल।
0: सर कभी ऐसा हुआ कि आपने गलत डायरेक्शन या रूट ले लिया हो और बाद में आपको ख्याल आया हो कि मैं तो गलत आ गया हूँ, और एक ये याद बन गई हो, एक फनी मोमेंट बन गया हो, पहले तो ये मैप वगैरह नहीं होते थे तो आप ऐसे ही सफर करते होंगे, तो इसके हवाले से कुछ ऐसी कोई याद
1: मैं आपको बताऊं। देखिए पहले बोलते थे कि भाई हमारा घर मतार कदीम में है, या हमारा घर ओम सलाल मोहम्मद में, हमारा घर वकरा में, ठीक है। पहले तो मैं घर कुछ नहीं थे, बस उन्होंने कहा भैया देखो पहला राउंड अबाउट जो है उसके बाद दो हम आएंगे, वहां से लेफ्ट लेना, तीसरा मकान हमारा है, ये एड्रेस होता था, तो आदमी उसी से जाता था। तो कई बार हम रास्ता भूले हैं, फिर वहां पे मोबाइल नहीं होता था तो किसी दुकान पे जाके टेलीफोन वहां से करते थे, भाई किधर आ गया, मैं यहाँ पर हूँ, ये दुकान का नाम ये है, ये बताओ। अच्छा तुम बिल्कुल शरीर में आ गए हो, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ो, राइट लो और पहला कट लो। तो ये भी बड़ा अच्छा था माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था।
0: क्या बात है सर। एक और बहुत खास बात जो मैं करना चाहता हूँ, जो हम आज तक देखते आए और ये हमेशा से कतर की रिवायत में रहा है कि कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपकी मदद की हो, आप रोड पे परेशान हो, कोई आपको जरूरत हो, तो हम देखते हैं हमारे कतरी माशाल्लाह जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, तो ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ?
1: बिल्कुल हुआ साहब, ये तो आपने बहुत पुरानी, मेरे ख्याल से आई थिंक ये सन 2004 या 5 की बात है, फ्राइडे का दिन था, नमाज के बाद हमारी फैमिली ने कहा चलिए कॉर्निश पे चलते हैं, वो वकरा फैमिली बीच है, कुछ बारबेक्यू वगैरह का प्रोग्राम था, और भी फैमिली आई थी, तो मैं अपनी गाड़ी जो है अपनी कार अंदर तक थोड़ा सा ले गया था, और बिल्कुल समंदर के रेत में वहां तो पहुंच गई हमारी गाड़ी, तो खाना वाना खा लिया, जब हम पैक कर रहे हैं, बकरी पर डैम हो गया था, अंधेरा हो रहा था, और मेरी गाड़ी रेत में फंस गई और मेरी नहीं निकल रही, पूरी लोग जा रहे हैं, और एक आधी फैमिली थी, तो एक खतरी फैमिली में बैठी भी थी, उसके बच्चे भी थे, बड़े बड़े बच्चे थे वो भी थे, और वो मुझे देख रहे हैं। अब वाइफ ने कहा इनसे बोलो, मैं बोला अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग भाई यहाँ के हैं, फिर बोलने के बोलो जाके, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो देखिए वो फौरन उठ गया हुआ जो कदरी बहुत ही अच्छा था, और बोला कि माफी मुश्किल, क्योंकि उस दफाते मुझे अरबी नहीं आती थी, तो वो अपनी गाड़ी से रस्सी लेके आया बेचारा, वो नीचे बैठ गया जमीन, उसके पूरे कपड़े खराब हो गए, सफेद दो पहने हुआ था बेचारा वो, तो बड़ी दिल से दुआ पूरी उसने लगा के मेरी गाड़ी को बाहर तक निकाला, उसकी गाड़ी में ठंडे पानी की बोतल थी वो दिया, बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह चॉकलेट थे उनको वो दिया, हमको दिया, वो जानने पहचान आप देखिए वो अल्लाह ताला का फरिश्ता। ये तो आम है, आप रोड पे खड़े हो जाइए, कोई भी कोई ना कोई रोक देगा, पेट्रोल खत्म हो गया खड़े होके कतरी फौरन रुकेगा अपनी गाड़ी से पेट्रोल या अपनी गाड़ी में लेके जाएगा, सबसे आगे रहते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है सर,
1: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस
0: जी। बिल्कुल ये तो है ही, और हमेशा से हम ये चीज देखते आए हैं, और इसीलिए अल्लाह ताला
1: इससे अच्छी बात यहाँ की पुलिस जो है, आप हाईवे पे खड़े हो जाए एक कॉल करिए विद इन सेकंड सामने से पुलिस आ रही है, हेल्प के लिए तैयार है, ये नहीं कि आप घंटों परेशान है खड़े में कोई नहीं, एक कॉल करें विद इन सेकंड आपके पास सामने आ जाएंगे।
0: सही
1: ये मैंने देखा है सब, और ये कंट्री हकीकत है ये।
0: बहुत सही, बिल्कुल ऐसे ही है, और हर वक्त तैयार भी रहते हैं और हर वक्त मौजूद भी रहते हैं जहां भी जरूरत होती है लोगों की। सर अब अगर दोस्ती के हवाले से बात करूं तो आपने यहां अपने क्लोज दोस्त जो है वो कैसे बनाए?
1: देखिए दोस्त बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, आपका अखलाक, आपकी मोहब्बत ये है, लेकिन मुझे शुरू से ही इतने अच्छे दोस्त मिले, क्या कहना, वाह वाह वाह वाह वाह, हर चीज में उनके लिए मैंने कहा है दोस्तों के लिए, किसी का शेर है कि मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर, मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर फूल सारे गुलाब रखता हूँ, दोस्त कम है जरूर मगर जाना जो भी रखता हूँ लाजवाब रखता।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अली इमरान साहब।
1: जी जी जी जी, क्योंकि आप बगैर फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि आप उनसे हर चीज शेयर कर सकते हैं, खुशी की भी बातें शेयर कर सकते हैं, गम की बातें भी शेयर कर सकते हैं, वो रहना जरूरी है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त जो भी मिले लाजवाब मिले साहब, कम है दोस्त मेरे, ये नहीं है कि मेरे 50 दोस्त हैं, 100 नहीं, कम है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है जो एक आवाज पे लबैक बोल रहे हैं।
0: खुश रखे, खैर आफियत से रखे।
1: जैसे हम लोग शाम को

0: हमको शाम को हम लोग कहते हैं कि भाई शाम को मिलना है, अच्छा भाई अभी तो दो लोग हो गए, दो लोग और कर लो, फिर चार लोग हो जाएंगे, फिर हम बैठेंगे, फिर हम बैठते हैं, खूब अच्छी बातें होती हैं, बहुत मजा आता है
1: जी, जी, हम आखिरी सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं, वक्त भी हुआ जाता है। अगर आप दोहा को एक खत लिखें तो आप क्या लिखेंगे?
0: क्या लिखूं मैं, क्या बताऊं सर मैं आपको, सब बहुत सारी, देखिए मैं जिस मुकाम पे हूं इसमें आधा क्रेडिट जो है दुआ खतर को जाता है, जो अपॉर्चुनिटी मिल मुझे यहाँ पे मिली है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई।
1: क्या बात,
0: वाह वाह। और मेरी फैमिली जो मेरे भाई हैं इंडिया में, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था सन 1995, उसके बाद मेरे बड़े भाई ने लाइक माई फादर, उन्होंने हेल्प करी हर चीज में, कतर आना है, पैसे देना है, कुछ बिजनेस करना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये मेरे पास पैसे नहीं है, चलो मैं दे दे रहा हूँ, तुम मुझे बाद में दे देना, तो इस तरह का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एक आवाज से मेरा भाई खड़ा हो जाता है, मेरा मतलब मुझे फादर की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उसकी फैमिली हमेशा अच्छी रखे,
1: अल्लाह ताला खुश रखे। दोहा को आप एक लफ्ज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
0: देखिए साहब, मैं दोहा को मैं एक लफ्ज में तो नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी मुझे किताब लिखनी पड़ेगी। आपके फोन से पहले मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने कतर के लिए दो तीन लाइने लिखी, मैं शायर तो नहीं हूं लेकिन हाँ, कतर की धरती रोशन है, कतर की धरती रोशन है, तरक्की से ये गुलशन है, अमीर कतर की रहनुमाई मुल्क की बड़ी ताकत है, अमन का परचम ऊंचा रहे, तरक्की का सफर जारी रहे, हम सब की ये दिल से दुआ, कतर हमेशा खुशहाल रहे।
1: क्या बात कर रहे, क्या बात है सर। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे नए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए कोई एक पैगाम?
0: मैं उससे पहले मैं दो शेर पढ़ना चाहता हूँ, ये है बेटियों के लिए, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है माशाल्लाह, आपकी भी होंगी, बहुत बेटियां हैं, हम लोग जो अपने मुल्क से अपनी फैमिली को अपने बेटियों को छोड़ के आए उनके लिए है। हमारे दोस्त हैं अबू धाबी में, उन्होंने लिखा है कि चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके, चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके, वरना ए लगते जिगर कौन कमाने निकले। और अभी देखिए, अभी बकरीद थी, नमाज पढ़ा था मैंने, तो अकेले ही हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने गए, तो हम इंडिया पाकिस्तान में हम लोग जाएंगे तो सब लोग दोस्त गले मिलते हैं, देखता माहौल लगता है, लेकिन ये भी हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी जो लोग हम लोग अपने वतन से दूर हैं यहाँ पे दूसरे कंट्री में हैं, तो उनको ईद वगैरह पे जो है तो उस पे दो तीन लाइन सुनिए, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर है जिनके लिए कमाना है, खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है, और ईद के हवाले से कि नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा। आप देखते हैं ना, नमाज पढ़ ली अब उसको गले मिलना है
1: जी।
0: नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, कहीं कोई मुझे मिले उसे गले लगाना है, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है,
1: क्या बात है। बहुत बहुत
0: तो यही है हम लोगों का जी जी, यही हम लोगों का यहाँ पे जो रहते हैं, लेकिन कतर में रह के बहुत ही हमको अच्छा लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे कतर को और अच्छी तरक्की दे, इसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करे और हमेशा खुशहाल रहे, यही दुआ है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, बहुत अच्छी बातें, दिल तो करता है कि आपसे बात करते रहें, समझते रहें, मगर वक्त का भी मसला होता है, तो आज के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमने ज्वाइन किया।
0: भाई सरवर मिर्जा साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, और मैं पूरी आपकी 107 टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात करूं।
1: मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच।
0: और मेरी नेक ख्वाहिशात दोहा डायरी के लिए 107 के लिए हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब आज हमें वक्त देने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़।
1: तो दोस्तों ये थे अली इमरान साहब अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमारे लिए वक्त निकाला, अपना ख्याल रखिए, बस इतना याद रखिए कि जिंदगी का हर सफर एक कहानी है, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
2: टॉप 10 काउंटडाउन।
3: भाई देखिए, साफ सीधी बात है, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी को, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे। ये मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अभी जो ये टॉप 10 है हमारा FM 107 का, इसमें आपका स्वागत है। बैठिए, ये कुर्सी लगाए, कोई टेंशन नहीं, इसमें बहुत बदलाव आने वाले। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, मैं फैन हूँ भाई, यू कैन कॉल मी। आजकल क्या चल रहा है वो जेंजीज में, पगलू। तो मैं इमरान पगलू, तो इमरान हाशमी की आवारापन के जब तक गाने नहीं आते, ये लिस्ट में अभी कंपटीशन थोड़ा हल्का है। कंपटीशन जरूर है, लेकिन कंपटीशन अभी आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड अभी से ही आने वाले एपिसोड्स के लिए। बट फॉर नाउ, वेलकम टू द शो। मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, एनी लिस्ट आप जानते ही कैसे हम चलाते हैं, है ना। तो गाने फ्रॉम 10 टू 1 चले, मतलब कि 10 से शुरू होगी गिनती और टॉप का गाना फिर आखिर में आएगा। मगर इस पूरी लिस्ट में कुछ चीजें बदली हैं, कुछ चीजें अभी भी वहीं पर ही हैं, कुछ गानों ने अपनी जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है और कुछ गानों ने डिसाइड कर लिया मैं तो चला, तो लिस्ट से बाहर भी हो चुके हैं। कुछ गानों के बाहर होने की वजह कोई ज्यादा खास नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नो Sometimes you have to move few songs ताकि बाकी गानों को जगह मिल सके, एक मौका मिल सके। तो हमारी लिस्ट ऐसी है कि जहाँ पे हम गानों को एक परफॉर्म करने के लिए पोजिशन भी देते हैं कि चलो इसको 9 नंबर पे रखते हैं, क्या ये गाना आगे जाएगा नहीं जाएगा। That's how we take this forward. Healthy competition is a good competition, right? So social media handles FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद है। प्लीज हमसे जुड़िए एंड अपना भी गाना बताइए। हो सकता है कि आपको कोई गाना हो जो आपको पसंद आता हो और आपको लगता है कि लिस्ट में होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो लेट मी नो। मगर आज के गानों में से, हिट नंबर्स में से, तो रूल बड़ा सिंपल है। जो गाने वायरल हुए अपने डांस नंबर्स की वजह से, अपने डांस कोरियोग्राफी की वजह से, कुछ गानों के व्यूज ज्यादा रहे, कुछ गानों के व्यूज ज्यादा नहीं थे बट दे वर पॉपुलर बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फेसेस। तो शुरू करते हैं आज का शो विद 10, 9 and 8। ठीक है, तो गाना नंबर 10, इस गाने ने अपनी जगह यहां पर बना ली है 10वें पोजीशन पे। आई थिंक ये बहुत जल्दी ऊपर भी जाएगा। स्टीवन बेन की आवाज में गाना है। ये वो सिंगर है जिसको मैंने परफॉर्म करते हुए लाइव कतर में देखा एंड ही परफॉर्म्ड रियली रियली वेल। इस बंदे को मैं जानता हूं इन अ वे कि ऐसा लगता है इसकी आवाज से सुनकर, इसकी आवाज सुन के पहली बात तो ऐसी फील आती कि ये अपना ही कोई दोस्त वोस्त है जो गा रहा है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम बिकॉज ही साउंड्स वेरी ग्राउंडेड। अब मैं कैसे समझाऊं, कुछ कुछ लोगों की आवाज में एक एक्स फैक्टर होता है, जैसे अरिजीत सिंह, सो यू नो के जब वो गा रहे हैं तो यू नो के इस आदमी ने हद से ज्यादा रियाज किया है और बहुत ही मास्टर क्लास आवाज है और ये आदमी कुछ भी गा सकता है, क्या हरकतें ले रहा है। फिर के साहब आते हैं जिनकी आवाज को सुन के हमेशा से लगता था हिज लेगेसी विल लिव ऑन, उनकी आवाज को सुन के लगता था यार ये आदमी जो कुछ भी गा देगा ना, जिस लिरिक्स को छू देगा वो सोना हो जाएगी। दैट्स हाउ ही वाज। मैं मॉडर्न सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, पहले के सिंगर्स में तो फिर लंबी लिस्ट हो जाएगी। वैसे ही स्टीवन बेन का है, द मोमेंट ही स्टार्ट सिंगिंग एनी सॉन्ग इट फील्स वेरी ग्राउंडेड। ऐसा लगता है कि यार ऐसे तो यार बिल्कुल ऐसा लगता है मैं इसको जानता हूँ, मेरे साथ में सफर कर चुका है और ये गा रहा है, और ये ही ब्यूटी इस गाने में है। गाने का नाम भी इत्तफाकन है सादगी।
4: सादगी तो हमारी जरा देखिए,
3: बहुत सादगी से गाया है स्टीवन बेन ने गाना, और ये इंडियन पॉप कल्चर में ऐसे गाने आने चाहिए, बट फ्यू पीपल आर डूइंग इट एंड स्टीवन बेन इज वन ऑफ देम। सो नंबर 10 पे जगह बनाइए। वीडियो में बहुत ही शानदार दिख रहे हैं वो, एक कव्वाल के तौर पर नजर आ रहे हैं। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड ब्यूटीफुल लिरिक्स। ओरिजिनलिटी को हमेशा पूरे नंबर मिलने चाहिए, एफर्ट्स के नंबर बिल्कुल मिलने चाहिए, और एफर्ट भाई ने पूरा डाला है, ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स इट, एंड दैट्स व्हाई स्टीवन बेन का गाना सादगी इज एट नंबर 10 ऑन द लिस्ट। अब अगला गाना देखो, पिक्चर के बारे में थोड़ा सा कमेंट करूंगा, रिव्यू तो हमारे फजील भाई दे चुके हैं। वेलकम टू जंगल का पहला हाफ ऐसा है कि आपको लगेगा अरे ये मूवी तो यार ठीक ठाक जा रही है, फिर सेकंड हाफ में आप बोलेंगे मैंने जैसा सोचा था वैसी है। तो मूवी के बारे में नो कमेंट्स, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन 100 times, मगर जो गाना है वो 9 पे आ चुका है। ये गाना ऑफकोर्स नॉस्टैल्जिया है, ये गाना ऑफकोर्स एक फैन फेवरेट गाना है, ये गाना ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक फैन सर्विस है, ऊंचा लंबा कद। ये तो मैं जानता था, ये आना ही है द मोमेंट दे अनाउंस के वेलकम का तीसरा पार्ट है और वेलकम टू जंगल है और अक्षय कुमार है। वी ऑल न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन। ऊंचा लंबा कद का एक नॉट रिप्राइज्ड मगर एक अलग वर्जन 2.0 इस मूवी के अंदर है। दैट हैज बीन प्लेस्ड एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट। अक्षय कुमार इज अगेन परफॉर्मिंग एंड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय द वे। मूवी का एक बंदा जो अपने कंधे पे पूरी मूवी को जैसे ना तैसे ले गया है वो अक्षय कुमार ही है। And that also shows in the song as well. He's still enjoying the track. वो पता लग रहा है कि आदमी जब वीडियो में आता है तो कैसा, मतलब is he enjoying or not? And Akshay Kumar is still enjoying the track. ऊंचा लंबा कद, and that's why we enjoyed it. And that's why number 9 पे है ऊंचा लंबा कद। हाय, अब गाना नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। गाना नंबर 8 जो है, मेरी शुरुआत में इस गाने को सुनके एक दो कंप्लेंट्स थी, पहले वो बता दूं। मैं लोग सोच रहे होंगे कंप्लेंट भी कर रहा है, गाने को 8वें नंबर पे डाल रहा है। जो कंप्लेंट मेरी ये थी कि गुरु रंधावा का एक गाना आया था कतल, आंख कतल, वो याद है ना आपको? तो उसके जो जो जो उसकी कोरियोग्राफी थी वो हिट हुई, गाना बड़ा हिट हुआ, लोगों ने बहुत रील्स बनाई और हमारी लिस्ट पे एक टाइम पे वो नंबर 1 पे भी था। फिर गाना आया ये वाला जो 8वें नंबर पर है, दिस इज फ्रॉम द मूवी धमाल 4। गाने का नाम है कहर, और कहर जो गाना है इसकी भी कोरियोग्राफी वायरल हो रही है, लोग रील्स पे रील्स बना रहे हैं भर भर के। मगर इफ यू लिसन टू दिस सॉन्ग क्लोजली, अच्छा चलो मैं गलत हूं, ठीक है मैं मान लेता हूं मैं गलत हूं, आप ये गाना सुनना एंड मुझे बताना क्या आपको कतल सॉन्ग जो गुरु रंधावा का है वो और ये दोनों सेम नहीं लग रहे?
5: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़ी, शहर कुड़ी कहर कुड़ी,
3: मतलब द वाइब इज सेम, लिरिक्स हैव बीन चेंज्ड एंड इट इज स्टिल ब्यूटीफुल। ये मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट म्यूजिक है पर लिरिक्स चेंज करके फिर भी गाना हिट है भाई। ये गुरु रंधावा ही कर सकते हैं एंड दिस इज एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके म्यूजिक वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहां कहां से लोग मॉडल्स ला रहे हैं। नहीं, दोज आर नॉट मॉडल्स बाय द वे, बहुत एक नया कल्चर आया है जो स्लोली सीप इन हो रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस कल्चर को अपनाया। वो कल्चर ये है कि ये लोग सोशल मीडिया पे जिसे देखते हैं, जो बहुत अच्छे डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं टू फीचर इन देयर वीडियो, विच इज रियली रियली ऑसम। एंड एक और पार्ट है, नॉट जस्ट पीपल हु आर गुड डांसर्स या अच्छा डांस करके रील बना रहे हैं उनको काम मिल रहा है, बल्कि उनको भी काम मिल रहा है जो हिडन कोरियोग्राफर्स हैं जिनका नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा, वो लोग कोरियोग्राफी कर रहे हैं और उन लोगों को ये लोग काम दे रहे हैं। अब देखो इसमें कोई भी वजह हो सकती है, अगर मैं सिंपल बोलूं साफ शब्दों में तो ये हो सकता है कि सस्ते में बढ़िया माल मिलना, ऐसा भी हो सकता है। यू नो समटाइम्स यू गो फॉर कोरियोग्राफी और आपको लगता है अरे बाप रे ये तो बहुत पैसे ले लेगा, तो आप ऐसे कोरियोग्राफर्स को ढूंढते हैं जो यंग है, यंग टैलेंट है, हो सकता है ज्यादा प्राइसी भी नहीं है मगर काम उनका परफेक्ट है। एंड ये कल्चर बहुत जरूरी था ना, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ डांसिंग स्टूडियोज जिन्हें रिसेंटली दबा के काम मिला है। एंड गुरु रंधावा हो गए, बादशाह हो गए, चरणप्रीत हो गए, बहुत सारे लोगों ने काम दिया है। एंड ये कल्चर चलना चाहिए बिकॉज लोग जो टैलेंटेड हैं, जिनका करियर आर्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ है, उनका करियर भाई मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। मगर क्योंकि मैं आई कैन रिलेट टू एन आर्टिस्ट, आई थिंक दे आर गेटिंग जॉब्स एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुडोस टू गुरु रंधावा फॉर फीचरिंग अनदर आर्टिस्ट इन दिस एल्बम ट्रैक प्रोबेबली। तो कहर फ्रॉम धमाल 4, धमाल 4 का ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा, वो उस पर मैं कमेंट करूंगा कभी और, मगर दिस इज एट नंबर 8 एंड क्या कोरियोग्राफी है, क्या डांस है, ये भी वायरल हो रहा है। अब जरा लौट के आएंगे तो जरा आगे बढ़ेंगे 7, 6 और 5 की तरफ। ये है टॉप 10 दिस वीक ओनली ऑन FM 107 और सोशल मीडिया हैंडल जैसे मैंने कहा 666-221-07। स्टे ट्यून्ड
6: FM 107 टॉप 10 नंबर 10।

FM 107 Top 10, number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड दिस इज टॉप 10 ऑन द लिस्ट. अभी हम पहुंच चुके हैं 10, 9 और 8 हमने कर दिया है जी. ये सीडी पे चढ़े हम तो 10 पे था सादगी बाय स्टेफन बेन. बहुत सादगी से गाया हुआ गाना, ब्यूटीफुली सॉन्ग. एंड देन 9th पोजीशन पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से, और उसके बाद 8 है कहर धमाल 4 से. अब बारी है 7, 6 और 5वें पायदान की, यानी कि ऑलमोस्ट मिडल ऑर्डर, मतलब मिडल ऑर्डर

0: ही है, तो नंबर सात पे अभी भी टिके हुए हैं असीम अजहर। भाई साहब बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग सॉन्ग मुझे लग रहा था शुरुआत में, यूट्यूब वाले शायद समझ नहीं पा रहे इसको, इतना प्यारा सॉन्ग है अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए, एंड थैंकफुली मैं गलत था, गाना परफॉर्म कर गया, बहुत बढ़िया गया है। आरजू आसिम अजहर की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक है। आसिम अजहर का धीरे धीरे फैन होता चला जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं लग रहा एंड ही इज नो लॉन्गर अंडररेटेड। सो इफ यू हैवंट हर्ड दिस ट्रैक, लिसन टू दिस वन, ओरिजिनल है, ओरिजिनल लिरिक्स है, ओरिजिनल म्यूजिक है। आसिम अजहर की आवाज हमेशा रॉ लगती है मुझे, लाइक वो आवाजें होती है ना जो बिना म्यूजिक के भी अगर कोई गा दे तो आपको लगता है वाह भाई यार क्या सुर लगाए, वैसी आवाज है आसिम अजहर की, यानी ही हैज आउटडन हिमसेल्फ विद एवरी ट्रैक रिसेंटली। तो साथ पे है आरजू, सुनिए आरजू। नाउ कमिंग एट नंबर सिक्स, अगेन आसिम अजहर की ही आवाज है। आई कुड नॉट हेल्प भाई, मुझे रखने पड़े दो गाने इनके, क्योंकि दूसरा गाना भी उतना ही खास है और ये गाना तो वायरल भी हुआ है। तू है वही, तू है वही, असीम अजहर की आवाज अगेन।
1: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।
0: एंड मुझे पता है इसका ऑडियो बड़ा अच्छा लगा, वीडियो जब भी असीम अजहर का आता है मुझे उसकी अच्छी बात ही लगती है कि इफ देर इज अ वीडियो, उसमें कुछ ना कुछ सिंपल चीजें हो रही होती हैं जो आप असल जिंदगी में देख पाते हैं, आपको लगता है हाँ यार ऐसा तो होता होगा। ठीक है, कुछ गानों में ऐसा होता है कि काफी गाने फ्लैशी होते हैं, उनकी वीडियोस में काफी सारी लाइट्स और बहुत ही फास्ट कट्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन असीम अजहर के गानों में कहानी होती है, असीम अजहर के गानों में जो कहानी पिरोई हुई होती है उस पर वीडियो बनाना बड़ा आसान लगता है। एंड असीम अजहर अगर फ्यूचर में AI का सहारा लेके वीडियोस बनाएंगे सो आई वुड नॉट माइंड बिकॉज ही डिजर्व्स इट, ही शुड डू इट। भाई असीम अजहर सारे पैसे जो है ना अपने म्यूजिक पे लगा दो भाई और हमें वीडियो कैसा भी दे दो, मुझे पता है क्योंकि कहानी बहुत अच्छी होती है इनके गानों में। एंड आई लव द फील व्हेन ही कम्स आउट एंड डिलीवर्स अ ट्रैक जिसमें कहानी होती है। बहुत कम ऐसे सिंगर्स बचे हैं जो स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं अपने गानों में। ऑफकोर्स बातें बहुत होती हैं मोहब्बत की, मैं ये ले आया, मैं वो ले आया, मैं घर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बट कुछ गानों में होती है स्टोरी टेलिंग, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ। एंड असीम अजहर इज वन ऑफ दोज पॉप कल्चर आर्टिस्ट जो ऐसा कर पा रहे हैं। रैप में तो मैंने बहुत कुछ देखा है ऐसा, रैप तो हर बार ऐसे ही होता है, मगर हिप हॉप के अलावा भी पॉप कल्चर में ऐसा होना आई एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लव इट। सो असीम अजहर कुडोस टू हिम एट नंबर सिक्स, यह गाना तू है वही। अब नंबर पांच पर जाते हैं, ये पोजीशन बड़ी क्रिटिकल है और ये बड़ी खतरे वाली कुर्सी है। पांचवें नंबर पे जो गाना होता है ये कभी भी इधर का उधर हो सकता है। इस हफ्ते जो गाना है एट नंबर फाइव, ये पिछले हफ्ते भी था, ये है कुंवर साहब का गाना, गाने का नाम है पीछे तेरे। गाना छोटा है मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये गाना 2 मिनट 1 सेकंड का है, मगर इससे ज्यादा का होता तो शायद गाने में और ज्यादा वाइब्रेंसी होती, क्योंकि गाने में पोटेंशियल है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ होता है समटाइम्स आई राइट समथिंग और वो शायद 1 मिनट का मैंने लिख लिया होगा और मैं रैप कर देता हूँ उस जो मैंने लिखा है, एंड देन आई फील कि यार ये है तो अच्छा लेकिन अधूरा सा लग रहा है, अगर मैं 1 मिनट का और गा दूं तो मजा आ जाएगा। वैसा इस गाने के साथ है, लाइक मन भर गया है बट पता नहीं और ज्यादा भूख है कि काश थोड़ा और लिखा था कुंवर भाई ने, ये गाना बहुत बढ़िया है, आई लव्ड इट। ये गाना ऐसा है कि किसी ना किसी मूवी को ये गाना उठाना चाहिए और अपनी मूवी में बाकायदा इसे पेश करना चाहिए कुंवर साहब की आवाज में, बिकॉज ही डिजर्व्स दिस अटेंशन, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस ट्रैक। सो पीछे तेरे एट नंबर फाइव, जैसे मैंने कहा काफी क्रिटिकल पोजिशन है, आने वाले हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है एंड ये पोजीशन खतरे में आ जाती है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मगर फिलहाल एट नंबर फाइव इस पीछे तेरे कुंवर साहब की आवाज में। अब जरा रिवीजन कर लेते हैं, तो नंबर 10 पे रहा सादगी स्टीफन बेन की आवाज, नंबर 9 पे ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से, अ फैंटास्टिक रिक्रिएशन, ऑफ कोर्स नॉट अबाउट द मूवी, आई वुड ओनली टॉक अबाउट द ट्रैक, बहुत बढ़िया है। एंड देन नंबर 8 पे है कहर विद एब्सोल्युटली किलिंग इट विद कोरियोग्राफी और क्या लिरिक्स है, धमाल फोर से गाना। देन नंबर 7 पे है आरजू, अ वेरी सिंपल अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक आसिम अजहर की आवाज में। एंड देन नंबर 6 पे है वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम आसिम अजहर और ये है तू है वही। फिर 5वें नंबर पे है गाना जिसके अंदर भयंकर पोटेंशियल है भाई, गाना है पीछे तेरे कुंवर साहब की आवाज में, कुंवर की आवाज में, एंड इट इज अगेन अ ब्यूटीफुल ट्रैक। तो ये सब सुन लीजिए, क्योंकि अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिस्ट उस पोजीशन पे आने वाली है जहां पे बहुत जल्दी बहुत सारी कुर्सियां छिनने वाली हैं, बिकॉज आवारापन 2 इज कमिंग, बट वारा इज कमिंग, चौहान इज कमिंग, बहुत सारी मूवीज आने वाली है। अगर इन लोगों ने कोई भी पुराना गाना नहीं डाला, एटलीस्ट सवारा पंटू के बारे में कंफर्म हूं क्योंकि मैं फैन हूं, तो आई कैन वाउच फॉर इट, तो वो तो जगह लेने वाला है भाई इस लिस्ट में। बट कितने गाने जो आने वाले हैं 4321, कितने गाने टिके रहेंगे और कितने गाने लिस्ट से बाहर होंगे, कितने गाने नीचे जाएंगे, ये वक्त बताएगा। अब मैं उल्टा नर्वस हो रहा हूं उनके लिए। सो वंस वी आर बैक, बात करेंगे कुछ देर में चौथे नंबर के गाने की, तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की और पहले नंबर के गाने की। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, तो जाना नहीं है आपने, मिलते हैं कुछ देर।
2: FM 107 Top 10 नंबर

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. मैं दूहा वाला कबीर एफ एम 107 पे. एंड अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है उन गानों का. जैसे मैंने कहा, इनकी कुर्सी सबसे ज्यादा खतरे में रहती है, बिकॉज दीज आर द सॉन्ग्स जिनकी कभी भी इधर से उधर हालत हो सकती है. चौथे नंबर का गाना दसवें भी आ सकता है. यहाँ पे परफॉर्म करना बहुत बहुत बहुत बहुत जरूरी है. सो गाना नंबर चार जो है, ये अभी भी अपनी पोजीशन पे है. गाना है शुभ का और गाने का नाम है बाउंस. ये गाना मैंने चौथे नंबर पे अभी भी इसलिए रखा है बिकॉज देयर इज अ रीजन. YouTube काउंट इसके भले ही पीछे हुए, मगर मैंने जब चेक किया तो Spotify और Gaana.com एंड Apple Music पर इसके जो प्लेज हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार. नॉट जस्ट दैट, शुभ भाई ने रिसेंटली कॉन्सर्ट भी किया जिसमें ही परफॉर्म दिस ट्रैक एंड पीपल वर चैंटिंग फॉर इट, क्योंकि म्यूजिक बहुत बढ़िया है. म्यूजिक एक यूनिक है और मैं पता नहीं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स अभी तक कह चुका हूँ, वो तो मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार कहा है इस गाने पे, इस बीट पर, जिस बीट पर शुभ ने गाया है, बहुत मुश्किल है. रैप करना मुश्किल है, पॉप करना तो और ही मुश्किल है. बट अमेजिंगली डन, द ट्रैक इज फाइन, फिनेस के साथ है और उतना ही अच्छा वीडियो है. बट क्या ये अगले हफ्ते भी चौथे नंबर पे रहेगा? आई डाउट इट, बिकॉज बहुत सारे परफॉर्मिंग गाने आने वाले हैं और अभी इस गाने को और परफॉर्म करना पड़ेगा. If this Gaana wants to stay at 4, तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे गाना कोई स्टूडेंट हो. बेटा अगर आपको ऊपर आना है आपने मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा. तो शुभ भाई का गाना बाउंस एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट. अब गाना नंबर 3, ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल है, इवन जो टॉप 5 है उससे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है टॉप 3 की. दिस ट्रैक इज ब्यूटिफुल एंड इट इज किलिंग इट. इसके इतने

0: इतने वायरल वीडियोस बने हैं, मतलब इस पर अगर कोई अभी भी जाके डांस का वीडियो बना देगा ये हिट हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी भी कोई बनाएगा ना, अगर ढंग का कोरियोग्राफी कर ली इस गाने में, कोरियोग्राफी करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव टू कॉपी द स्टेप्स, तब भी आप हिट है, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि अभी बादशाह भाई, चरणप्रीत दोनों इस गाने की जितने भी रील्स बन रहे हैं उसे बीच बीच में पोस्ट करते रहते हैं, एंड इफ दे आर नॉट पोस्टिंग इट वो उस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। उनके लाइक करने से, शेयर करने से वीडियो अपने आप फैलता है, अपने आप आगे बढ़ता है। गाना है बन जा तू मेरी, बन जा बन, सॉरी मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं, पर मुझे वो गाना ऐसा लगता है कि मैं खुद ही गा पड़ा।
1: बन जा तू मेरी, बन जा।
0: चरणप्रीत और बादशाह इसमें है, एंड आसी जिनका नाम है, उन्होंने इसे परफॉर्म किया है। अगेन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अब म्यूजिक इंडस्ट्री, नॉट बॉलीवुड बट म्यूजिक इंडस्ट्री स्पेसिफिकली फोकस कर रही है उन लोगों पे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो कोरियोग्राफर्स जो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्टूडियो भी है, वो डांस क्लासेस देके कमा रहे हैं, बट दे नॉट गेटिंग द रियल चांस, नाउ दे आर गेटिंग। दिव्या गोयल आई बिलीव उनका नाम है, दिव्या तो आई एम श्योर गोयल ही उनका लास्ट नाम है शायद, उन्होंने कोरियोग्राफ किया है ये गाना। आसी जिन्होंने परफॉर्म किया है इसमें, शी हैज बीन परफॉर्मिंग सिंस अ व्हाइल नाउ, वो गुरु रंधावा के वीडियो में थी, अब वो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। जो हुक स्टेप है इस गाने का, उस पे बहुतेरी रील बनी है भाई, भर भर के रील बनी है, एंड गाने का हुक इज एब्सोल्युटली अ शेफ्स किस, क्या हुक है। वायरल हुक्स बहुत कम आते हैं और जब गाने कर पाते हैं, उस हुक को क्रिएट कर पाते हैं, तो कमाल हो जाता है। आई एम स्टिल शॉक्ड, आपको एक फैक्टर बताता हूं बिफोर आई प्ले द ट्रैक एट नंबर 3, बन जा तू मेरी। चरणप्रीत जो है उनके जाके लाइक्स देखिएगा, अब भी कम है, मैं हैरान हूं भाई, दुनिया जहां रील बना रही है इस गाने पे, जाके बंदे को सपोर्ट करो भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बहुत बढ़िया गाया है, एंड बादशाह भाई का रैप भी बहुत बहुत कमाल गया, बादशाह तो फिर कहने की बात ही नहीं है, बहुत बहुत बहुत अच्छा हो गया, आई एम इन लव विद द हुक, और गाने की कोरियोग्राफी इज अमेजिंग, टॉप नॉच। तो ये गाना अपनी पोजीशन में बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट, बन जा तू मेरी, चरणप्रीत और बादशाह। अब भाई बिफोर आई टेक द ब्रेक एंड मूव ऑन विद टू मोर सॉन्ग्स ऑन द लिस्ट, एक काम करता हूँ, गाना नंबर 2 आपको बता देता हूँ, 2 के लिए बजा के रख, 2-1, चलो मैं काम करता हूँ, बजा के रखते हैं। मीनवाइल जब 2 और 1 आएंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जरा पहुंच जाइए क्लिक्स के साथ, एंड प्लीज हमसे जुड़िए, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद है, प्लीज गेट इन टच विद अस। आप जुड़ेंगे, आप गाने के बारे में बताएंगे, आपको फेवरेट होगा, यू नेवर नो की लिस्ट जो करंट लिस्ट है हमारी, उसमें आप कुछ जोड़ना घटाना चाहें या अपना गाना हमें बताना चाहें, बिकॉज यू पीपल आर इंपॉर्टेंट, आप नहीं तो हम नहीं, आप बताएंगे तभी गाड़ी और अच्छे से आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो बताइएगा जरूर। बाकी मुझे ढूंढना चाहें तो duhawalakabhi.fm107 मिल जाऊंगा आपको, जाना नहीं है, अभी टॉप बाकी है, अभी बिल्डिंग का ऊपरी माला बाकी है, टॉप का गाना बाकी है, स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Top 10 Number 3

0: FM 107 Top 10.
1: Assalamu alaikum, welcome back. Main tu hawala kabir FM 107 pe. And now it's time for the top 10 songs this week ke number 2 or 1 ki bari. 1 to kya? The top track. To number 2 pe jo gana bana hua hai, ये प्योर नॉस्टैल्जिया है, ये अगेन एक फैन सर्विस है. चलो फैन सर्विस कर दी तो कर दी.

बढ़िया कर दी। फैन सर्विस हमेशा अच्छी नहीं होती है, इस बार बढ़िया हो गई है। कॉकटेल 2 मूवी जैसी भी गई हो, गाने एक नंबर भाई। फिल्माया गया जिन तीनों पे है, ऑफकोर्स कृति सानन भी इसमें नजर आएंगे आपको, और रश्मिका भी हैं और शाहिद कपूर भी हैं। गाना है बंधु 2.0 एंड नॉस्टैल्जिया हिट करेगा आपको जब आप ये गाना सुनेंगे, बिकॉज आई रिमेम्बर बैक इन द डे जब डायना और दीपिका और सैफ अली खान जब तीनों उसमें गाने में थे तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखाई गई थी। एंड दिस टाइम ऑल्सो आई हैवंट सीन द वीडियो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन गाना सुन के लगता है कि हाँ वीडियो भी अच्छा फिल्माया गया होगा। एंड प्योर नॉस्टैल्जिया, कॉकटेल 2 से गाना एट नंबर 2। अब जरा मैं लिस्ट को एक बार ही बता दूं, शुरुआत से लेकर हम अभी तक कहां पे आ चुके हैं। नंबर 10 पे रहा सादगी स्टेवन बेन, और नंबर 9 पे रहा ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल, नंबर 8 पे रहा कहर धमाल 4, नंबर 7 पे आरजू आसिम अजहर, नंबर 6 पे तू है वही आसिम अजहर, नंबर 5 पे पीछे तेरे कुंवर, एंड नंबर 4 पे शुभ विद बाउंस, नंबर 3 पे बन जा तू मेरी बादशाह चरणप्रीत, नंबर 2 पे बंधु 2.0 कॉकटेल 2.0 से। और अब वक्त है, सॉरी वो साउंड इफेक्ट थोड़े सस्ते लगा रहा हूं बट अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो नंबर 1 पे द टॉप ट्रैक ऑफ द लिस्ट, ऑन टॉप ऑफ इट ये गाना अभी भी बना हुआ है, नंबर 2 पे घिसक गया था, नंबर 1 पे वापस आ गया है, अपनी गद्दी से हटने के बाद वापस गद्दी छीन ली है। गाना है मशूका। कॉकटेल 2 का ये गाना विद वॉसम वाइब, एकदम वॉसम वाइब भाई। गाने वाइब भी तो होनी चाहिए, गाना कई मतलब ऐसे होता है कि बड़ा ढंग का कायदे का गाया हुआ होता है और आप कहते हैं मजा नहीं आया। ये गाना बड़ा रेगे स्टाइल है एंड आई लव द म्यूजिक टोटली, एंड जिस तरीके से परफॉर्म किया गया है वो तो किलर है भाई, एब्सोल्युटली किलिंग इट। एंड गाने की कोरियोग्राफी बढ़िया है, गाने के लिरिक्स बहुत बढ़िया है, बीच में स्पेनिश भी है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक। कितनी रील्स के पीछे चल रहा होता है यार, आपने देख लिया होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉल वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फीमेल ऑडियंस इज यूजिंग दिस ट्रैक हर फोटो के पीछे, इट्स गोइंग जस्ट बॉन्कर्स। तो ये गाना मशूका एट नंबर 1 कॉकटेल 2 से, अभी तो है इसके पास गद्दी, जैसे मैंने वॉर्न कर दिया हर गाने को ऑन द लिस्ट, अगले हफ्ते भाई हमारे अपन 2 के गाने आ गए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, बट फिलहाल यही है हमारी लिस्ट। एंड मशूका चलाने से पहले आपसे चाहूंगा मैं इजाजत, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, मुझे आप दें प्लीज इजाजत, अगले हफ्ते मिलेंगे एंड अगले हफ्ते मुझे पता है कि गाने बहुत सारे ऊपर नीचे होने वाले, बट फॉर नाउ आपसे इजाजत, और दोहा वाला कबीर आप मुझे ढूंढ सकते हैं एंड FM107 Qatar ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। माशाल्लाह FM107

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं डेली लाइफ की छोटी हैबिट्स और उनके बड़े एनवायरमेंटल इफेक्ट के ऊपर। आज का टॉपिक है फास्ट फूड पैकेजिंग प्रॉब्लम के बारे में भाई, यानी के वो पैकेजिंग जो हम फास्ट फूड ऑर्डर करते वक्त यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉक्सेस हो गए, ये जो स्टायरोफोम होते हैं कंटेनर्स वो हो गए, पेपर कप्स हो गए, स्ट्रॉज और रैपर्स भी तो उसी में आते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं साथियों, लेकिन इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है भाई। देखिए, फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट क्विक एंड ईजी है, लेकिन पैकेजिंग का इशू लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम बन जाता है। साथियों जरा सोचिए, आपने एक बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है, ठीक है? देखिए भाई, सिर्फ एक मील के साथ आपको मिलता है एक प्लास्टिक बॉक्स, एक पेपर रैपर, एक स्ट्रॉ, एक लेड और एक कप। मतलब 10 मिनट के खाने के लिए आप 10 मिनट में इतना वेस्ट जनरेट कर देते हैं जो एनवायरमेंट में 200 साल तक से ज्यादा जिंदा रह सकता है। देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक ना, दुनिया हर साल 300 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग का होता है भाई। फास्ट फूड पैकेजिंग इस वेस्ट का साइलेंट कंट्रीब्यूटर है साथियों। साथियों, अब इसको जरा रियल लाइफ से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, वीकेंड है, आप फैमिली के साथ मूवी देख रहे हैं और फास्ट फूड ऑर्डर भी कर लेते हैं। सब खाना खुशी खुशी खाते हैं, खाना तो फिनिश हो जाता है, उसके बाद टेबल पर एक छोटा सा प्लास्टिक का माउंटेन सा बन जाता है, यानी कि वो जो बर्गर बॉक्सेस थे, ड्रिंक्स एंड कप्स थे, फ्राइज की पैकेजिंग थी, केचप के जो सैशे थे वो भी, और हम सोचते हैं कि भाई इतने से वेस्ट से क्या ही होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर घर में हर हफ्ते ये रिपीट होता रहे तो एक सिटी का वेस्ट माउंटेन बन जाता है, लिटरली पहाड़ बन जाता है। सिर्फ एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर को डिग्रेड होने में आपको पता है कितने साल लगते हैं? 200 से 500 साल लगते हैं कम से कम। मतलब जो कंटेनर आज आप यूज कर रहे हैं वो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम तक जमीन में रह सकता है बहुत आराम से। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, अब कुछ मजे के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करती हूं, और ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको शॉक भी कर देंगे और सोचने पर मजबूर भी कर देंगे। साथियों, आपको पता है कि एक एवरेज से स्टायरोफोम कंटेनर को बनाने में पेट्रोलियम यूज होता है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। दुनिया में हर मिनट लगभग आप कह लें कि 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स परचेज की जाती हैं बहुत आराम से, और उनमें से बहुत सी फूड पैकेजिंग से रिलेटेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं। आपको मैं याद दिलाती चलूं कि प्लास्टिक पैकेजिंग का सिर्फ 9% ही ग्लोबली रिसाइकल होता है, बाकी या तो फिर लैंडफिल में जाता है या हमारी इस एनवायरमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एक प्लास्टिक स्ट्रॉ एवरेज सिर्फ 10 से 15 मिनट यूज होता है, लेकिन वो तकरीबन 200 साल तक एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन फास्ट फूड पैकेजिंग सिर्फ वेस्ट नहीं क्रिएट करती, बल्कि वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ और सॉइल को भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। जब प्लास्टिक समंदर में जाता है ना, तो फिशेस, बर्ड्स ये इसे खाना समझकर कंज्यूम कर लेती हैं, जो उनकी डेथ का रीजन बन सकता है। सॉइल में प्लास्टिक मिक्स होने से लैंड फर्टिलिटी भी कम हो जाती है भाई, और कतर जैसे डेजर्ट के एनवायरमेंट में वेस्ट मैनेजमेंट और भी सेंसिटिव इशू बन जाता है, क्योंकि नेचुरल डीकम्पोजिंग यहाँ स्लो होती है। अच्छा भाई, अब आप पूछेंगे कि भाई इको स्विच का मतलब यहाँ क्या है? तो भाई, इको स्विच का मतलब यहाँ ये है कि हम कन्वीनियंस को इलिमिनेट नहीं करते, बल्कि उसे स्मार्टर बनाते हैं। देखिए भाई, अगर हम फास्ट फूड पैकेजिंग के लिए स्मॉल चेंजेस करें तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेस्टोरेंट सिर्फ डाइन इन कस्टमर को रीयूज प्लेट्स ऑफर करता है, तो उसका सिंगल यूज वेस्ट 50% से ज्यादा कम हो जाता है, और अगर कस्टमर्स अपनी रीयूजेबल कटलरी या बॉटल यूज करें तो प्लास्टिक डिपेंडेंसी ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। देखिए भाई, अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल इको स्विच टिप्स बता देती हूँ जो इंसान अगर फॉलो करे तो जिंदगी आसान हो जाती है भाई। पहला, जब भी पॉसिबल हो डाइन इन चूज करें इंस्टेड ऑफ टेक अवे, क्योंकि डाइन इन में रीयूजेबल डिशेस यूज होती हैं तो भाई वेस्ट कम होगा। दूसरा, अगर टेक अवे जरूरी हो तो रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करें कि भाई एक्स्ट्रा कटलरी और स्ट्रॉज वगैरह ना दें। तीसरा, अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल और कप्स कैरी करें, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। चौथा, वेस्ट को सेपरेट करें, क्लीन पैकेजिंग को रिसाइकल बिन में डालें तो भाई उनका प्रोसेस भी इजी हो जाता है रिसाइकलिंग का। पांचवा, अवेयरनेस स्प्रेड करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं कि स्मॉल पैकेजिंग चेंजेस भी बिग एनवायरमेंटल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो भाई साथियों, यहाँ पर बिहेवियर शिफ्ट ये है कि लेस पैकेजिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इको स्विच सिर्फ वेस्ट कम करने का नाम नहीं है बल्कि माइंडसेट चेंज करने का नाम है। जब हम फास्ट फूड को कन्वीनियंस के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंज्यूम करते हैं ना, तब हम एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। हर बार जब आप एक प्लास्टिक स्ट्रॉ रीयूज करते हैं, आप एक छोटी सी विक्ट्री अचीव कर रहे होते हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है। तो साथियों, आखिर में सफा का इको स्विच मैसेज ये है कि फास्ट फूड का मजा तभी आता है जब उसका एनवायरमेंट प्राइस कम हो। एक छोटा सा डिसीजन जैसे स्ट्रॉ ना लेना या रीयूजेबल कप यूज करना एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। याद रखें, फास्ट फूड का नाम फास्ट फूड है लेकिन उसका वेस्ट स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगली बार जब आप बर्गर या फ्राइज ऑर्डर करें, एक इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा, डू आई रियली नीड दिस एक्स्ट्रा पैकेजिंग और नॉट। तो भाई साथियों, ये था हमारा आज का इको स्विच सफा के साथ FM 107 पर, जहाँ हर छोटी चॉइस एक ग्रीन फ्यूचर बनाती है। मिलते हैं आपसे इको स्विच के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। कतरी फुटबॉल सिस्टम में गोलकीपर अबू नादा एक इमर्जिंग और प्रॉमिसिंग टैलेंट के तौर पर देखे जाते हैं और उन्होंने ये साबित किया 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। क्या मैच खेला उन्होंने, कितने गोल्स बचाए, आज भी उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जहां पे अबू नादा इमर्ज लार्जर देन लाइफ पिक्चर अगेंस्ट द स्विस प्लेयर। और अगर कतर ने स्विट्जरलैंड को एक एक गोल पर ड्रॉ करने पे मजबूर किया तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर मैं रीजन रहा है तो वो है अबू नादा की गोलकीपिंग। उनका प्लेइंग स्टाइल काम और कंपोज्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे समझता हूँ कि काफी अग्रेसिव है उनके पेनल्टी बॉक्स एरिया में। जिस तरह से उन्होंने पंचेस या शॉट्स को रोकने में जिस तरह से उनके जो रिफ्लेक्स एक्शन हमें देखने को मिला, इससे साफ साफ साबित होता है कि ये आज के दौर में कतरी नेशनल टीम में ही इज द बेस्ट गोलकीपर, नंबर वन गोलकीपर। देखिए, मैशाल बर्शम को नहीं खिलाया कोच लुप्तगी ने और इन्हें उतारा गया, विच मीन्स ही हैज सम काइंड ऑफ टैलेंट, सम काइंड ऑफ यू नो आई वुड से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसके बदौलत अबू नादा कतर की नुमाइंदगी। शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी के साथ साथ उनकी रिफ्लेक्सेस और वन ऑन वन सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग उन्हें एक रिलायबल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। डोमेस्टिक लीग्स और ट्रेनिंग सेटअप्स में अबू नादा ने अपनी कंसिस्टेंसी से कोचेस और सिलेक्टर्स का ध्यान हासिल किया है। गोलकीपिंग सिर्फ फिजिकल स्किल नहीं है दोस्तों, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी होती है और अबू नादा इस एस्पेक्ट में ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं। उनकी पोजीशनिंग और गेम अवेयरनेस वक्त के साथ बेहतर होती जा रही है, जो उनके डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को शो करती है। एंड द स्विट्जरलैंड गेम इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एग्जांपल। कतर के फुटबॉल इकोसिस्टम में नए गोलकीपर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिल रही है और अबू नादा इस सिस्टम का हिस्सा बनकर अपनी स्किल्स पॉलिश कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो फ्यूचर में वो कतरी फुटबॉल के इम्पोर्टेंट गोलकीपिंग ऑप्शंस में शुमार हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है हेल्दी नेशन 2030. छोटी आदतें बड़ा इम्पैक्ट. देखिए हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल या डॉक्टर तक महदूद नहीं है. असल हेल्थ वो होती है जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में क्रिएट करते हैं. और यही आइडिया है हेल्दी नेशन 2030 का कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी हैबिट से बड़ी तब्दीली ला सकता है. आजकल बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हैं. कॉन्शियस तो है पर फिर भी इग्नोर कर रहे हैं. उसकी वजह है फास्ट फूड कल्चर, एक्सरसाइज कम करना, ना जाकर भी टेंशन और स्ट्रेस, ये सब कुछ कॉमन हो चुका है. लेकिन अगर हम 2030 तक एक हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें आज से छोटी छोटे चेंजेस जो हैं वो करने हैं. सबसे बड़ी आदत वॉकिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटी की. जरूरी नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन करें. सिंपली 30 मिनट्स वॉक भी आपकी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकती है. दोहा जैसे शहर में पार्क्स और वॉकिंग ट्रैक्स का इस्तेमाल करना एक अच्छा स्टेप हो सकता है. वहीं दूसरी आदत बैलेंस डाइट की. जी हाँ, आजकल लोग जो हैं वो प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं. लेकिन अगर हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर होम कुक मील्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं तो बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं. वहीं तीसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ. ये टॉपिक मुझे लगता है पहले भी इतना डिस्कस हुआ है लेकिन फिर भी उतना ही कम डिस्कस हुआ है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी और प्रेशर हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं. इसीलिए थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना

0: बहुत जरूरी है, चाहे वो मेडिटेशन हो, फैमिली टाइम हो या फिर कोई भी हॉबी। हेल्दी नेशन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है बल्कि कम्युनिटी है। जब फैमिलीज हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करती हैं तो बच्चों पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक इंसान चूज करे जो अपनी लाइफ में एक छोटी हैबिट चेंज कर रहा है, जैसे रोजाना 20 मिनट्स वॉक, फिर 30 दिन बाद उसका रिजल्ट शेयर कर सकता है। आप डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि सिंपल टिप्स देकर आपको इस चीज को फॉलो करने में मदद करेंगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अवेयरनेस। लोग अक्सर जानते नहीं कि उनकी डेली हैबिट्स उनके हेल्थ पर कितना इफेक्ट करती हैं, इसलिए मीडिया का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2030 तक एक हेल्दी नेशन बनाना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी से नहीं होगा। ये तब होगा जब हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा। तो बस आज से आपका एक स्टेप क्या हो सकता है, मुझे बताइए। क्या एक वॉक या एक हेल्दी मील या सिर्फ 10 मिनट अपने खुद के लिए निकालना, सोचिए और इस पर गौर कीजिए और शायद जितनी जल्दी हो सके तो अमल। फिलहाल इसी नोट पर, इसी सवाल पर, इसी सोच पर मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मेरा मतलब है अभी के लिए जा रही हूँ, वापस कल फिर आऊंगी। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी।

0: एक कदम हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. थोड़े से इन्वेस्टमेंट से लाखों बन जाए तो क्या नुकसान है, ये ट्रिक है यार अमीर बनने की। हाल हबीब, इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आपको बहुत अमीर बना देता है इंस्टेंट, चुटकियों में। लेकिन ऐसा होता कहाँ है यार। वेल, एक नया स्कैम चल रहा है और ये स्कैम उनके साथ होता है जो रफ्तार से बहुत तेजी से पैसा बना

0: बनाना चाहते हैं और थोड़े से इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना चाहते हैं. वेल, आम तौर पे ये सोशल मीडिया पे आपके पास मैसेज आता है और मैसेज में होता है कि मैंने 5,000 रुपए या 1,000 रियाल या 500 रियाल इन्वेस्ट किए और मुझे 50,000, 40,000 या 10,000 रियाल का आसानी से फायदा हो गया और मैं इस क्रिप्टो में पैसा लगाने के बाद बेहद अमीर हो जाऊंगा. तो इस तरह के मैसेज आपके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आते हैं और आपको लगता है कि यार 1,000 रियाल, 500 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल के क्रिप्टो में पैसा लगाने के बाद इतना पैसा बन जाए तो क्या है. बट क्या पता ये फेक हो, तो इसलिए चलो इसका इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं. तो आमतौर पे आप इंस्टाग्राम चेक करते हैं और आप देखते हैं कि यार इसकी स्टोरीज जबरदस्त है, ये तो न्यूयॉर्क घूम रहा है, है ये तो कहीं दूर दूर इलाकों में घूम रहा है, ऐसी जगह जहां पर जाने के लिए अमीरों की जरूरत होती है, अमीर होने की जरूरत होती है. तो जब आप ऐसा कुछ देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, ग्लैमरस दुनिया देखते हैं उनकी, तो आपको एहसास होता है कि यार ये बात तो सही है कि कुछ रुपए या कुछ रियाल लगा के हजारों का पैसा बन रहा है क्रिप्टो में, तो क्यों ना ऐसा किया जाए. लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम है. आपको पता है क्रिप्टो ऐसे काम नहीं करता, क्रिप्टो इंस्टेंट पैसा नहीं देता. हाँ, पैसा क्रिप्टो में थोड़ा सा तेज जरूर होगा, लेकिन ये भी मार्केट पर डिपेंड करता है कि क्रिप्टो का मार्केट कैसा चल रहा है और हर क्रिप्टो अलग तरह से बिहेव करता है. कुछ क्रिप्टो सेल्स पर डिपेंड है, कुछ क्रिप्टो कहीं अलग तरह के प्रोजेक्ट पर डिपेंड है, इसलिए क्रिप्टो पर भी बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा ना करें. अपनी पूरी की पूरी स्टडीज किए बिना किसी भी चीज में इन्वेस्ट ना करें. वेल, ये जो तरीका है, ये तरीका है लोगों का आपको स्कैम करने का. जब आपके पास सोशल मीडिया पे या किसी चैट पर मैसेज आता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का या डीएम आता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, तो आप पैसा लगाकर चाहते हैं कि इसे, यानी कि इस पैसे को बड़ा बनाया जाए. आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पैसा चला जाता है. इसमें होता यह है कि आप जब लिंक पर क्लिक करते हैं और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या कुछ करना है, और वो इस तरह का फॉर्म बना होता है, यकीन मानिए कि वो लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है. नाम लिखेंगे आप अपना यू नो पासपोर्ट नंबर है, QID है, या फिर जो भी डिटेल्स हैं, बैंक की डिटेल्स हैं. आप सोच रहे होंगे कि उसमें सिर्फ 5,000 रुपये या 5,000 रियाल या 100 रियाल, 200 रियाल लिखना है, लेकिन जैसे ही आप 100 रियाल लिखते हैं और पेमेंट के ऑप्शन पर जाते हैं, ऑटोमेटिक वो 100,000 या लाख में या 220,000 रियाल में बन जाते हैं. और आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल ही है, ये 200 रियाल आप चेक भी नहीं करेंगे, आपको लगेगा ये 200 रियाल है. आप क्लिक करेंगे, आप पेमेंट की सारी डिटेल्स डालेंगे और आपको मैसेज आएगा कि आपके 100-200 नहीं 2,000 रुपए कट गए हैं. तो किसी भी तरह के इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जो भी मैसेज आए हैं उस पर भरोसा ना करें. वेल, इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि किसी भी तरह के लिंक पे, फेसबुक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें. जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो जो ऑफिस वाले बंदे होते हैं, जो यकीन करने वाले बंदे, जिन पर यकीन किया जा सकता है, जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टर्स होते हैं, उन पर भरोसा करें और फिर जाकर इन्वेस्ट करें. आग बन करके किसी पर भी भरोसा ना करें. बाकी सुनते रहें FM 107. मुलाकात होगी अगले फ्रॉड अवेयरनेस के शो पे, जहां पर हम स्कैम के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे हो रहे हैं जमाने में नए नए स्कैम्स और खुद आप उन स्कैम से कैसे बच सकते हैं. सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.
1: स्कैम अलर्ट.
2: क्रिकेट हो,
3: and he's hooked that away. That's 4 runs.
2: फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में.
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM.
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की.
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करने वाले हैं उन रोजमर्रा आदत की जो कमर दर्द के खतरे को कम कर सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि सेहतमंद वजन जो है वो बरकरार रखिए। ज्यादा वजन कमर के जॉइंट्स और मसल्स पर इजाफी दबाव डालता है। मतवाजन गिजा और एक्सरसाइज वजन को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। नींद के दौरान जिस्म खुद को बहाल करता है, यानी जो एग्जॉस्ट हो चुका होता है तो उससे वो रिलैक्स होता है, और इसके दरमियानी साइज का जो सख्ती, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सख्त गद्दा है जिस पर आप सो रहे हैं या आप जो पिल्लो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी दरमियाना होना चाहिए। उसकी कुदरती साख्त को भी बरकरार रखने में ये मदद देते हैं। बहुत सारी रिसर्च की गई और तहकीक से मालूम हुआ है कि स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन को मुतासिर कर सकती है, जिससे रीढ़ की हड्डी और जो हमारे मसल्स की सेहत मुतासिर होती है। पानी की मुनासिब मिकदार और कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर गिजा हमारी बोन्स और मसल्स को मजबूत रखने में मदद देती हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो हर 30 से 60 मिनट के बाद चंद कदम जरूर चलिए और जिस्म को आप एक्टिव रखिए। ज़हनी तनाव हमारे मसल्स में खिंचाव पैदा कर सकता है जो कमर दर्द का सबब बन सकता है। इसी तरह आराम की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए, डीप ब्रीदिंग वो कीजिए। इसके अलावा जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं ज़हनी दबाव कम करने में मदद देती हैं। लिसनर्स, कमर दर्द से बचाव के लिए किसी एक इलाज से ज्यादा अहम सेहतमंद आदत हैं। बिल्कुल दुरुस्त पोस्चर, बाकायदा एक्सरसाइज, मुनासिब नींद और मुतवाजन गिजा आपकी कमर को मजबूत और सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुतहरक रहिए और सेहतमंद जिंदगी अपनाइए।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें और अलग इराज हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? जेनरेशन टॉक दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आज मेरे साथ फिर से ये मुझे मौका मिला है कि दो जनरेशन आमने सामने हैं। आज सवालात भी होंगे, सच के सवा कुछ नहीं सुना जाएगा। आज मदर डॉटर की जो जोड़ी है ये सबसे कॉम्प्लेक्स जोड़ी हो जाती है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मैं माइक पे निकलवा लेता हूँ जो घर पे नहीं होती है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कुछ ऐसा ही हो। सो वी हैव अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
3: अस्सलाम वालेकुम
2: जी, आपका नाम बताइए।
3: मेरा नाम सोना है, सोना शंकर।
2: ओके, आपके नाम से लोग वाकिफ हो चुके हैं, फिर बता दो तुम्हारा नाम क्या है?
3: मेरा नाम सिंचल।
2: ओके, तो सिंचल तुमसे शुरू करूंगा, ठीक है?
3: जी।
2: ये जो तुम्हारी जनरेशन है, तुम्हें उसकी कौन सी बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? तुम्हें लगता है ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, बिकॉज़ यू सी पीपल अराउंड सो लाइक
3: मतलब यंगर जनरेशन ज्यादा लाइक थोड़ा मतलब डोंट स्पीक दैट ओपनली विद पीपल।
2: ओके,
3: और लाइक कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओपनली बात करते हैं, पर लाइक जितना मैंने देखा है कि लाइक एल्डर्स यूजुअली हैव दिस गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो वो सब रिश्तेदारों के साथ जाके बात करते हैं।
2: okay.
3: और लाइक हम लाइक जब अभी भी छोटे बच्चे हैं, कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे लाइक छुप जाते हैं बेचारे।
2: तो जितने तुम्हारे रिलेटिव्स होते हैं, तुम्हारा ऐसा होता है कि कैसे बात करूं यार, अभी क्या बोलूं?
3: क्योंकि लाइक सब लाइक दादा दादी नानी और सब लोग होते हैं वहाँ पे, तो लाइक बड़े लोग उनके साथ ही लाइक बड़े हुए हैं, तो लाइक वो बात कर लेते हैं। पर हमारे और उनमें लाइक अराउंड 50 साल का डिफरेंस तो हो गए, तो बात करना उतना
2: मुश्किल
3: नहीं हो सकता है।
2: ओके ओके, तो सोना जी आप क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या इस जनरेशन से शिकायत है और क्या आपको अच्छा लगता है?
3: ये स्क्रीन टाइम का प्रभाव है। जो हमारे टाइम पे हुआ करता था, स्क्रीन नहीं हुआ करता था, एक दो टीवी सीरियल आती थी, वो भी साथ में बैठ के देखा करते थे। तो अभी क्या है ना कि जब हम किसी के साथ जाके बैठते हैं, ट्रैवलिंग हो या आपस में रिश्तेदार फैमिली या फ्रेंड हो, तो वी ओपन अप, वी स्पीक। तो वो स्क्रीन हमारे जहन में नहीं है, जो अभी बच्चों के जहन में है।
2: या दे टू कंज्यूम,
3: सो वी व्हेन वी सी समवन नियर बाय, वी फील लाइक ओके हाय, हाउ आर यू डूइंग, माय नेम इज सोना, तो आर यू वेटिंग फॉर सम कैब टैक्सी, और मे बी व्हाट यू लाइक, लाइक इफ इट्स अ किड वी आस्क, अच्छा आपको क्या देखना अच्छा पसंद लगता है टीवी में,
2: तो अपना ऑटोमेटिकली बातें निकल जाती
3: है। पर बच्चों को नहीं आता है, बच्चे सोचने लगते हैं कि क्या बात करें।
2: तो क्या क्या इनकी अच्छी आदतें हैं इस जनरेशन की?
3: इस जनरेशन की अच्छी आदत है कि उनको कम उम्र में काफी ज्यादा एक्सप्लोरिंग एटमॉस्फेयर मिल रहा है। हर एक चीज में देयर आईक्यू लेवल इज मोर, दे आर गेटिंग मोर एक्सपोज टू लॉट ऑफ वर्ल्ड अराउंड देम, जनरल नॉलेज, ट्रैवल, देन दे गेट टू रीड बुक्स लाइक किंडल जैसा ऐप है, जो हम लोग लाइब्रेरी जाया करते थे, बुक्स ढूंढ के पढ़ा करते थे,
2: पर अभी तो खत्म हो गया
3: जी, अभी तो सब कुछ फिंगर टिप्स पे। इफ दे यूज सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इन अ गुड वे टू डेवलप देयर पर्सनालिटी, देन इट्स रियली गुड फॉर देम, दे शुड गो अहेड विद दैट।
2: ओके, और तुम्हें क्या लगता है कोई घर के ऐसे रूल है जो तुम्हें फॉलो करने होते हैं, मम्मी ने सेट किए हुए कुछ सेट ऑफ रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो?
3: उतना कुछ रूल्स तो नहीं है, पर लाइक मोस्टली मेरा टाइम तो होमवर्क करने में ही जाता है,
2: चला जाता है,
3: तो और कुछ करने के लिए टाइम भी नहीं बचता।
2: बट डू यू हेल्प हर इन थिंग्स?
3: या आई वैक्यूम द हाउस लाइक

0: Twice a day.
1: Twice a day, really?
0: Like, you know, maybe in the afternoon or in the morning or yeah. one time in the evening.
1: Oh, okay, nice.
2: Discipline. Cleanliness. अनुशासन
1: जो है इन्हें सिखाने में टाइम लगा या फिर
2: नहीं नहीं बचपन से दोनों वेरी ओबीडिएंट
1: बड़े ही सिंसियर बच्चे हो तुम तो क्या बात है ओके और इस जनरेशन से तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें लगता है नहीं हाँ मम्मी ऐसा मत किया करो यू ट्राई टू टीच हर समथिंग जो नहीं हो पाता है या फिर ऐसा कुछ लगता है मम्मी क्या है समझो ना मम्मी कुछ ऐसी चीजें हैं
0: मतलब लाइक ऑब्वियसली लाइक मैं बता सकती हूँ ड्रेसिंग स्टाइल और लाइक वो ओवर फ्रेंडली भी बन जाती है तो अगर लाइक मेरे क्लासमेट्स होते हैं उनसे जाके बस बात करती रहती है मम्मी और मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें बात करनी है या नहीं
1: सिर्फ
0: मैं क्या कर रही हूँ वही नहीं की दूसरे भी क्या कर
1: अराउंड यू But do you like ask her के मम्मी बहुत हो गए करोना ऐसा ऐसा चलता है क्या
0: like कभी-कभी वो ज़्यादा देर बात करने लगते हैं और फिर दूसरे दिन दोस्त आके बोलते हैं कि यार your mummy is very talkative
1: अरे रे रे मम्मी जी
2: complain
1: अच्छा मुझे ये जानना है एक time हुआ करता था पहले जब ये sleepovers का भी time था you remember that कि बहुत कम होता था स्लीप ओवर्स का
0: right.
1: और बहुत बड़ी चीज लगती थी कि अरे ये तो मतलब कैसे तुम किसी के घर पे जा सकते हो mm. लड़का लड़की दोनों के लिए ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए थोड़ा अलग सिचुएशन होती है बट लड़कों के लिए यूजुअली यू नो गो एंड स्लीप आपके घर पे चले गए अपने दोस्त के घर पे चले गए mm. अभी क्या लगता है वुड यू अलाउ हर और योर
2: नेवर अलाउ जरूरी नहीं है आप लोग पूरा दिन स्कूल में टीचर्स और बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ ही होते हो हैव सम क्वालिटी फैमिली टाइम विद योर
1: ये मैंने इसलिए पूछा कि बिकॉज़ दैट कल्चर हैज कम इन समवॉट
2: कल्चर हैज कम इन और पीपल हैव पुल्ड इट इन
1: या पुल्ड इट इन
2: या क्योंकि सी ऑल द डे मदर इज बिजी विद हर स्केड्यूल चिल्ड्रन आर बिजी विद देयर स्केड्यूल फादर इज बिजी विद देयर स्केड्यूल एंड अल्टीमेटली यू आर ऑलरेडी विद योर फ्रेंड्स ऑल द डे एट स्कूल तो ये फिर से अलग से टाइम क्यों चाहिए स्पेंड विद योर मम्मी डैडी सिब्लिंग्स फैमिली फ्रेंड्स
1: ओके व्हाट इज योर टेक ऑन इट बी ऑनेस्ट
0: like for other people I don't know but like yeah. even I don't have that interest ki kisi aur ke ghar pe jaake baithun like
1: okay.
0: I myself also don't want to go and sit at someone else's house par like doston ke sath jaake baat karna khelna kyunki like kaam karna bhi hota hai aur wo bhi karna hota hai to like usually mummy bolti hai pehle kaam khatam karo fir jao par kabhi kabhi bore ho jate hai ki main kaam baad mein kar sakti hu kya
1: acha like, so you find options na as possible hai ki nahi पर जब कोई दोस्त आता है घर पे तो क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स मम्मी को बताती है कुछ बताती है कि अभी कोई दोस्त आ रही है मम्मी ऐसा करना ऐसा मत करना ऐसा कुछ है क्या
2: ऐसे कुछ नहीं सारे बच्चे अच्छे हैं
1: क्या बात है आपने ये डिसिप्लिन जो दिया हुआ है
2: अच्छे बच्चे हैं
1: डर किसका था मम्मी का या पापा का ज्यादा रहता है
0: पापा थोड़ी लीनियंट है
1: अच्छा पापा लीनियंट है उन्होंने हार मान ली ठीक है मम्मी देख लेंगी सारा कुछ
0: हार मान ली मतलब वैसे नहीं लाइक
1: मम्मी पे छोड़ दिया है ना हाँ तो वैसा वाला है तो मम्मी इज द हेड ऑफ द हाउस राइट नाउ बिल्कुल तरीके से सबको
2: होम मेकिंग
1: तो मेक तो कर लिया आपने माशाल्लाह देखिए कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं आपके तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है
2: तो ही इज ऑल द टाइम बिजी विद हिज वर्क एंड स्केड्यूल तो कुछ मैं भी अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करूंगी
1: वंडरफुल मैंने एक सवाल मैंने पिछली बार पूछा था और मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि अभी क्या है सोशल मीडिया का जो दौर है देखो मैं आई विल नॉट क्रिटिसाइज टेक्नोलॉजी बिकॉज दैट साउंड्स अ लिटिल वियर्ड जब है तो है यू हैव टू लिव विद इट ऑफ कोर्स एक्सेसिवली तो कोई भी चीज बुरी होती है तो वो टेक्नोलॉजी हो सकती है मगर यहाँ पे एक सिचुएशन आती है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वुड आर यू ऑन सोशल मीडिया मैडम
0: नो आई डू नॉट हैव इंस्टाग्राम फेसबुक नथिंग
1: एट ऑल हाउ कम दैट मतलब क्या इंस्पिरेशन आई कहीं से कि गई ही नहीं व्हाट हैपेंड
0: Like inspiration, like you see when you have things to do, तो उतना time नहीं रहता कि हमेशा phone निकाल के किसी से बात कर लो। अगर already बात कर लिया है, तो और बचा क्या है?
1: क्या बात है?
0: बस बोलना पड़ता है कि और बताओ क्या चल रहा है?
1: और बताओ क्या चल रहा है? तुम्हारे दोस्तों में लोगों ने बनाए social media accounts?
0: दोस्तों का तो almost पूरा class का group ही है, पर like मेरा तो Instagram कुछ नहीं है, तो क्या करूँ?
1: नहीं, good for you actually. Coming back to you, अगर इनका account होता, right? Do you think as a parent के जरूरी होता है कि बच्चों को अपनी प्रोफाइल में ऐड किया जाए? Would you add her अगर इस सोशल मीडिया पर?
2: ऐसे ट्रस्ट तो रखना है।

0: बच्चे पर सभी को दैट इज इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया अकाउंट होना या ना होना उनके पेरेंट्स या बच्चे के आपस की इच्छा है इफ यू वांट इफ योर चाइल्ड इज वेरी क्रिएटिव एंड यू वांट टू एग्जिबिट इट विद यू नो पीपल अराउंड ताकि रिकॉग्नाइजेशन मिले या द बेस्ट गो अहेड एंड यूज द सोशल मीडिया अकाउंट एंड यस कीप अ ट्रैक ऑन योर चिल्ड्रन अनलेस दे ग्रो अप टू एन एडल्ट 18 इयर्स एज तो once you know you have a confidence that yes the child is being groomed very well and they are making best use of the social media and it's going on in a good track then that's fine
1: but keeping a track as in adding them to your profile because some kids are really not comfortable with that they you must have seen kids like that
0: together yeah, some kids may be having
2: add karna matlab
1: वैसे ऐड कर लिया प्रोफाइल पे यू नो फॉर एग्जांपल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वेयर इन पेरेंट्स फॉलो देयर किड्स जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू सी एवरीथिंग अराउंड
0: या अगर बच्चा कंफर्टेबल है एंड ही इज ऑनेस्ट ही और शी इज ऑनेस्ट इनफ दे विल श्योरली अलाउ द पेरेंट्स टू गेट इनटू देयर ग्रुप एंड पेरेंट्स यस वो तो बच्चों में इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होंगे ना दे विल बी देयर जस्ट देयर
1: कुछ बच्चे इस चीज को लेकर थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं फिर कॉमेंट कर देंगे गड़बड़ हो जाएगी ऐसे भी है
0: वो पेरेंट्स का वो होना चाहिए कि यार लेट देम गिव देम लोकी कॉन्फिडेंस है कि बच्चा ठीक है गिव देम अ बिट फ्रीडम एंड डोंट पोक इनटू यू नो that is your mutual your child and parent mutual
1: acha kuch unki zid rehti hai kuch zid kar denge jis ki kabhi ki ho
0: ice cream chocolates ke liye
1: really bas itna hai
2: like I like eating snacks like acha lagta hai kyunki jab kabhi kabhi muh khali hoti hai to bas kuch khana
1: kuch chalta rehna chahiye इनका क्या खाने को लेकर नखरा आपके घर में बच्चों का
0: नहीं दे आर लाइक दे लाइक ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कभी कभी स्नैक का डिमांड रहता है जंकी जो ऑफन नहीं मिलता है सेल्डमली
1: रहना भी चाहिए थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा है जो मम्मी बहुत अच्छा बनाती है तुम्हें लगता है मम्मी से बेहतर तो मैंने कहीं नहीं खाया और मिलेगा भी नहीं
2: शायद गोभी की सब्जी है
1: गोभी की सब्जी मम्मी से बेहतर कोई नहीं बना सकता और तुमने कुछ सीखा मम्मी से कुकिंग वगैरह में
2: लाइक मैं पोहा बना सकती हूँ अंडे बना सकती हूँ दाल चावल बना सकती हूँ लाइक कुछ बेसिक्स चपाती मुझे अभी तक आटा नहीं बनाया नहीं लाइक फिर भी लाइक सेक तो सकती हूँ
1: वेरी नाइस है तो मुझसे बहुत आगे तुमको पता है मैं इस मामले में बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा हूँ सो ये मम्मी ने सिखाया है कि खुद जाके तुम बोलो मम्मी बताओ मुझे कैसे होता है
0: मम्मी और पापा दोनों सिखाते
1: हैं अरे वेरी नाइस
0: दोनों को सीखना चाहिए कुकिंग इज एन आर्ट मेन और वुमेन दे शुड नो द चाइल्ड बॉय और गर्ल दे शुड लर्न कुकिंग लिटिल बेसिक थिंग इज मस्ट एंड रिक्वायर्ड बिकॉज ये आगे जाके बहुत काम आएगा फ्यूचर दे विल हैव देयर ओन हाइजीन सेल्फ होम
1: मैं बताऊं मैं बहुत अपने आप को अभी देख रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं अभी तक पानी उबालने से ऊपर गया नहीं हूं तो
0: कोशिश कर लीजिएगा
1: अरे वो मैंने एक दो दफा बनाई है पर मुझे फिर अपनी चाय से नफरत हो गई है तो इससे पहले चाय से ही ऑल इन ऑल नफरत हो जाए इसलिए मैं ट्राई नहीं करता बट ओके सो हु इज द बेस्ट कुक इन द हाउस ये बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है तो मैं तुमसे सवाल पूछूं हु इज द बेस्ट
2: लाइक मोर वैरायटी ऑफ डिशेस तो मम्मी बनाती है पर पापा के डिशेस व्हेन ही मेक्स इट इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल
1: है ना ये होता है ये हर घर की कहानी डू यू अग्री
0: या वो तो होता है
1: एंड लोग ये कहते हैं कि मेन आर लाइक बेटर कुक्स दैट्स जस्ट द फैक्ट राइट देयर या
2: रेस्टोरेंट्स में शेफ भी तो मेन होते हैं
1: हाँ तो दिख लो तुम्हारे सामने ही है और क्या
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर ओनली ऑन FM 107
1: जो आज का जनरेशन है उनके ड्रीम्स बड़े अलग थोड़े एडवांस्ड होते हैं पहले डील करना आसान था कि दो तीन ऑप्शंस वो दे देते थे दो तीन ऑप्शंस माँ बाप ने दे दिए एंड दे फॉलो इट नाउ हाउ डू यू डील विद एवरीथिंग दे टेल यू दे वांट टू डू दिस दैट एंड दिस
0: Now the generation is getting a lot of exposure.
1: Yeah, of course.
0: Every stream is having its own importance.
1: Yeah.
0: So har stream mein, padhai ke har stream mein, ek level ka opportunity hai.
1: Yeah.
0: There's a growth in every stream of education.
1: Yeah.
0: So children have to focus on what interest they have. कहाँ पे उनको अच्छा लगता है किसमें उनको masteries gain करना है
1: more flexibility.
0: Yeah, more flexibility and a lot of openings.
1: Yeah.
0: They get to choose their major interest at a very young age.
1: Yeah.
0: So it's good they have more options now
1: pehle ye sochta tha na ki parents were prepared shuruaat se hi ke okay we are doctors we are engineers we'll put our child into that field only aap logo ke sath tha because once I was talking to her

0: It's now, you know, nowadays, it's okay.
1: Yeah.
0: There's no such rule that पहले जैसे ऐसे नहीं बात करते, नहीं ऐसे नहीं है अभी. अभी is like parents are also opening up, telling like, oh you're my best.
1: Oh, okay.
0: You're my only good child. Like I say, like parents are also expressing.
1: Yeah.
0: आजकल
1: okay.
0: parents भी expressive है.
1: होना भी पड़ेगा ना, मतलब
0: nuclear,
1: कहीं ना कहीं.
0: Most of the place अभी सब mostly nuclear families होते हैं ना.
1: हाँ वो आजकल तो.
0: हाँ तो एक दूसरे को appreciate भी करना पड़ता है.
1: And I think joint families अब मुश्किल है survival if you have
0: joint families में नानी दादी हुआ करती थी कि मेरा प्यारा बच्चा, मेरा नन्ना बच्चा.
1: Yeah. So you kind of have appreciation pouring from every corner of the house.
0: Now there's a nuclear family, so tell mama I love you, daddy I love you, bacha I love you.
1: Do you often say that?
2: Like bolti to nahi hu, but like
1: express kar deti hu.
2: Ha. कभी भी गई पापा के साथ लाइक थोड़ा परेशान किए थोड़ा छोटा मोटा बातचीत लाइक वरना जाके अम्मी के साथ लाइक वैसे हाय व्हाट यू डूइंग कुछ तो परेशान करना ही पड़ेगा पर लाइक बस टाइम पास करके लाइक करते रहो
1: बेस्ट मॉम स्टोरी विद हर एनी मोमेंट
2: बेस्ट मॉम स्टोरी मतलब लाइक एवरी टाइम समथिंग गुड हैपेंस विद हर लाइक एक मेरा कंपटीशन था लाइक उस दिन आई हैड एन एमयूएन आल्सो और वो एक एक्टिंग कंपटीशन था जो मुझे लाइक ब्रेक के बीच में जाके लाइक जल्दी से करके आना था
1: ओके
2: पर लाइक आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ एनीथिंग तो मेरी मम्मी ने बोला कि लाइक मैंने फोन किया था शी टोल्ड जो भी तुमने आज एमयूएन में किया था वही जाके एक्ट आउट कर दो मैंने वो किया और थर्ड प्लेस मिला
1: अरे What a piece of advice! Very
0: yes.
1: nice.
0: Yes.
1: ये tackle करने का अच्छा तरीका है, no? And this is probably the story that will stick to your mind and heart both, right? तो तुम्हें याद रहेगा कि ये trickery काम आती है. If you have multiple situations to handle, then you can handle everything. दोस्ती जो है पहले माँबाप की और बच्चों की थोड़ी अलग होती थी. Now things have changed.
0: Yes.
1: Right. So do you think friendship कुछ ज़्यादा होना भी गलत है या फिर are you उसके हक में आप?
0: Friendship होना चाहिए. मेरे मम्मी और पापा दोनों दोस्त के जैसे रहते थे.
1: Okay.
0: तो
1: to your kids, I mean.
0: To my kids also.
1: Yeah.
0: Yeah. I'm strict, but I'm very friendly also.
1: Okay.
0: Yes. To some extent, I have to be strict to set limits to make them a good citizen. And friendship, yes, I have to be every day. I try to talk to them, ask them what's going on. क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा स्कूल में कौन बच्चा बहुत शैतानी किया कौन बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा था जस्ट जेल विद देम टू नो व्हाट्स हैपनिंग विद देम एंड टेल देम दैट वी आर देयर फॉर यू ड्यूरिंग योर गुड और बैड टाइम्स
1: राइट एंड सिस्टम कई मरतबा ना ऑटोमेशन में चले जाता है ना व्हेन यू कीप ऑन आस्किंग आस्किंग आस्किंग
0: और कभी कभी बोर हो जाते हैं बच्चे
1: या दैट्स व्हाट
0: डेली का क्वेश्चन है मम्मा वो बोलते हैं बट हाँ आज कुछ अलग हुआ होगा ना तो बता दो
1: सारे दोस्तों के बारे में बताया आपको इनके
2: पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ आज क्लास में किसी का वाटर बॉटल गिरा पूरा क्लास स्विमिंग पूल बन गया है वो सब लाइक अननेसेसरी डिटेल्स मत बोला करो वैसे
1: नहीं बट अच्छी बात है ना ये देखो स्टोरी टेलिंग तुम्हारी इतनी हो चुकी है कि मम्मी को अभी कंफर्टेबल फील हो रहा है कि एटलीस्ट यू कम अप टू हर एंड से थिंग्स यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट या
0: चाइल्ड हैज टू कम एंड टॉक टू देयर पेरेंट्स
1: ऑफ कोर्स दैट्स एंड
0: लाइफ में इट्स लाइक फ्यू पीपल वेयर यू कैन नॉट लाई
1: एंड कन्वर्सेशन डज एवरीथिंग
0: यस इट्स लाइक योर पेरेंट्स अ टीचर एंड अ डॉक्टर यू आर नॉट सपोज्ड टू लाई इन फ्रंट ऑफ
1: क्या बात क्या कोटेशन दिए तो व्हाट्सएप पे लगाने वाली कोटेशन है आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट तो कुछ मम्मी ने अपने टाइम का बताया कुछ जैसे डू यू नो व्हाट वीएचएस टेप्स आर एंड एवरीथिंग फ्रॉम 90s ऐसा कुछ होता तुम्हारा कल्चरल शॉक लगता तुम लोग कुछ
2: कल्चरल शॉक मतलब नहीं क्योंकि लाइक आई हैव आल्सो यूज्ड सम ऑफ द थिंग्स
1: वेरी नाइस
2: लाइक जब अब लाइक फोटो गैलरी में फोन में लाइक देखे फोटोज देख लेते हैं तो जब नानी के घर में जाती हूँ इतने सारे एल्बम्स होते हैं पूरा परिवार आके बैठता है एल्बम खोलता है और देख लेते हैं सारे फोटोज इस फोटो में ये हुआ था हम ये खाना खा रहे थे ये फंक्शन था लाइक सब कुछ बोल देते हैं ना तो पूरा स्टोरी याद आती है और वो कैसेट वाले टेप्स वो भी देखे हैं मैंने वो पेंसिल डाल के वो फिराना तो मैंने भी किया है
1: अरे वेरी नाइस यार यू कनेक्टेड टू एवरीथिंग यार ये जैसे हम कहते हैं ना मैन ऑफ कल्चर द वुमन ऑफ कल्चर लेडी ऑफ कल्चर वाला सीन है तुम्हारे साथ बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है आप साथ मिलकर मुझे इनसे अच्छा लगा बिकॉज शी इज वेरी लेवल हेडेड अपनी एज के हिसाब से भी शी इज गुड क्योंकि कुछ बच्चे वक्त से या तो ज्यादा बड़े हो जाते हैं या थोड़े वक्त के नीचे रह जाते हैं सो दे माइट बी 22 बट दे एक्ट लाइक 16 दे माइट बी 22 बट दे एक्ट लाइक 40 सो congratulations on that because you're keeping it really nice and I am really proud of you.
0: Thank you.
1: ये बहुत बड़ी बात है and keep it that way only, right? She will be successful. There is no doubt about it.
0: तो
1: इनके successful होने के बाद जिम्मेदारियां निपटने के बाद आपको कुछ अपना कुछ पर्सनल प्लान है क्या?
0: Well, my hobby is like be up to date with current affairs.
1: Okay.
0: And मुझे पढ़ना अच्छा लगता है.
1: Okay.
0: And I talk a lot. I know that.
1: नहीं, that's okay. Come on.
0: So my hobby is like to start something that will keep me busy because when children grow up.
1: Yeah, that's what I'm asking. जिम्मेदारी हो जाएगी तो फिर एकदम से आप.
0: Some hobby. Yeah, I love to gel well with kids.
1: Okay, so something related to kids,
0: small kids.
1: ठीक है, जब भी ये मौका आएगा, उसके बाद मम्मी को ऐश करने देना, और तो अपना ऐश करना ठीक है. But you guys have been wonderful. I really love this episode. Thank you so much for coming, man.
0: Thank you for the opportunity. Yeah. We had a very great time.
1: I also did likewise. So thank you so much, Sanchal, and all the best to you.
0: Thank you.
1: You won't need that, but still, and all the best. We wish you all the best, and we wish you success in your life.
0: Thank you. Best wishes so for FM 107.
1: Thank you so much, ma'am. Jazakallah. So we are signing off. Apna khayal rakhiye. Allah.
0: Thank you.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। डोंट मिस इट।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
4: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान, और शो लेकर आ गई हूं एक दफा फिर से आप लोगों के लिए हदीस टू हैबिट। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे होंगे। हदीस टू हैबिट एक ऐसा शो जहां हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अहदीस को अपनी रोजमर्रा जिंदगी की आसान और अमली आदतों में बदलने की कोशिश करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी, सुकून और दिल का इत्मीनान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में मोहब्बत हो, दिल में सुकून हो, रिश्तों में आसानी हो और जिंदगी बोझ महसूस ना हो। लेकिन आज की मसरूफ जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है जैसे सुकून कहीं खो गया है। आज हर इंसान किसी ना किसी मुश्किल में, परेशानी में मुब्तला है। कोई तालीम के दबाव में है, कोई नौकरी की फिक्र में, कोई घरेलू मसाइल से परेशान है और कोई जहनी थकन का शिकार है। लोग दिन भर मसरूफ रहते हैं मगर फिर भी दिल खाली खाली महसूस होता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अपनी जिंदगी की जो नेमतें हैं, जितना अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, जो जो हमारे ऊपर करम है, ब्लेसिंग्स हैं, उनको हम महसूस करना भूल गए। हम हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी को कम समझने लगते हैं। खास तौर पे जब से सोशल मीडिया आया है तो सोशल मीडिया पे कभी किसी की नई गाड़ी, किसी खूबसूरत कोई वेकेशंस बना रहे, किसी की कामयाबी, किसी की खुशहाल जिंदगी, ये सब देखकर हम सोचते हैं कि दूसरे तो मुकम्मल जिंदगी जी रहे हैं और शायद हमारी ही जिंदगी में खुशियां कम है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको बेशुमार नीमतें अता फरमाई हैं। ऐसी नीमतें जिन्हें हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं मगर उनका एहसास नहीं करते। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। सुबह आपकी आंख खुली, आप सांस ले रहे थे, आप अपने घर में महफूज थे, आपके पास पानी था, खाना था, लिबास था, कोई अपना था जो आपको जानता है, आपकी फिक्र करता है। ये सब नेमतें नहीं है तो और क्या है? और फिर सबसे बड़ी नेमत, आपके पास ईमान है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, कुरान अता फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दी। ये वो नेमत है जिसका कोई बदल नहीं। आज के शो में हम बात करेंगे शुक्रगुजारी के बारे में। शुक्र यानी अल्लाह ताला की नेमतों को पहचानना, उन्हें दिल से महसूस करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं है। शुक्र एक कैफियत है, एक सोच है, एक तर्ज़े जिंदगी है। जब इंसान शुक्रगुजार बनता है तो उसकी नजर सिर्फ कमियों पर नहीं रहती बल्कि वो नेमतों को भी देखना शुरू कर देता है।

एक शुक्रगुजार इंसान छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करता है। वो एक कप चाय पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। वो वालिदैन की मौजूदगी पर भी शुक्र करता है। वो अपने बच्चों की हंसी पर भी खुश होता है। वो सेहत, सुकून, वक्त, नींद, घर, दोस्त, हर नेमत की कदर करता है और यही शुक्र दिल को सुकून देता है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं दिल बेसुकून है, हर वक्त टेंशन रहती है, जिंदगी में खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि शायद हमने शुक्र करना कम कर दिया है? क्योंकि जब इंसान सिर्फ मसाइल को देखता है तो दिल भारी हो जाता है, लेकिन जब इंसान नेमतों पर गौर करता है तो दिल नरम हो जाता है। इस्लाम हमें हमेशा पॉजिटिव सोच सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं सिखाया कि जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुश्किल में भी अल्लाह को याद रखना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है कि इंसान की जिंदगी में मसाइल नहीं होंगे। मसाइल तो सबकी जिंदगी में होते हैं, लेकिन शुक्रगुजार इंसान मुश्किलात के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ता। वो जानता है कि अल्लाह की हर नेमत एक रहमत है और हर आजमाइश में भी कोई हिकमत होती है। लिस्टर्स, कभी कभी हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम अपने ही घर की नेमतें तक महसूस नहीं कर पाते। रोजाना घर पे खाना बनता है, हमें आदत हो जाती। हमारे घर में कोई है जो हमें प्रोवाइड करने वाला है, हमें मामूल लगता है। बहन भाई साथ होते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते। सेहत अच्छी होती है, हम उस पर तवज्जो नहीं देते। और फिर जब यही चीजें कुछ वक्त के लिए हमसे दूर हो जाती हैं, तब एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत थी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार शुक्र की तलकीन फरमाते हैं, क्योंकि शुक्र इंसान को नाशुक्री, बेसुकूनी और हसद से बचाता है। जब इंसान हर वक्त दूसरों से अपना मवाजना करता है तो उसके दिल में बेचैनी पैदा होती है, लेकिन जब वो अपनी नेमतों को देखता है तो दिल में सुकून आता है। आज से हम एक छोटी सी कोशिश करेंगे। हम रोजाना चंद लम्हे निकालेंगे और सोचेंगे कि आज अल्लाह ने मुझे कौन सी नेमत अता की। हो सकता है वो नेमत बहुत छोटी हो, जैसे किसी ने मोहब्बत से बात की, वक्त पे काम हो गया, आपके बच्चे हंस रहे थे, कोई एक मुश्किल जो आसान हो गई हो, या सिर्फ ये कि आज का दिन खैर खैरियत से गुजर गया। यकीन माने ये सब अल्लाह की रहमतें हैं। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं, अमल से भी होता है। अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी है तो हमें अपने जिस्म को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें वक्त दिया है तो उसे फजूल चीजों में जाया नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने इल्म दिया है तो दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी शुक्र है। और याद रखें, शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। कभी दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कह के देखिए, दिल हल्का महसूस होता है, मायूसी कम होती है, उम्मीद बढ़ती है। इसलिए आज के शो में हम सीखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के बारे में क्या फरमाया, सहाबा कराम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में शुक्र को कैसे अपनाते थे, और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कौन सी आसान आदतें शामिल कर सकते हैं ताकि हमारा दिल अल्लाह के करीब हो जाए। अगर आप इस प्रोग्राम से फायदा उठा रहे तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप पर आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, बताइए, और आप हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम अपने शो को और ज़्यादा बेहतर भी बना सकें और आपके लिए ऐसा बनाएं कि आप प्रैक्टिकली

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट.
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप.
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन.
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
5: द रिक्वेस्ट शो
4: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो. याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें. अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते. आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है. फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है. सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है. ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है. तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है. कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है. मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.

0: तुम्हें अगर रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: Midnight Melodies only on FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 से आप पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

देखो हमने कभी किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले हक़े नसीहत अदा करने को मौजूद थे और हम जालिम न थे। इस किताब मुबीन को शयातीन लेकर नहीं उतरे हैं, न ये काम उनको सजता है और न वो ऐसा कर ही सकते हैं। वो तो इसकी समाअत तक से दूर रखे गए हैं। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके साथ तवाज़ो से पेश आओ, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उससे मैं बरी उज़िम्मा हूं, और उस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरा करते हैं? वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। रहे शुआरा तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, बजुज उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया, और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया। और जुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दोचार होते हैं।